हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना। श्रोताओं बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

जन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। श्रोताओं बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे थे भक्ति संगीत आराधना अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, तो आप सभी यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये तुम्हारा सारिया दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कहने श्रोताओ, मैं या तुम भी अपनी रेडियो दोस्त रुचिका हाजिर हुई हूँ कार्यक्रम लेकर ही माटी दी महक। श्रोताओ कर देना अज दे कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे दे गीत दे कहने। तुम सारे इं बनी रहा रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ए तोहंदा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने तोहा सारी कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक।

रंजन धर्मशाला कने श्रोताओं, तो हाँ कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कने। तो हाँ सारे इन्हीं बनी रहा रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने पंदी।

शाला ते गणेश होता हो तो हाँ सारे ही इस वक्त कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक जी श्रोता होता बढ़ते न कार्यक्रम जो अगे कने सुन देना कार्यक्रम दा प्यारा दिया अगला गीत तो हाँ सारे ये बनी दिया रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने बंदी।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं FX+ पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
2: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
3: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in। हर घर में

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जब इंसान हर किसी के लिए अच्छा करता है तब सबसे ज्यादा चोट भी उसे ही मिलती है। लोग उसके धैर्य को कमजोरी समझ लेते हैं, उसकी चुप्पी का मजाक उड़ाते हैं और उसे अकेला देखकर उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। पर याद रखो, अकेला वही किया जाता है जिसमें भीड़ से अलग चलने का साहस हो। जिस वृक्ष पर सबसे अधिक फल होते हैं, पत्थर भी उसी पर सबसे ज्यादा फेंके जाते हैं। इसलिए शांत रहो अर्जुन, क्योंकि समय जब उत्तर देता है तब लोगों का घमंड अपने आप शांत हो जाता है।
2: अगर तुम्हें लगता है मैं ज्यादा कलेश करती हूँ, पहले जाके दूसरों की बीवियां देखो।
3: वो अलग ही लेवल का बंदा था।
4: अरे बाप रे।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओ, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओ, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 MHz पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओ, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओ, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

I love you all. दोस्तों ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से, शायद जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। आज के कार्यक्रम में श्रोताओं बस इतना ही। अब अपनी रेडियो दोस्त पिंकी को दीजिए इजाजत और यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं FX+ पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
2: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
3: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।
4: हर

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जब इंसान हर किसी के लिए अच्छा करता है तब सबसे ज्यादा चोट भी उसे ही मिलती है। लोग उसके धैर्य को कमजोरी समझ लेते हैं, उसकी चुप्पी का मजाक उड़ाते हैं और उसे अकेला देखकर उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। पर याद रखो, अकेला वही किया जाता है जिसमें भीड़ से अलग चलने का साहस हो। जिस वृक्ष पर सबसे अधिक फल होते हैं, पत्थर भी उसी पर सबसे ज्यादा फेंके जाते हैं। इसलिए शांत रहो अर्जुन, क्योंकि समय जब उत्तर देता है तब लोगों का घमंड अपने आप शांत हो जाता है।
2: अगर तुम्हें लगता है ना मैं ज्यादा कलेश करती हूँ, पहले जाके दूसरों की बीवियाँ देखो।
3: देखने तो देती नहीं,
4: वो अलग ही लेवल का बंदा था।
5: अरे बाप रे।

दोस्तों, हजारों अधूरी हसरतों के बाद भी ये जिंदगी कितनी हसीन है ना, क्योंकि जो कुछ भी हमारे पास है वो किसी की आखिरी उम्मीद है। जिंदगी से क्या गिला करना जो नहीं मिला, जरा पलट कर उन्हें तो देखो जिन्हें हमारे जितना भी नसीब नहीं हुआ। वक्त ने सिखा दिया है हर हाल में सब्र करना, क्योंकि जो हमारे पास है वो भी शायद कई बार उस तक हमारी पहुंच नहीं होती या उससे ज्यादा होता है। ख्वाहिशों का क्या है, ये तो कभी खत्म नहीं होंगी। सुकून पाना है तो जो मिला है उसी में मुस्कुराना सीख लीजिए। नमस्कार दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। जी दोस्तों, बहुत अच्छे से आज की सुबह की शुरुआत आप सभी की हुई है एक नई शुरुआत के साथ, रूटीन के साथ, क्योंकि छुट्टी के बाद रूटीन में आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन क्या करें, जिंदगी है और जिंदगी का नाम चलना है, आगे बढ़ते रहना है समय के साथ, सिचुएशन के साथ। तो आज 8 जून 2026 का दिन, सोमवार का दिन, बहुत ही खास दिन, वीक की शुरुआत। जी दोस्तों, बहुत ऐसी अटपटा सा लगता है, और गर्मियों में तो खास करके बहुत ही ज़्यादा मन नहीं करता है कुछ भी काम करने का। जैसे ही सर्दियों में की बात करें तो सर्दियों में भी हमारा सुबह सुबह उठने का मन नहीं करता। तो वही एक ख्वाहिश है तो कभी खत्म ही नहीं होती, एक पूरी होती है कि दूसरी पहले ही मन में आना शुरू हो जाती है। जी दोस्तों, तो ये तो जिंदगी से जुड़ी कुछ खास बातें, हमारी रूटीन से जुड़ी कुछ खास बातें हैं, लेकिन बहुत ही खास खास सी और भी ढेर सारी बातें आज के इस बहुत ही खास कार्यक्रम में आप सभी सुनने वाले हैं, जानने वाले हैं, अपने आप को जागरूक करने वाले हैं। लेकिन क्या करना होगा, फिर से भूल गए ना आप, कोई बात नहीं, भूलना नहीं है दोस्तों, सिर्फ छोटा सा स्टेप, छोटा सा काम, सिर्फ जुड़े रहना है अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जानना भी तो है ना कि क्या क्या खास आज के दिन में रहने वाला है, या फिर यूं कहें कि इतिहास में आज के दिन की क्या अहमियत है। तो बिल्कुल, ये बातों का सिलसिला शुरू हो चुका है और अब शुरुआत करते हैं मनोरंजन के साथ। जी दोस्तों, आप सभी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब जैसे एक प्यारा सा गीत हम सब तक पहुंचेगा। तो देर किस बात की, बस पहुंच गया सोनू निगम अलका याग्निक की आवाज़ों के साथ आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट से 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

0: के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। और बहुत ही प्यारी सी सुबह तो आप सभी ने शुरुआत कर ली है सुबह की, और अब दिन की शुरुआत को खास बनाना है, क्योंकि अगर वीक के पहले दिन आप एक एनर्जी के साथ शुरुआत करते हैं तो सोचिए हर दिन किस तरह से जाता है, खुशियों के साथ और अपनों के साथ। क्योंकि अपनों का साथ जब तक हमारे साथ है ना दोस्तों, हम बेपरवाह होकर ज़िंदगी को इंजॉय कर सकते हैं। कई बार हमें ये अहंकार आ जाता है कि हमारे पास जो है ना बहुत ज़्यादा धन दौलत आ गई है और अब हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, ना कोई रिश्ते नाते, ना कोई अपना, ना कोई पराया, बस खुद ही हम काफ़ी हैं अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि दोस्तों जहाँ खुशियाँ बांटने के लिए, दुख बांटने के लिए अपनों की ज़रूरत होती है, वहीं खुशियाँ बांटने के लिए भी अपनों की ज़रूरत होती है। दुख में तो चलो बहुत कम लोग साथ देते हैं, लेकिन खुशियों में, खुशियाँ भी हम अकेले नहीं मना सकते, उसके लिए भी हमें दोस्तों की ज़रूरत होती है, हमें अपनों की ज़रूरत होती है। और आज का बहुत ही ख़ास दिन है दोस्तों, फ्रेंड्स डे आज के दिन आप सभी मना रहे हैं। तो जहाँ दोस्ती की बात हो गई है तो सोचिए दोस्ती कितना प्यारा शब्द है ना। ये दोस्ती शब्द जो है हमें ऊंचाइयों तक लेकर भी जाता है और कई बार नीचे ग्राउंड तक भी लेकर आ जाता है, धरती तक लेकर आ जाता है। तो यही फ़र्क है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन अपना है, कौन पराया है, पूरे वक्त में ही पता चलता है। खैर दोस्तों ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि दोस्ती शब्द छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा है। सुनने और कहने के लिए छोटा है, लेकिन इसकी गहराई में जाकर देखिए फिर जानिए कि कितना बड़ा शब्द है ये, हमारी ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखता है, और आज के दिन में तो खास ही अहमियत है। फिलहाल आप सभी को मौसम की अपडेट की ओर लेकर चलते हैं दोस्तों। तो आप सभी को बता दें कि इस समय धर्मशाला का तापमान लगभग 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास आप सभी महसूस कर सकते हैं, और गर्मी की बात करें तो क्या ही बात करें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। सुबह बहुत ही एक तीखी सी खिली सी धूप के साथ जो है वो शुरुआत हुई है, और मौसम विभाग का क्या कहना है ये हमारे लिए जानना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आंखों देखा हाल तो पलटता रहेगा थोड़े समय के बाद, या ना भी पलटे क्या पता। दोस्तों हिमाचल प्रदेश में अब जून के महीने को तपिश अलग रुख अपना रही है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने राज्य के 3 जिलों ऊना, बिलासपुर और सोलन के लिए 9 और 10 जून को लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य में अब गर्मी का ये दौर ज्यादा लंबा जारी रहने का भी पूर्वानुमान जताया गया है। जी दोस्तों 11 और 12 जून को पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम करवट ले सकता है, और बारिश, आंधी व बिजली गिरने की गतिविधियां फिर से शुरू हो सकती हैं। बाकी देखते हैं समय किस तरह से अपना रुख बदलता है, किस तरह से हमें किस और लेकर जाता है, क्योंकि ऐसे तो हम जान नहीं पाएंगे, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे ही पता चलता जाएगा। तो फिलहाल एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का एक और प्यारा सा गीत, क्योंकि अभी तो ढेर सारी बातें हैं, बहुत कुछ जानना बाकी है। तो एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।
1: शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए।

0: दोस्तों बिल्कुल, मौसम के ये जो प्यार भरे रंग है ना, बस इनमें रंगने का मन करता है। कभी पतझड़ का मौसम, तो कभी बारिश का मौसम, तो कभी क्या, बस हर मौसम में खुलकर दिल खोल कर एंजॉय करना चाहिए, तभी तो जिंदगी खास बनती है। नहीं तो जिंदगी ऐसे ही बीतती जाएगी और जब आखिरी समय आ जाएगा तब बस यही सोचते रह जाओगे कि आखिर में हमने किया ही क्या, हम क्यों आए थे इस दुनिया में। कुछ अच्छा भी नहीं किया, कुछ बुरा भी नहीं किया। कुछ लोगों ने तो बुरा किया होगा, कुछ लोगों ने अच्छा किया होगा, मतलब हर किसी की अपनी अपनी एक कहानी। तो इसलिए समय को गवाइए मत और उसे एंजॉय कीजिए। फिलहाल समय हो गया है कार्यक्रम में प्रादेशिक समाचारों का, तो आइए दोस्तों सुनते हैं समाचार। उसके बाद फिर से आप सभी जुड़ने वाले हैं रुचिका की ढेर सारी खास खास बातों के साथ, तो कहीं जाइएगा नहीं, थोड़ा सा इंतजार।
1: 20 करोड़ रुपए देगी। शिमला में एचआरटीसी पेंशनर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी के एक प्रतिनिधिमंडल से भेंट के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पथ परिवहन निगम के पेंशनरों को हर महीने 7 से 10 तारीख के बीच पेंशन दी जाएगी। उन्होंने निगम प्रबंधन को अक्टूबर 2025 के बाद सेवानिवृत्त हुए उन कर्मचारियों को शीघ्र पेंशन लाभ देने के निर्देश दिए जिनकी पेंशन अभी तक शुरू नहीं हुई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज शिमला के निकट संजौली में लगभग 3,18,00,000 रुपए की लागत से निर्मित बहुउद्देशीय खेल स्टेडियम का लोकार्पण करेंगे। इस स्टेडियम में रसोई घर, चेंजिंग रूम, शौचालय व ओपन हॉल जैसी आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। इससे स्थानीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण सहित विभिन्न खेल गतिविधियों के आयोजन के लिए उपयुक्त वातावरण उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री का बाद में मशोबरा में निर्मित नवजीवन, नशा मुक्ति व पुनर्वास केंद्र के उद्घाटन का भी कार्यक्रम है। ये केंद्र नशे की समस्या से प्रभावित व्यक्तियों को उपचार, परामर्श और पुनर्वास की सुविधाएं प्रदान करेगा। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 को आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। ये ऐतिहासिक दिन देश के सांस्कृतिक, सूचनात्मक और प्रसारण इतिहास में एक विशेष क्षण है। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया। आज आकाशवाणी 591 रेडियो स्टेशनों का संचालन करती है। आकाशवाणी का प्रसारण 23 भाषाओं और 146 बोलियों में किया जाता है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने नगर निकाय व पंचायती राज संस्थाओं में चुने गए प्रतिनिधियों से जनता के विश्वास पर खरा उतरते हुए सेवा, समर्पण व जवाबदेही की भावना के साथ कार्य करने का आह्वान किया है। शिमला में उनसे मिलने आए भाजपा समर्थित नव निर्वाचित प्रतिनिधियों से उन्होंने ये बात कही। जयराम ठाकुर ने कहा कि जन प्रतिनिधियों की भूमिका लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने व संबंधित क्षेत्र के समग्र विकास को गति प्रदान करने में महत्वपूर्ण होती है। इस अवसर पर सभी नव निर्वाचित सदस्यों ने क्षेत्र के विकास व जन कल्याण के लिए मिलकर कार्य करने का संकल्प व्यक्त किया। लोकसभा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देश ने विकास, सुशासन व जन कल्याण के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के समीरपुर, बगवाड़ा व दाड़ी सहित अन्य स्थानों पर विशेष जनसंपर्क अभियान के दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं ने देश के करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से करोड़ों परिवारों को पक्के घर मिले हैं, जबकि उज्ज्वला योजना ने गरीब महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाई है। अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव आज से शुरू हो रहा है। ऐतिहासिक रिज मैदान पर 12 जून तक आयोजित किए जाने वाले इस उत्सव का शुभारंभ राज्यपाल कविंद्र गुप्ता करेंगे, जबकि समापन समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। इस दौरान बॉलीवुड, पंजाबी व अन्य प्रदेशों के अलावा हिमाचली कलाकार लोगों का मनोरंजन करेंगे। ये मंच न केवल स्थानीय कलाकारों को अपनी कला प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेगा, बल्कि देश विदेश से आने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों को हिमाचल की सांस्कृतिक विरासत से भी रूबरू करवाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा समर फेस्टिवल के दौरान स्कूली बच्चों की भाषण प्रतियोगिता, वॉलीबॉल, डॉग शो और फूड फेस्टिवल भी आकर्षण का केंद्र रहेंगे। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में इन दिनों पर्यटन सीजन जोरों पर है। बड़ी संख्या में पर्यटक शिमला, डलहौजी, मनाली व खजियार सहित अन्य पर्यटन स्थलों का रुख कर रहे हैं। पर्यटकों की लगातार बढ़ती तादाद से पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोग काफी उत्साहित हैं। हमारे शिमला जिला संवाददाता ने बताया कि शिमला में हर रोज हजारों की संख्या में पर्यटकों के पहुंचने से लोगों को जाम की समस्या से भी जूझना पड़ रहा है।
2: वीकेंड पर बड़ी संख्या में पर्यटक शिमला पहुंचे हैं, जिससे न केवल होटल कारोबार में तेजी आई है बल्कि शहर की सड़कों में जाम की समस्या भी बढ़ गई है। जाम के चलते आम लोगों को परेशानी भी उठानी पड़ रही है। पिछले एक महीने में शिमला शहर में 8 लाख वाहनों की एंट्री हुई है। हर रोज हजारों की संख्या में पर्यटक शिमला पहुंच रहे हैं। शहर के होटलों में लगभग 90% ऑक्यूपेंसी चल रही है। वीकेंड पर शिमला की ओर आने वाले वाहनों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कालका शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग पर शोघी, तारा देवी, टूटीकंडी बाईपास और ढली जैसे प्रवेश बिंदुओं पर वाहनों की लंबी कतारें देखी गई हैं। स्थानीय प्रशासन और पुलिस को यातायात सुचारू बनाए रखने के लिए अतिरिक्त व्यवस्थाएं करनी पड़ी है। इस बीच आज से शिमला में समर फेस्टिवल का आगाज भी होगा, जिससे पर्यटकों की तादाद में और इजाफा होने का अनुमान है। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
1: उधर कुल्लू जिला के विभिन्न पर्यटन स्थल सैलानियों से गुलजार हैं। हमारे कुल्लू जिला संवाददाता के अनुसार सैलानियों की बढ़ती आवाजाही से स्थानीय पर्यटन कारोबार को बढ़ावा मिला है।
3: कुल्लू जिला में इन दिनों पर्यटन सीजन अपने चरम पर है तथा मनाली सहित जिला के विभिन्न पर्यटन स्थल सैलानियों से गुलजार हैं। मैदानी इलाकों में झुलसा देने वाली पड़ रही गर्मी से निजात पाने के लिए काफी संख्या में लोगों ने पहाड़ों की ओर रुख किया है तथा आजकल यहां मौसम भी सुहाना बना हुआ है। पर्यटक यहां पर रोहतांग पास में जाकर जहां बर्फ का दीदार कर रहे हैं, वहीं अटल टनल होते हुए लाहौल की तरफ भी जा रहे हैं। सैलानियों की बढ़ती आवाजाही से स्थानीय पर्यटन कारोबार को भी बढ़ावा मिला है तथा पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोग खुश हैं। शाम के समय मनाली के माल रोड में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। वहीं बहुत ज्यादा संख्या में पर्यटक वाहनों के आने से मनाली में जाम की समस्या भी बढ़ती जा रही है तथा स्थानीय लोगों सहित सैलानियों को भी इससे परेशानी झेलनी पड़ रही है। आकाशवाणी के लिए कुल्लू से आशीष शर्मा।
1: सिरमौर जिले में किसान बड़ी संख्या में प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। जिले के 2200 हेक्टेयर भूमि पर लगभग 12,000 किसान प्राकृतिक खेती से उगाई जा रही फसलों से अच्छे दाम प्राप्त कर रहे हैं। अधिक जानकारी के साथ हमारे सिरमौर जिला संवाददाता।
4: जिला सिरमौर में मौजूदा समय में करीब 2200 हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती की जा रही है, जिसमें किसान गेहूं, मक्की, धान, हल्दी और अदरक का मुख्य रूप से उत्पादन कर रहे हैं। जिला में करीब 12,000 ऐसे किसान हैं जो पूर्ण रूप से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती से उगाए जा रहे उत्पादों के भी किसानों को अच्छे दाम मिल रहे हैं। वहीं कृषि विभाग इन किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज भी उपलब्ध करवा रहा है, साथ ही लगातार प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित कर रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए सिरमौर से सतीश शर्मा।
1: राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज मौसम साफ है। मौसम विभाग ने कल यानी 9 व 10 जून को ऊना, बिलासपुर व सोलन में लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार 11 से 13 जून तक प्रदेश के अनेक स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला व पंजाब केसरी की लगभग एक जैसी सुर्खी है, मंत्री, विधायकों, मुख्य सचिव, एसीएस और उपायुक्तों को अगले माह से मिलेगा पूरा वेतन। इसी खबर पर हिमाचल दस्तक लिखता है, मुख्यमंत्री ने वापस लिया 30% वेतन स्थगन का फैसला। दैनिक भास्कर की एक खबर है, हिमाचल का पहला सरकारी कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा केंद्र चयन आयोग हमीरपुर में तैयार। मुख्यमंत्री के हवाले से दिव्य हिमाचल लिखता है, एचआरटीसी पेंशनरों को हर माह समय पर मिलेगी पेंशन। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, एचआरटीसी पेंशनरों के लिए हर महीने 23 करोड़ रुपए और चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए 20 करोड़ रुपए देगी राज्य सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज संजौली में बहुउद्देशीय खेल स्टेडियम और मशोबरा में नशा मुक्ति व पुनर्वास केंद्र का करेंगे उद्घाटन। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने नव निर्वाचित जन प्रतिनिधियों से समर्पण व जवाबदेही की भावना के साथ कार्य करने का किया आह्वान। अंतर्राष्ट्रीय समर फेस्टिवल आज से ऐतिहासिक रिज मैदान पर होगा शुरू। 5 दिवसीय ग्रीष्मोत्सव के दौरान बॉलीवुड, पंजाबी व हिमाचली कलाकार मचाएंगे धमाल। और प्रदेश में पर्यटन सीजन जोरों पर, सैलानियों की तादाद लगातार बढ़ने से पर्यटन व्यवसायी खुश। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72,00,000 पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

दोस्तों, इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में। और आज का ये बहुत ही प्यारा सा सफर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ, रुचिका की ढेर सारी कुछ खास सी बातचीत के साथ। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि भगवान शिव के पास सब कुछ है, तीनों लोकों की शक्ति, नंदी जैसा वाहन, गणेश और कार्तिकेय जैसे पुत्र, पार्वती जैसी अर्धांगिनी, फिर भी वो शमशान में बैठते हैं, फटे वस्त्र पहनते हैं, भस्म लगाते हैं, क्यों? है ना ये बहुत बड़ा सवाल। इतनी शक्तियां अगर इंसान के पास होती तो न जाने अहंकार में कहां से कहां पहुंच जाता, कितने ही लोगों को नुकसान पहुंचाता, कितने ही लोगों के साथ गलत करता। लेकिन भगवान शिव फिर भी शांत मन से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्योंकि शिव दुनिया को एक सबक देना चाहते हैं कि असली अमीरी कपड़ों में नहीं, मन की शांति में है, असली ताकत महल में नहीं, सच्चाई में है, असली सुंदरता चेहरे में नहीं, आत्मा में है। शिव के पास सब होते हुए भी वो सबसे सरल हैं और इसीलिए दुनिया के सबसे अमीर देवता को भोलेनाथ कहा जाता है। जो इंसान सब पाकर भी सरल रहे वही सच्चा इंसान और शिव भक्त होता है। जी दोस्तों, जिंदगी जीनी है तो बहुत सी बातों को ध्यान में रखना होता है और अहंकार को तो खुद से दूर ही रखना होता है, क्योंकि जिस दिन अहंकार हमारी जिंदगी में घर कर गया उस दिन हमारा अपना ही वश जो है हमारी जिंदगी में अक्सर नहीं रहता। तो फिलहाल इसी बात पे एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत, उसके बाद फिर से मिलते हैं आप सभी के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों, इस नफ़रत की दुनिया में आज इंसान न जाने कहाँ खो गया है, कहाँ गुम हो गया है, कोई नहीं जानता। क्योंकि आज के समय में हर कोई स्वार्थ के लिए, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जो है ज़िंदगी में आगे बढ़ता जा रहा है, जहाँ उन्हें अपना कोई मतलब नहीं नज़र आता, कोई उनका फ़ायदा नज़र नहीं आता, वहाँ वो लोगों को नुकसान पहुँचाना शुरू कर देते हैं। चाहे फिर बेजुबान जीव जंतुओं की बात करें, पशुओं की बात करें, पक्षियों की बात करें, तो उन्हें भी हम नुकसान पहुंचाने से पहले एक बार नहीं सोचते। और दोस्ती की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, तो जब ये जो बहुत ही ख़ास कह सकते हैं एक लगाव होता है इन जानवरों से, पशुओं से, लेकिन आज के समय में देखिए सड़कों पे आवारा पशु जो है किस तरह से घूम रहे हैं। पहले का समय था, घर के सदस्य की तरह उन्हें रखा जाता था, भले ही खुद को खाना नसीब हो ना हो, लेकिन उनके लिए सबसे पहले सोचा जाता था। लेकिन अब के समय में जैसे मशीनी युग आ गया है, एक तरह से डिजिटल होते जा रहे हैं, मशीनों पे डिपेंड होते जा रहे हैं, ज़रूरी है, कोई बात नहीं, समय के साथ बदलना ज़रूरी है, लेकिन हम उन चीज़ों को तो नज़रअंदाज नहीं कर सकते, है ना, जिन्होंने हमें इतना साथ दिया है उस बुरे समय में कहें या पहले के समय में, जो हमारे घर के सदस्य की तरह थे। तो वो भी जब एक लगाव होता है दोस्तों, तो उनके साथ भी ऐसा लगता है कि दोस्त हैं हमारे। जब हमसे कोई बात करने वाला नहीं होता है, जब हम अपना सुख दुख किसी के साथ साझा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इंसानों के साथ जब भी हम कोई बात बताते हैं तो वो बात वैसी की वैसी तो पहुंचती नहीं है किसी और के पास, पहुंचनी तो चाहिए ही नहीं, लेकिन जिस तरह से आपने बताया उस तरह से भी नहीं पहुंची, उससे भी दो तीन बातें बढ़ा चढ़ा कर 100 लोगों के पास पहुंच जाती है। तो इसलिए आज के समय में किसी पे विश्वास नहीं किया जाता, किसी के साथ कोई भी बात साझा करने से पहले 100 बार सोचा जाता है कि कौन इंसान सही है और कौन गलत। लेकिन चेहरा देखकर हम ये भी पता नहीं लगा सकते कि किसका चेहरा बाहर से अच्छा है और अंदर से मन और दिल जो है वो कैसा है, क्योंकि बाहर से तो मीठी मीठी बातें करके लोग अपने जाल में फंसा ही लेते हैं, बातें निकलवा लेते हैं। कुछ लोगों को बहुत टैलेंट होता है, लेकिन उसके बाद जो उन लोगों की वो इमेज को उछालते हैं ना सबके सामने, और वो इंसान टूट जाता है जिसने कभी विश्वास ही नहीं किया होता है कि उसके साथ कभी ऐसा भी हो सकता है। तो सोचिए किस तरह से इंसानियत आगे की ओर बढ़ रही है। तो दोस्ती शब्द जो है ना दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में एक अनमोल सा शब्द है। क्या आपकी ज़िंदगी में है कोई ऐसा दोस्त जो आपके लिए ख़ास हो, खुद से बढ़कर हो, हर सुख दुख में आपका साथ दिया हो? तो आज का दिन बहुत खास है, ज़रूर आज के दिन उन प्यारे प्यारे दोस्तों को याद कीजिए और उन्हें थोड़ा समय उनके लिए निकालिए, क्योंकि ये समय दोबारा नहीं आएगा। ये समय जो बीत गया वो बीत गया, अगले पल कौन साथ होगा कौन नहीं कोई नहीं जानता। तो एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का एक और प्यारा सा गीत, और ज़रूर अपनी दोस्ती के नाम पे अपने दोस्त को डेलीगेट कीजिए इस प्यारे से खूबसूरत से मीठे से गीत को।

तो उदित नारायण कुमार सानू की आवाजों के साथ आप सभी ने एंजॉय किया कार्यक्रम का ये बहुत ही प्यारा सा गीत। सचमुच दोस्त अच्छा मिलना ये बहुत कम लोगों के साथ होता है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे भी होते हैं जो कि हमें गलत रास्तों की ओर प्रेरित करते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि उन 100 लोगों में गिन चुन के 8-10 लोग तो हम बोल ही सकते हैं कि कुछ ऐसे होते हैं जो हमें सही राह दिखाते हैं, सही राह की ओर प्रेरित करते हैं। और ऐसे दोस्त अगर ज़िंदगी में आ जाएं तो उनकी कद्र करना हमारी जिम्मेदारी है। उन्हें कभी अपनी ज़िंदगी से जाने मत दीजिए, क्योंकि अक्सर जो अच्छी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आती हैं ना उनके कद्र हम नहीं करते, या फ्री में जो चीज़ें हमें मिल जाती हैं बिना मेहनत के उन्हें हम नज़रअंदाज ही करते हैं। बाद में जब समय हाथों से निकल जाता है, जब हमें सबक मिलते हैं, तब पछताते हैं। लेकिन तब कोई पछताने का फ़ायदा नहीं रहता। कहते हैं ना, जब चिड़िया चुग गई खेत तो फिर क्या ही बात है ना। खैर, इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को एक और एक बहुत ही खास जानकारी की ओर, क्योंकि अभी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी कुछ खास। अगर इतिहास के पन्ने को अगर आप पलट कर देखें आज के दिन की खासियत को, तो बहुत कुछ खास है। तो थोड़ा सा आप अपने दिमाग पे जोर डालिए, क्योंकि रुचिका तो बताएगी बताएगी, लेकिन आप भी थोड़ा सा सोच कर देखिए कि और क्या खासियत है आज के दिन की। तब तक जानते हैं ये जानकारी। दोस्तों, सैलानी बनकर अतिथि देवो भव का मजाक बनाने वाले हुड़दंगियों पर हिमाचल के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। दिव्य हिमाचल मीडिया हाउस के ताजा सर्वे में 91% लोगों ने हिमाचल सरकार से मांग उठाई है कि हुड़दंग मचाने वालों के लिए कोड ऑफ कंडक्ट लागू करने का वक्त अब आ गया है। हाल ही में हिमाचल में कई शहरों में बाहरी राज्यों के लोगों ने हुड़दंग मचाया है। इसी मसले पर दिव्य हिमाचल ने अपने ताजा सर्वे में सवाल उठाया था कि क्या हिमाचल को पर्यटकों का हुड़दंग देखते हुए आचार संहिता बनानी चाहिए। इस सवाल पर 91% लोगों ने दिव्य हिमाचल टीवी के फेसबुक पेज, दिव्य हिमाचल के यूट्यूब चैनल और लोकप्रिय न्यूज वेबसाइट divyahimachal.com पर हाँ का ऑप्शन पर क्लिक किया। इन सभी लोगों ने साफ संदेश दिया कि सैलानी आए, मौज करें, लेकिन शोर शराबा हमें बिल्कुल पसंद नहीं। महज 8% लोगों ने कड़ी कार्रवाई ना करने की बात कही। उन्होंने नहीं ऑप्शन पर लाइक किया, जबकि 1% ने पता नहीं कहकर सवाल का जवाब देना वाजिब ना समझा। सर्वे में कुल 891 प्रबुद्ध जनों ने अपना पक्ष रखा और इसमें YouTube पर सबसे ज्यादा रिएक्शन मिले। जी दोस्तों, बात करें हम इन घटनाओं की, तो कुल्लू जिला के कसोल में गोलीकांड, मनाली में लोकल पर गाड़ी चढ़ाना, शिमला में थार में हुड़दंग, लाहौल के जिसों में बदसलूकी, कोकसर में शोर शराबा करना, कई जगहों पेट्रोल भरवा कर पेमेंट न करना, धर्मशाला में सरे बाजार उत्पात मचाना, तो ये सारी घटनाएं जो हैं वो हिमाचल में सामने आई हैं। बिल्कुल दोस्तों, हिमाचल एक टूरिस्ट प्लेस है। खास करके धर्मशाला की बात करें और पूरे हिमाचल की बात करें तो देवभूमि का नाम जो है वो दिया जाता है, कहा जाता है और मानते हैं। और हम आप सभी जानते हैं कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो है हिमाचल प्रदेश को सर्वोत्तम माना जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं, देश विदेश से लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं, एंजॉय करने के लिए आते हैं। और सच में हिमाचल के लोग जो हैं उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। और मैं बात करूँ दोस्तों, मैं अभी रिसेंटली बहुत सारी ऐसी स्टोरीज जो है सोशल मीडिया पे चेक कर रहे थे, तो बहुत सारे लोगों ने बस एक दूसरे को ट्रॉल कर रहे हैं और एक दूसरे पे ब्लेम कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए बोल रहे हैं। तो एक तरह से जो कह सकते हैं कि हमें जो एक कानूनी कार्रवाई के तौर पे जाना चाहिए, तो हम एक दूसरे के साथ जो लड़ाई झगड़े की इस हुड़दंग से, बल्कि वो तो हुड़दंग कर रहे हैं लेकिन हम उसे और एक तरह से हवा दे रहे हैं कि और ज़्यादा आग की तरह फैल जाए। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि हम
एक समाधान की ओर जा रहे हैं, लेकिन समाधान करते करते कहीं ना कहीं बात बिगड़ भी सकती है। तो हमें थोड़ा सोच समझ के साथ जो है आगे बढ़ना चाहिए। और सचमुच यहाँ हर एक जो भी टूरिस्ट घूमने आते हैं, सबका बहुत अच्छे से उनकी जो है रिस्पेक्ट के साथ जो है उन्हें यहाँ घुमाया भी जाता है। जो ट्रैकर्स होते हैं वो उन्हें घुमाते हैं अच्छे से, मतलब कि पूरी जिम्मेदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ जो है। और कुछ चीज़ों के लिए हो सकता है कि उन्हें कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती होंगी, लेकिन वो बाहर से आके अगर हुड़दंग मचाते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, तो उस वजह से कहीं ना कहीं मतभेद तो होगा ही होगा। लोग परेशान होंगे तो ऑब्वियसली वो आवाज़ उठाएंगे ही। तो देखा जाना चाहिए कि गलत कहाँ है, किस तरह से है, और उसी तरह से हमें एकजुट होकर जो है वो साथ देना चाहिए, है ना। तो बिल्कुल दोस्तों, ये घूमने का प्लेस है, आइए एंजॉय कीजिए, लेकिन शांति से, है ना, शांति से, क्योंकि ये धौलाधार की वादियों में वसा एक शहर है और यहाँ सुकून और शांति ज़्यादा अहमियत रखती है। तो बिल्कुल उसी तरह से इस शांति को बनाए रखें, क्योंकि यहाँ ढेर सारा अपनापन है। जो बैर भाव है ना, वो बहुत कम मिलेगा देखने को। जब कोई दूसरा पर्सन करेगा तभी ज़्यादा बात आगे बढ़ती है, अदरवाइज़ तो हर किसी के दिलों में अपनापन होता है। जितना हिमाचल के लोगों में होगा शायद बहुत कम लोगों में होगा। और भोले वाले से लोग होते हैं, सबको प्यार के साथ जो है वो वेलकम करते हैं। तो फिलहाल दोस्तों, ये तो बहुत ही खास जानकारी है और ये आप सभी तक पहुंचाना भी बहुत ज़रूरी, क्योंकि सोशल मीडिया में ये बहुत हाई जो है ये कंट्रोवर्सी एक तरह से चल रही है, खास करके पंजाब और हिमाचल के बीच में। तो ज़रूर आप भी इस पे देख सकते हैं और इस पे राय ले सकते हैं, दे सकते हैं राय। तो फिलहाल एंजॉय कीजिए दोस्तों कार्यक्रम का एक और प्यारा संगीत, क्योंकि ये तो हम इंसानों की एक तरह से कई बार अहंकार को ठेस पहुंचती है। इस पे हम ज़रूर एक और छोटी सी बात मैं आप सभी के साथ साझा करूंगी, लेकिन इस प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

नमस्ते दोस्तों, और कुछ प्यारी प्यारी सी बातें आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका की। जी दोस्तों, कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। तो अभी तो बहुत सारी बातें हैं आप सभी के साथ साझा करने के लिए दोस्तों, और ये सब जानने के लिए कि क्या क्या खास बातें हैं, अभी थोड़ा सा इंतज़ार आप सभी को और करना होगा। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि समय है एक छोटे से अंतराल का। तो मिलते हैं आप सभी से इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप सभी इसी तरह से एंजॉय कीजिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

0: अगले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ। यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं। तो आज ही जाएं एपेक्स प्लस पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।
3: हर

दोस्तों, इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 मेगाहर्ट्ज पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से नजर डालते हैं कुछ खास बातों की ओर। दोस्तों कहते हैं, जिंदगी में चाहे कुछ भी कर लीजिए लेकिन अपने कर्मों पे हमेशा नजर रखिए। श्री कृष्ण द्वारा कंस को मारने के बाद वो वासुदेव और देवकी उनकी माता और पिता को रिहा करने के लिए जेल गए। देवकी माता ने उत्सुकता से पूछा कि बच्चे, आप स्वयं भगवान हैं और आपके पास दैवीय शक्तियां हैं, फिर कंस को मारने और हमें रिहा करने के लिए आपने पूरे 14 साल का इंतजार क्यों किया? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, आदरणीय माता, मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन आपने मुझे मेरे पिछले जन्म में 14 साल के लिए वनवास क्यों भेजा? देवकी को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने कहा, हे कृष्ण, ये कैसे संभव है? तुम ये क्यों कह रहे हो? तो श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि माँ, तुम्हें अपने पिछले जन्म के बारे में कुछ भी याद नहीं रहेगा, लेकिन आप अपने पिछले जन्म में कैकेयी थी और आपके पिता पति दशरथ थे। देवकी को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने उत्सुकता से पूछा, तो अब कौशल्या कौन है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, माँ यशोदा। माँ की ममता के 14 वर्ष जो पिछले जन्म में वंचित थे, इस जन्म में मिला। अपने कर्मों का फल सभी को भोगना पड़ता है, इससे न देवी देवता बच सकते हैं तो इंसान तो बहुत दूर की बात है। तो आप जो कर्म करना चाहते हैं या जो कर्म कर रहे हैं उस पे जरूर नजर रखें। तो दोस्तों, इस अंतराल से पहले हम बात कर रहे थे ना, जो कि टूरिस्ट प्लेस की हम बात कर रहे थे और जो ये कंट्रोवर्सी जो बहुत ही ज़्यादा फैल चुकी है उसकी बात कर रहे थे। तो मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगी कि कहते हैं ना कि गलत कोई एक इंसान करता है लेकिन उसमें इंक्लूड जो है वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब हो सकता है कि पंजाब के किसी एक इंसान ने यहाँ पर गलत किया है और अब बोला तो पूरे पंजाब को जा रहा है, या हिमाचल में अगर उनको लगता है कि किसी एक इंसान ने या 2-3 लोगों ने उनके साथ जो भी अपनी सेफ्टी के लिए उनके साथ जो भी हुआ, जो भी मतलब उस समय की सिचुएशन के हिसाब से रहा, तो वो भी पूरे हिमाचल को कंसीडर कर रहे हैं। तो वही है कि हम पूरी बात को सोचे समझे बिना चीज़ों को इतना बढ़ावा देते हैं कि बात बहुत ही ज़्यादा फैल जाती है। और ये जो एक कंट्रोवर्सी चल रही है दोस्तों, तो मैं आपको बताऊं कि ये ज़्यादातर जो कुल्लू ज़िला के कसोल में गोलीकांड हुआ उस पर बहुत ज़्यादा ये बात जो है बवाल बन चुकी है इस समय। और ये सोशल मीडिया की जो हम बात करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है लेकिन कहीं ना कहीं हमारे लिए ये नुकसानदेह भी हो जाती है, क्योंकि कुछ लोग बिना जाने बिना सोचे समझे पूरी बात को बिना जाने बस सिर्फ वीडियोस, एक अगर उन्होंने रील देख ली, एक वीडियो देख ली तो उसी पे वो रील्स बनाना शुरू कर देते हैं और वो एक तरह से गुस्सा जो है वो सामने नज़र आता है और फिर उसको देख के और सारे लोग जो हैं वो उसी तरह से उसके वही देखा देखी में पीछे चलने शुरू हो जाते हैं। तो उसी तरह से जो एक तरह से मैं आप सभी के साथ साझा करूं कि पंजाब और हिमाचल के बीच ये जो चल रही है बात है कि पंजाब का कहना है कि हिमाचल को बायकॉट किया जाए, हिमाचल को हिमाचल घूमने नहीं जाएंगे तो फिर सही हो जाएगा। तो आपकी क्या राय है दोस्तों इस पर? आपको क्या लगता है कि इस तरह से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है या इस तरह से लड़ाई झगड़ों के साथ एक तरफ जो युद्ध चल रहा है उससे ही लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, लोगों को घर में खाना तक बनाना मुश्किल हो चुका है और इस तरह से जो ये बातें बवाल बन जाती हैं, तो सोचिए जो आम जनता, जो बेचारे लोग हैं ये बीच में पिसते रह जाते हैं और जिनकी कोई गलती ही नहीं होती है उन्हें भी इसका नुकसान जो है वो भुगतना पड़ता है। तो इसमें हमें किस तरह से जो है अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए या ऐसी ऐसी समस्याओं को जो है समाधान करना चाहिए, तो ये आप सभी इस पे सोच सकते हैं, विचार सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का यूज़ तो हर कोई कर ही रहे हैं, तो आपके सामने ये सारी बातें हैं।
तो ज़रूर इस पे सोचिए, विचारिए, क्योंकि अपने प्रदेश की बात है, अपने अपनों की बात है, और जो मेहमान यहाँ आते हैं वो भी हमारे लिए अपने हैं, अपने अतिथि देवो भवा का नाम दिया जाता है, भगवान के समान उन्हें माना जाता है। तो सिर्फ ये कहने तक की बात नहीं है, दिल से उनका सत्कार किया जाता है। तो ये बात बहुत गंभीरता वाली है, सोचने वाली है। तो फिलहाल दोस्तों आइए इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

0: कि दोस्तों जब बहुत ही परेशानियां जिंदगी में आ जाएं तो ये म्यूजिक जो है जो ये हमारे लिए मनोरंजन का साधन तो होता ही है, लेकिन साथ ही साथ इन परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए भी ये बहुत अहम रोल हमारी जिंदगी में निभाते हैं। तो जब प्यारे प्यारे से गीत कानों में गूंजते हैं तो सारी परेशानी अपने आप दूर हो जाती है, क्योंकि दोस्तों ये जो पुराने पुराने समय के गीत है ना, इनमें जिंदगी की कहानी बयां होती है, जिंदगी की रियलिटी उनमें झलकती है, नजर आती है। जी दोस्तों, तो आज का दिन गानों से भी ज्यादा स्पेशल है। गाने तो स्पेशल है ही, लेकिन गानों से भी ज्यादा कुछ खास है। क्यों? क्योंकि कैलेंडर उठाइए और तारीख देखिए। बिल्कुल, पहले भी बता चुकी हूँ कि आज है 8 जून 2026 का दिन, और आज के दिन आप सभी मना रहे हैं नेशनल बेस्ट फ्रेंड्स डे, यानी कि दोस्ती का दिन। जी दोस्तों, वो दिन जब हमें उस इंसान को थैंक यू कहना है जो हमारी हर बेवकूफ़ी का गवाह है, जो हमारी शक्ल देखकर बता देता है कि जेब में पैसा है या दिल में क्या है। तो अपने अपने हर एक इस प्यारे से दोस्त को टैग करने के लिए दोस्तों ये प्यारी प्यारी सी बात है, क्योंकि ये बहुत ही प्यारा सा सफ़र है और दोस्ती के नाम पे है। तो वैसे तो यार कभी सोचा है कि ये बेस्ट फ्रेंड वाली कैटेगरी कितनी अजीब होती है? भाई बहन हम चुन नहीं सकते, रिश्तेदार डिफ़ॉल्ट मिलते हैं, लेकिन ये बेस्ट फ्रेंड, ये वो इकलौता प्राणी है जिसे हम खुद ढूंढते हैं, या यूं कहें कि हमारी गड़बड़ियाँ देख कर ये खुद हमें ढूंढ लेते हैं। तो इसी तरह से होता है ये प्यारा सा रिश्ता। जरूर इसकी अहमियत को और भी जानेंगे और भी कुछ खास बातें जानेंगे, लेकिन उससे पहले एंजॉय करेंगे कार्यक्रम का एक और प्यारा सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट पर।
1: जब सदा संग रहे ना कोई,

बिल्कुल दोस्तों, दुख हमारा जिंदगी का साथी है, और दुख ना हो तो जिंदगी में कैसे हम किसी को पहचान पाएंगे, कैसे हम जिंदगी के सबक ले पाएंगे, क्योंकि ये उतार चढ़ाव ही तो हमारी जिंदगी को और भी ज़्यादा खूबसूरत और भी ज़्यादा प्यारा बनाते हैं। तो दोस्तों, दोस्ती की बात जितनी कम करें उतनी, मतलब जितनी ज़्यादा करें उतनी ही कम है, लेकिन और भी कुछ खास बातें हैं आज के दिन की। तो आज के दिन दोस्तों, 8 जून के दिन जो है विश्व महासागर दिवस भी आप सभी मना रहे हैं, और ये एक वार्षिक वैश्विक उत्सव है जिसका उद्देश्य पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में महासागरों द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना और समुद्री पर्यावरण की रक्षा के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देना है। हमारे महासागर पृथ्वी की सतह के 70% भाग को ढकते हैं और जीवन को बनाए रखने में बहुत ही एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे द्वारा ली जाने वाली प्रत्येक सांस के लिए ऑक्सीजन प्रदान करने से लेकर अरबों लोगों को भोजन प्रदान करने और विश्व की 80% जैव विविधता का आश्रय स्थल होने तक महासागर हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं। हालांकि हमारे महासागर अभूतपूर्व खतरों का सामना कर रहे हैं। अति मछली पकड़ना, आकस्मिक पकड़, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन के कारण महासागरों का तापमान बढ़ना, समुद्री जैव विविधता में गिरावट। तो दोस्तों, ये जो जलवायु परिवर्तन है, ये कहीं ना कहीं हम लोगों की गलतियों की वजह से ही है। तो अगर हम जाने अनजाने में, देखिए हम कितना नुकसान जो है दूसरों को पहुंचाते हैं, फिर चाहे वो बेजुबान पशु पक्षी हैं या फिर ये महासागर, नदियां, नाले, प्रकृति, जो हमें न जाने बिना किसी कीमत के कितनी सारी चीजें दे रही है, एक जिंदगी दे रही है। और जिंदगी की कीमत तो कोई नहीं है ना दोस्तों, जिंदगी बहुत अनमोल है। तो सोचिए हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम सिर्फ आपस में लड़ते जा रहे हैं और उसी लड़ाई के चक्कर में हम बहुत से लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बहुत सी चीज़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यही यूँ कहें कि अपने स्वार्थ के लिए बहुत सारी चीज़ें हम नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो ज़रूर इस पे गौर कीजिए और थोड़ा सा ध्यान जो है केंद्रित कीजिए इन बातों पे। फिलहाल तब तक एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों इस प्यारे से गीत के साथ एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ और आप सभी एंजॉय कर रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। तो आइए दोस्तों इसी प्यारे से गीत के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से लेकर चलते हैं आपको जानकारियों की ओर। तो जानते हैं एक और खास जानकारी दोस्तों, पश्चिम एशिया में जारी संकट और हॉर्मुज स्ट्रेट से गैस सप्लाई बंद होने के चलते मुसीबत का सामना कर रही तेल कंपनियों ने घरेलू रसोई गैस LPG सिलेंडर रविवार से यानी कि पिछले कल से 29 रुपये महंगा कर दिया है। इस बढ़ोतरी के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 14.2 किलोमीटर किलोग्राम माफ करना दोस्तों किलोग्राम वाला घरेलू LPG सिलेंडर 942 रुपये का हो गया है। हालांकि कमर्शियल इस्तेमाल वाले 19 किलोग्राम के सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव फिलहाल के लिए नहीं किया गया है। पश्चिम एशिया संकट शुरू होने के बाद से घरेलू रसोई गैस के दाम दूसरी बार जो है वो बढ़ाए गए हैं जी दोस्तों। इसी तरह से जो है ये चीज़ें सामने आती जा रही हैं, जिस तरह से ये परेशानियां बढ़ती

दोस्तों, विश्व महासागर दिवस केवल जागरूकता का दिन नहीं है बल्कि कार्रवाई का आह्वान भी है। ये दुनिया भर के व्यक्तियों के लिए और समुदायों के लिए, भावी पीढ़ियों के लिए हमारे महासागरों की रक्षा और संरक्षण के प्रयासों में एकजुट होने का एक अवसर है। एमएससी में हम जानते हैं कि सतत मत्स्य पालन ये सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि महासागर में मछलियों की स्वस्थ आबादी बनी रहे, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षित रहे और आने वाली पीढ़ियों तक दुनिया भर के लोगों को स्वस्थ समुद्री भोजन उपलब्ध होता रहे। इस विश्व महासागर दिवस पर हम एमएससी प्रमाणित सतत मत्स्य पालन द्वारा महासागर के संरक्षण में निभाई जाने वाली भूमिका का जश्न मना रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि सतत मत्स्य पालन का महत्व आपकी सोच से कहीं अधिक है। 205 महासागरों की अगर हम बात करें, पृथ्वी पर एक

0: विशाल महासागर है जिसमें कई विशेषताएं हैं। मनुष्य इसे 5 महासागरों या महासागरीय विभाजनों के रूप में समझते हैं। प्रशांत महासागर एशिया और अमेरिका के बीच स्थित सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर। अटलांटिक महासागर यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच स्थित दूसरा सबसे बड़ा महासागर। हिंद महासागर एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थित तीसरा सबसे बड़ा महासागर। आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव की ओर स्थित सबसे छोटा, सबसे उथला और सबसे ठंडा महासागर। दक्षिणी महासागर विश्व महासागर का सबसे दक्षिणी भाग जो अंटार्कटिका के चारों ओर दक्षिणी ध्रुव की ओर स्थित है। तो हम किस तरह से इनके संरक्षण के लिए अपना योगदान दे रहे हैं, ये आज के दिन नज़र डालने के लिए हमें जो है इन दिनों को हम सेलिब्रेट करते हैं। तो दोस्तों मेन उद्देश्य तो यही रहता है कि हम खुद कितने जागरूक हैं, कितना योगदान हम दे रहे हैं और क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या हमारे कर्तव्य हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करना, लोगों तक बात पहुँचाना, बस यही जो है मोटिव रहता है। लेकिन हमें सिर्फ आज के दिन तक सीमित नहीं रहना है। चाहे कोई भी दिन हम सेलिब्रेट करें, हमें हर पल जिंदगी में उन बातों को इन्वॉल्व करना होता है, उन बातों को ऐड करना होता है। तो फिलहाल कार्यक्रम में हमें लेना है एक फिर से प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक। तो आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम में इस खूबसूरत से गीत को।
1: लेटेस्ट अपडेट

तो बहुत ही प्यारा सा ये गीत आप सभी ने एंजॉय किया, और इसी गीत के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे, क्योंकि बहुत सारी बातें और बहुत सारी जानकारियाँ आप सभी तक पहुँचाने को है। जी दोस्तों, समय का पता ही नहीं चलता है कि कब किस तरह से रेत की तरह फिसलता हुआ निकलता जाता है, और बातें कुछ भी नहीं हुई होती हैं। जब बैठते हैं ना तो ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी खास खास सी जानकारियाँ हैं जो आप सभी तक पहुँचानी है, लेकिन क्या करें, समय जो है ना वो कहीं ना कहीं समय की पाबंदियों में बंध कर रह जाते हैं। तो कोई बात नहीं दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा सा टच ज़रूर हम लेंगे हर चीज़ के लिए, बाकी तो खैर बाकी बात की बात है। तो आइए एक और खास जानकारी की ओर आप सभी को लेकर चलते हैं। दोस्तों, एक तरफ आप मौसम का रुख जो है वो देख रहे हैं कि बहुत ही तीखी सी धूप जो देखने को मिल रही है, बहुत ही गर्मियों वाला मौसम जो है इस समय बना हुआ है, लेकिन मानसून की हम बात करें दोस्तों तो इस बार 3 दिन की देरी से केरल पहुंचे मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है और महाराष्ट्र सहित देश के 12 राज्यों में दस्तक दे चुका है। जी दोस्तों, आईएमडी के मुताबिक पूर्वोत्तर के मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और असम के कुछ हिस्सों में भी मानसून पहुंच चुका है। अगले 2 दिन में ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के बाकी हिस्सों और पूर्वोत्तर के बाकी राज्यों में पहुंच सकता है। तो बिल्कुल अब जून महीना जो है एक तरह से चल रहा है, और जून मिड तक जो है मानसून पहुंच ही जाता है, जून मिड नहीं तो एंड और जुलाई स्टार्टिंग में कुछ ऐसा ही रहता है। मौसम का खैर पता नहीं चलता है, लेकिन केरल में जो है मानसून दस्तक दे चुका है। जी दोस्तों, तो अब कभी भी जो है यहाँ भी पहुँच ही सकते हैं, या कि यही कह सकते हैं कि बस रास्ते में है, चले हुए हैं। जिस तरह से हम जिंदगी में आगे की ओर बढ़ रहे हैं उसी तरह से हर एक चीज़ अपने अपने हिसाब से आगे की ओर बढ़ रही है। तो फिलहाल दोस्तों हम भी बढ़ते हैं, हमें भी क्यों रुकना है, हम भी नहीं रुकेंगे भाई किसी के कहने पे। हम एंजॉय करेंगे कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत। एंजॉय कीजिए अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका की तरफ से कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा मीठा सा गीत आप सभी के लिए।

0: नहीं, इकबाल नाम है मेरा।
1: वाह वाह, लगता अल्लाह मियां के हुक्म से फरिश्तों ने महीने भर की छुट्टी लेकर बनाया आपको। क्या बात,
2: बदतमीज, तुमने मेरे ड्रेस खराब कर दिए।
1: हाँ मेरे साहब, ड्रेस तो आपका खराब हो गया लेकिन

91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी एंजॉय कर रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। इस बहुत ही प्यारे से मीठे से सफर में इस समय आप सभी अपने दिन की शुरुआत डेली की रूटीन को एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों कहते हैं कि असलियत कभी छुपती है, क्या छुपती है ये सवाल खुद से भी होना चाहिए। जी दोस्तों, असलियत छुपती है, बदलती नहीं। मेंढक को सोने के सिंहासन पर बिठा दो, मौका मिलते ही वो नाली में ही कूदेगा। कुछ लोग भी बिल्कुल वैसे ही होते हैं, उन्हें कितना भी प्यार दो, सम्मान दो, साथ रखो, मौका मिलते ही अपना असली चरित्र दिखा ही देते हैं। इसलिए सबकी मदद कीजिए, लेकिन परखे बिना किसी पर भरोसा कभी मत कीजिए, क्योंकि जगह बदली जा सकती है, किसी का स्वभाव नहीं। बिल्कुल दोस्तों, ये बहुत ही सही बात है कि हम किसी पे भी विश्वास नहीं कर सकते। और दोस्ती की हमने बात की है तो अक्सर कुछ लोग ना अपने स्वार्थ के लिए इतने मीठे बन जाते हैं, इतने अच्छे बन जाते हैं कि जैसे ही हमें फिर से विश्वास हो जाए तो वो फिर से उस विश्वास को तोड़ देते हैं। लेकिन जो विश्वास एक बार टूट जाए ना, उसे दोबारा से जीतना बहुत मुश्किल होता है। कहते हैं ना दोस्तों, विश्वास बनाने के लिए सदियां लग जाती हैं और टूटने के लिए सिर्फ एक सेकंड ही बहुत होता है। कुछ पलों की बात और रिश्ते टूटकर बिखर जाते हैं। तो आपको किस तरह से अपने इस दोस्ती के रिश्ते को बरकरार रखना है, प्यारे से दोस्त को अपनी ज़िंदगी में जगह देनी है, क्या करना है, ये आप सभी जानते हैं बहुत अच्छे से।

291.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी एंजॉय कर रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। आज का ये बहुत ही प्यारा सा 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का मीठा सा सफर आप सभी ने एंजॉय किया अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ, रुचिका की ढेर सारी खट्टी मीठी सी बातों के साथ। तो बिल्कुल दोस्तों, तो उम्मीद है आप सभी को जरूर पसंद आया होगा और आप सभी ने जरूर ढेर सारा एंजॉय किया होगा। तो अब समय हो गया है इस एंजॉय को फिलहाल के लिए रोकने का। जी दोस्तों, कोई बात नहीं, ये जो मनोरंजन है तो आपका पूरा दिन इसी तरह से चलता रहेगा, लेकिन कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला से आप सभी को अब रुचिका को अनुमति देनी होगी जी दोस्तों कार्यक्रम संपन्न करने की। बिल्कुल, तो फिर होगी मुलाकात आप सभी के साथ एक नई बातचीत के साथ, नई जानकारियों के साथ। तब तक आप सभी इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और याद करते रहिए, गुनगुनाते रहिए अपने मनपसंद रेडियो।

0: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक होस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं APEX+ पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: जिन्हें अपना समझकर हर कठिन समय में उनके साथ खड़े रहे। कई बार वही लोग तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारी बुराई करते हैं, और यही संसार का स्वभाव है पार्थ। जिसे तुम अपना मानते हो वो सदा तुम्हारा हित नहीं चाहता। पर स्मरण रखो, उपकार का अर्थ ये नहीं कि सामने वाला तुम्हारी भावना समझे। कुछ लोग प्रेम को अधिकार समझ लेते हैं और तुम्हारे मौन को कमजोरी। इसलिए अच्छा बनो, पर अपनी शांति की कीमत पर नहीं। और जब अपने ही तुम्हारी बुराई करें तो स्वयं को बदलना मत। अपनी अपेक्षाएं सीमित रखो, क्योंकि सभी अपने दिखने वाले वास्तव में अपने नहीं होते।
1: हेलो
2: हेलो सर, shopping.com से आपने का जूते ऑर्डर किए थे, फिलहाल वो स्टॉक में नहीं है।
1: पेमेंट तो कट हो गया।
3: जूम इन, जूम इन।
2: डोंट वरी सर, रिफंड के लिए QR कोड भेज रही हूँ, आपको सिर्फ स्कैन करना है।
1: QR कोड से रिफंड?
2: यस सर।
3: गॉट इट।
2: यही है सबसे फास्टेस्ट प्रोसेस रिफंड के लिए। प्लीज जल्दी कीजिए, आपका पैसा लौटाना हमारा फर्ज है।
4: क्यों मैडम फर्जी, बहुत जल्दी है आपको?
2: नहीं तो
4: चलो सबको खड़ा करो। तो आप क्या समझे, QR कोड सिर्फ पेमेंट करने के लिए स्कैन किया जाता है, पैसे रिसीव करने के लिए नहीं। सतर्क रहें, आइए मिलकर चीट्स को बीट करें।
5: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
6: हर घर सूर्य घर।
7: सरकार की तरफ से जितने स्वास्थ्य कर्मी हैं हेल्थ वर्कर्स, वो घर घर जाकर के आपको अवगत कराएंगे टीबी के बारे में। हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है कि उनका सहयोग कीजिए। ये जो आपको खांसी हो, बुखार हो, वजन कम हो रहा हो, ये बताइएगा उन्हें। देखिए टीबी इतनी बड़ी बीमारी नहीं है कि पकड़ में ना आ सके। हाँ, इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
8: मार्केट जा रहा हूँ, आता हूँ अभी।
9: अच्छा सुनो, आते हो मेरे लिए थोड़े से पनीर के पकोड़े ले आना।
8: तुम पागल वागल होगी हो क्या?
10: Oh, no.
8: पता भी है पनीर के पकोड़े कितने अनहेल्दी होते हैं, कैसे कैसे तेल में तलते हैं वो लोग। कुछ हेल्दी खाओ यार।
9: अच्छा अच्छा सुनो, 1 किलो काजू बादाम ले आना फिर।
8: तुम बुरा मानगी ना?
9: नहीं तो।
8: तुम बुरा मानगी है, तुम्हें नहीं पता। ठीक है यार, मैं ले आऊंगा पकोड़े, कभी कभी तो खाती हूँ, इसमें क्या हो गया, कभी कभी एनएलडी भी खाना चाहिए।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने, नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

0: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक होस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं APEX+ POINT ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: जिन्हें अपना समझकर हर कठिन समय में उनके साथ खड़े रहे। कई बार वही लोग तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारी बुराई करते हैं, और यही संसार का स्वभाव है पार्थ। जिसे तुम अपना मानते हो वो सदा तुम्हारा हित नहीं चाहता। पर स्मरण रखो, उपकार का अर्थ ये नहीं कि सामने वाला तुम्हारी भावना समझे। कुछ लोग प्रेम को अधिकार समझ लेते हैं और तुम्हारे मौन को कमजोरी। इसलिए अच्छा बनो, पर अपनी शांति की कीमत पर नहीं। और जब अपने ही तुम्हारी बुराई करें तो स्वयं को बदलना मत। अपनी अपेक्षाएं सीमित रखो, क्योंकि सभी अपने दिखने वाले वास्तव में अपने नहीं होते।
1: हेलो
2: हेलो सर, shopping.com से आपने जो जूते ऑर्डर किए थे फिलहाल वो स्टॉक में नहीं है।
1: पेमेंट तो कट हो गया।
3: Zoom in.
2: Don't worry, sir. रिफंड के लिए QR कोड भेज रही हूँ, आपको सिर्फ स्कैन करना है।
1: QR कोड से रिफंड?
2: Yes, sir.
3: Got it.
2: यही है सबसे फास्टेस्ट प्रोसेस रिफंड के लिए। प्लीज जल्दी कीजिए, आपका पैसा लौटाना हमारा फर्ज है।
4: क्यों मैडम फर्जी, बहुत जल्दी है आपको?
2: नहीं तो
4: चलो सबको खड़ा करो।
5: तो आप क्या समझे, QR कोड सिर्फ पेमेंट करने के लिए स्कैन किया जाता है, पैसे रिसीव करने के लिए नहीं। सतर्क रहें, आइए मिलकर चीट्स को बीट करें।
6: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
7: हर घर सूर्य घर।
8: सरकार की तरफ से जितने स्वास्थ्य कर्मी हैं हेल्थ वर्कर्स, वो घर घर जाकर के आपको अवगत कराएंगे टीबी के बारे में। हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है कि उनका सहयोग कीजिए। ये जो आपको खांसी हो, बुखार हो, वजन कम हो रहा हो, ये बताइएगा उन्हें। देखिए, टीबी इतनी बड़ी बीमारी नहीं है कि पकड़ में ना आ सके। हाँ, इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
9: मार्केट जा रहा हूँ, आता हूँ अभी।
10: अच्छा सुनो, आते हो मेरे लिए थोड़े से पनीर के पकोड़े ले आना।
9: तुम पागल वागल होगी हो क्या?
11: Oh, no.
9: पता भी है पनीर के पकोड़े कितने अनहेल्दी होते हैं, कैसे कैसे तेल में तलते हैं वो लोग। कुछ हेल्दी खाओ यार।
10: अच्छा
9: हाँ।
10: अच्छा सुनो, 1 किलो काजू बादाम ले आना फिर।
9: तुम बुरा मान गई ना?
10: नहीं तो?
9: तुम बुरा मान गई, तुम्हें नहीं पता। ठीक है यार, मैं ले आऊंगा पकोड़े, कभी कभी तो खाती हूँ, इसमें क्या हो गया, कभी कभी एनएलडी भी खाना चाहिए।

नमस्कार दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और अब समय है दोस्तों कार्यक्रम हमारी सेहत का। तो दोस्तों ये कार्यक्रम हमारी सहयोगी संस्था ऑर्गन इंडिया द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, जीवन एक अनमोल उपहार। ये कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: मेरा नाम है पायल और हम सब ये आशा करते हैं कि आपका दिन बहुत अच्छे से गुजर रहा है। ऑर्गन इंडिया एक गैर सरकारी सामाजिक संस्थान पराशर फाउंडेशन की पहल है और हम हर कार्यक्रम में आपके लिए अंगदान, नेत्रदान और देहदान से जुड़ी हुई सूचना और अनोखी कहानियाँ लेकर आएंगे। आज एक ऐसी ही दिलचस्प कार्यक्रम के साथ हम फिर लौटे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। आज के कार्यक्रम में ऑर्गन इंडिया से डॉक्टर सौरभ शर्मा हमारे साथ हैं और आज हम एक बार फिर से एक और प्रेरणा से भरी हुई कहानी लेकर आए हैं और वो हमें बहुत ही खास मेहमान से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए डॉक्टर शर्मा से बात करते हैं।
2: दोस्तों, साथियों, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर सौरभ है और आज फिर से मैं आपका एक बार स्वागत करता हूँ अपने इस खास कार्यक्रम में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे मेहमान से परिचित करवाना चाहता हूँ। आपने जब भी सुना होगा अंगदान के बारे में या ऑर्गन डोनेशन के बारे में या नेत्रदान के बारे में, तो आपको हमेशा डोनर का नाम याद रहता है कि हाँ, इस इंसान ने ये आईज डोनेट करी, कॉर्निया डोनेट करी और इस इंसान ने अपने ऑर्गन डोनेट किए, इस हॉस्पिटल में ये ऑर्गन डोनेट हुए, इस व्यक्ति को ये ऑर्गन डोनेट गए। इनके अलावा भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिन्हें हम ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर कहते हैं, या फिर वो लोग जो अपनी जो मुख्य उनके जो काम है जिंदगी यापन करने के लिए जो लोग काम करते हैं, वो काम छोड़ के, वो काम साइड में रख के, वो समाज के कल्याण के लिए ऐसी चीज़ों के लिए आगे आते हैं और नेत्रदान और अंगदान जैसी चीज़ों पर जागरूकता फैलाते हैं। प्लस जब किसी के घर में किसी की मृत्यु होती है तो वो इन डोनेशंस को कोऑर्डिनेट भी करते हैं, इन डोनेशंस को साकार रूप देते हैं। तो आज के हमारे जो मेहमान हैं वो इन्हीं में से एक हैं। आज हमने ये सीरीज इसलिए जुड़ी है, ये श्रृंखला इसलिए जुड़ी है क्योंकि आपको इन लोगों के बारे में भी पता चलना चाहिए कि कैसे लोग काम करते हैं और इनको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ऐसी जब कोई अंगदान होता है या कोई नेत्रदान होता है। तो चलिए देर ना करते हुए मैं आपको आज के मेहमान के साथ परिचय करवाता हूँ। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो है डॉक्टर कुलवंत गौर। ये कोटा के रहने वाले हैं और कोटा और पूरी राजस्थान, कोटा सिटी और पूरे राजस्थान में ये बहुत जाना माना नाम है। पिछले कई सालों से नेत्रदान के ऊपर जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। प्लस जब किसी की डेथ होती है तो इनको वो कॉर्निया निकालने के लिए बुलाया जाता है और चाहे वो रात हो, चाहे वो सुबह हो, चाहे वो शाम हो, अपना सारा काम धाम छोड़कर ये तुरंत उन कॉर्नियाज को लेने के लिए चले जाते हैं ताकि कुछ लोगों को अपनी आंखों की रोशनी वापस मिल सके। पिछले कई सालों से ये हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं और ये अंगदान पे भी उतनी ही तत्परता से काम कर रहे हैं। तो चलिए डॉक्टर कुलवंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ऑर्गन इंडिया के इस खास कार्यक्रम में। मैं पूरी ऑर्गन इंडिया की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ।
3: धन्यवाद डॉक्टर सौरभ जी और धन्यवाद ऑर्गन इंडिया की पूरी टीम जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं नेत्रदान, अंगदान और देहदान से जुड़ी जो जानकारी आप तक पहुँचा पा सकूँ।
2: कुलवंत जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आप इस काम में आगे कैसे आए, इस काम की जो इंस्पिरेशन है वो आपको कहाँ से मिली, कैसे आप इस काम से जुड़ गए?
3: तो सौरभ जी, अगर आपने जो सवाल किया है कि मैं पहले तो बताऊं आपको कि हमने इसके कार्य की प्रेरणा कहाँ से मिली, तो मैं बाय प्रोफेशन होम्योपैथिक में डॉक्टर हूँ। मेरी वाइफ भी होम्योपैथिक में ही डॉक्टर हैं और एक ब्लड डोनेशन के काम से लेके मैं सूरत में पोस्टेड था, सूरत रक्तदान केंद्र में। वहां से जब मैं कोटा की तरफ आ रहा था दिल्ली से, मतलब ये अपने उसके वेकेशन के टूर पे, तो रेलवे स्टेशन पे घटी कि वहां पर एक ट्रेन जो कि प्लेटफॉर्म की तरफ आ रही थी उसने जोर से हॉर्न बजाया, तो एक ब्लाइंड बच्चा जो कि वहीं पर ही भिखारियों का बच्चा था, उस बच्चे ने आग से जैसे हॉर्न बजा तो एकदम से घबरा गया वो और ट्रेन से जाके भिड़ गया जो कि स्टॉपेज पे आ चुकी थी और वहाँ की चोट लगी सिर पे, ब्लडिंग ब्लड वगैरह आया काफी। तो हमने भी देखा कि यार ये बच्चा इतना प्यारा बच्चा और ये ऐसे कैसे, मतलब इसकी तो आंखें भी वाइट हो रही है। पहली बार मैंने कॉर्निया ब्लाइंडनेस का नाम जब सुना और तब से मैंने प्रण लिया कि यार ये बच्चे बहुत अच्छे से दुनिया देख सकते थे अगर इनको मृत व्यक्तियों की आंखें अगर इनको डोनेशन में मिल जाती कहीं से तो ये बच्चा देख सकता था। फिर इसी बात समझ में आई मरा व्यक्ति आंखदान और एक बच्चा देख सकता था और इसके बाद से हम लोगों ने इस मिशन पे काम करना चालू कर दिया। और हमने हमारी संस्था का नाम शाइन इंडिया फाउंडेशन है, उसका गठन किया 2011 से काम कर रही है। साल भर में केवल 2 जोड़ी नेत्रदान आए थे, आज हम पूरे साल भर में 150 जोड़ी आसपास नेत्रदान लेते हैं। और सिर्फ कोटा ही नहीं, कोटा के आसपास के 200 किलोमीटर के रेडियस तक भी हम सुबह दोपहर शाम रात आंधी तूफान तेज गर्मी सर्दी बारिश सब सहते हुए नेत्रदान लेकर
2: जी।
3: तो ये मिशन जब हमारा धीरे धीरे करके बढ़ने लगा है तो अब जाके थोड़ा सा हमें लगने लगा है कि एक जो निर्णय हमने एक समय पर ले लिया था आज उसकी वजह से कम 800 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कभी दुनिया नहीं देख सकते थे बहुत अच्छे से दुनिया देख पा रहे
2: जी। तो डॉक्टर गौर मुझे आप एक बात बताइए और हमारे जो श्रोता है वो भी ऑफकोर्स जानने के लिए इच्छुक होंगे कि जब भी आप इस तरह की केसेस हैंडल करते हैं, जब भी आपको कभी कोई कॉल आता है कि हमारे यहाँ हमारे जो प्रियजन है उनकी मृत्यु हो गई है और हम ये करना चाहते हैं, तो किस तरह का माहौल वहाँ पर आपको देखने को मिलता है और किस तरह की दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ता है?
3: और जी ये आज 11 साल बाद जाके ऐसा सिनेरियो चेंज हो गया है कि अब आगे से चल के कॉल आते हैं, ये तो पिछले 2 साल पहले तक भी ये घटना ऐसे इतना आसान काम नहीं रहता था। और आज भी बहुत सारे घरों में ऐसा हो सकता है कि हम जाते हैं, बहुत विरोध होता है, काफी गुस्से में लोग रहते हैं और वो कहते हैं कि भाई हमारे तो अभी घर में शौक हो गया और आप अभी काम करो, अभी कल आना आप। अरे मैंने कहा भाई कल आने के बाद तो कुछ रहेगा ही नहीं, अगर आप इनको जाके अंतिम संस्कार करवाओगे तो फिर क्या करेंगे कल आके? बोला नहीं नहीं अभी हमारे यहाँ शौक हो गया और हमारा तो पता नहीं कितना, हमारे तो इसकी तो एज ही नहीं थी, इतना उम्र भी नहीं थी और अभी तो शादी भी नहीं हुई बच्चों के, बहुत एक्स वाई जेड जो भी लोग कहते हैं, तो बहुत विरोध करते हैं। इतना आसान काम नहीं है, लेकिन जब आप धीरे धीरे लोगों को समझाइश करते हो, लोगों को समझाते हो कि भाई ये एक नेक कार्य है और अगर आप वास्तव में अपने परिजनों को किसी आप चाहते हैं कि किसी कहीं जीवित रह सके तो सिर्फ नेत्रदान एक माध्यम है
2: जी,
3: उसके अलावा कुछ नहीं है। आप जाएंगे अभी 10 मिनट बाद जाके इनको अग्नि के हवाले कर देंगे और वहाँ से एक लोटा में राख के आ जाएंगे वहाँ। लेकिन यदि आपने नेत्रदान का पुनित कार्य किया तो ये आपके जो परिजन है ना इनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि नेत्रदान ही है। अगर आप नेत्रदान कराएंगे तो किसी की आंखों में जीवित रह सकते हैं। तो हर तरीके के लोग होते हैं, हर तरीके के विचारधारा वाले लोगों से बातचीत करना थोड़ा सा संभव नहीं है, पता कि अपन उनको प्रॉपरली क्या जवाब दें। लेकिन अगर हम ये सोच के घर बैठे रहेंगे कि पता नहीं वहाँ क्या कहेंगे, पता नहीं वो ये बात सुनेंगे नहीं सुनेंगे, पढ़े लिखे लोग नहीं है या कई बार ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी होते हैं तो वहाँ भी दिक्कत आती है। लेकिन अगर ये हम सोच के बैठेंगे तो हम कुछ कर नहीं सकते थे। तो हमारा डेली हमारी टीम का मिशन रहता था कि चाहे वो हाँ करें ना करें, आना है लोग से बातचीत करनी। लेकिन आज का सीनियर मैं आपको बताऊं, अब वो गया दिन जब ऐसी बातें होती थी, अब तो छोटे छोटे बच्चे अपने दादा दादी नाना नानी के किसी डेथ होने पर पूरे घर के सभी सदस्य नेत्रदान की पूरी प्रक्रिया देखते हैं, उसका वीडियो शूट करते हैं, उसके बारे में उनसे पूछते हैं कि अंकल ये क्या है, कैसे निकाला, इसको किस दवाई में डाला, ये सब सारी जानकारी अब आजकल छोटे छोटे बच्चे भी बहुत अच्छे से ले रहे हैं।
2: बिल्कुल डॉक्टर गौर, मैं आपको भी एक बात कन्विंस करना चाहूंगा कि जब भी मैं आपसे और आप जैसे लोगों से बात करता हूं तो मैं खुद इस कार्यक्रम में होने के बावजूद, खुद इस फील्ड से जुड़े हुए होने के बावजूद भी हर बार एक नई चीज सीखने के लिए एक चीज उठा लेता हूं। जैसे आज की ही बात करें तो सिर्फ 5 मिनट के शो में ही मैंने आपसे एक बहुत अच्छी बात सीख ली कि जो मैं खुद भी यूज करूंगा, जब भी मैं किसी इसके इस बारे में बात करूंगा तो मैं खुद भी हमेशा यूज करूंगा। आपने एक बहुत अच्छी बात कही, बहुत दिल को छूने वाली बात कही कि जब भी हमारे कोई प्रियजन इस दुनिया से चले जाते हैं तो जो सच्ची श्रद्धांजलि है वो उनको अंतिम संस्कार करके और एक लोटे में राख के रूप में लाना नहीं है। अंतिम जो श्रद्धांजलि है, सच्ची श्रद्धांजलि है, वो नेत्रदान या अंगदान के माध्यम से किसी की जिंदगी उनके थ्रू बचाई जा सके और अंतिम समय में उनके द्वारा एक ऐसा काम करवा दिया जाए जिसके लिए वो आप कन्फर्म हो जाएंगे कि वो स्वर्ग में ही जाएंगे, उनको मरने के बाद जो शांति है, जो मोक्ष है वो प्राप्त जरूर होगा, वो यही काम है जी।
3: नहीं अभी हमें कुछ ऐसे थोड़े पोस्टर्स भी हम लोगों ने इस पे उतारे थे, मतलब कॉमेडी थोड़े से कि भाई आज के समय में आधुनिक युग में वर्तमान युग में मोक्ष पाने का सबसे सरल आसान उपाय यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप नेत्रदान करा दीजिए मोक्ष मिल जाएगा। बाकी तो आप अगर आप सोचो कि हम सालों तक तपस्या करें, भूखे प्यासे रहें, एक पैर पे खड़े रहें, सिर्फ हवा पानी से ही खाए पिए तो उससे मोक्ष मिल जाएगा, तो पता नहीं उससे मिलता नहीं मिलता हमें नहीं पता, लेकिन नेत्रदाता को तो 100% मोक्ष मिलता है।
2: बिल्कुल बिल्कुल सच।
3: रामायण वाल्मीकि रामायण के 12वें सर्ग में और करीब 43वां श्लोक में, 43वां नंबर के श्लोक में बात लिखी हुई भी है कि नेत्रदाता को मोक्ष प्राप्त होता है।
2: बिल्कुल, और कलयुग में तो वैसे भी सबसे अच्छा काम जो है वो त्याग है। अगर आप अपने पास से कुछ किसी को दे रहे हैं बिना किसी स्वार्थ के तो वो सबसे बड़ा पुण्य है। कोई तपस्या, कोई मंत्र, कोई व्रत इससे बड़ा नहीं हो सकता। जी डॉक्टर गौर, हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अपनी इस चर्चा को जारी रखेंगे और अंगदान और नेत्रदान से जुड़े हुए दूसरे पहलू भी जानने की कोशिश करेंगे।
1: ब्रेक से पहले आइए सुनते हैं भजन सम्राट अनूप जलोटा जी का अंग दान से जुड़ा अपना व्यक्तिगत अनुभव।
4: कहते हैं जान है तो जहान है, बात सच है, लेकिन जब जान नहीं रही तो क्या हम किसी और को जिंदगी दे सकते हैं? जी हाँ, हम जाने के बाद अपनी आंखें किसी को दे सकते हैं, तो हमारी आंखों से वो दुनिया को देख सकता है, हम अपने दूसरे ऑर्गन दे सकते हैं, दिल दे सकते हैं और किसी और को जिंदगी मिल जाएगी। मेरी वाइफ मेधा, उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ और 13 साल उसने जिंदगी और गुजारी। ये तभी हो पाया कि जिसने हार्ट डोनेट किया था उसको ये अवेयरनेस थी कि मेरे जाने के बाद मैं किसी और को एक्स्ट्रा जिंदगी दे सकता हूँ। अगर ये चीज़ हम आप सब समझ जाएं, तो ना जाने कितने लोगों का संसार खूबसूरत हो सकता है हमारे जाने के बाद। हिंदुस्तान में हर साल करीब 5 लाख लोग इसलिए मर जाते हैं कि उनको वो ऑर्गन नहीं मिलते जिससे कि उनकी ज़िंदगी बच सकती है। आप ऑर्गन डोनेट करके हीरो बन सकते हैं। हीरो बनने के बहुत से तरीके हैं, ये भी एक तरीका है हीरो बनने का कि जिंदगी भर कोई आपकी बातें करेगा। एक व्यक्ति 8 लोगों की जिंदगी बचा सकता है। 8 लोगों को आप ऑर्गन डोनेट करते हैं केवल एक बॉडी से, और यदि आप ऐसा करते हैं तो वो सब लोगों के तो आप हीरो हो गए। तो कितना अच्छा होगा कि इस बात को समझें और लोगों को समझाएं। हमारा मकसद यही है कि ये खबर सब तक पहुंचाएं, सब इस बात को जानें कि एक आदमी 8 लोगों की जान बचा सकता है, उन 8 लोगों के आप हीरो बन जाएंगे। तो आज ही प्लेश करिए और हमारा साथ दीजिए।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: साथियों हमारा वो छोटा सा ब्रेक खत्म हो चुका है। आपको मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि आज के शो में हमारे जो मेहमान हैं वो डॉक्टर कुलवंत गौड़ हैं जो कि कोटा के रहने वाले हैं और हम उनसे नेत्र दान और रंगदान के जो अभियान उन्होंने चला रखा है उस बारे में बात कर रहे हैं। डॉक्टर गौड़ मैं आपसे अगला प्रश्न ये पूछना चाहूंगा कि जब भी हम ऐसे अंगदान या नेत्रदान का काम करते हैं तो कितना समय इस चीज में लगता है और फैमिली की तरफ से क्या क्या चीजें करने की जरूरत होती है, मतलब फैमिली की तरफ से क्या क्या करना जरूरी है और आपकी तरफ से क्या क्या होता है?
2: नेत्रदान के लिए जो आपसे बात पूछना चाह रहे हैं कि क्या तैयारी पहले से रखनी चाहिए और क्या हमारे को सावधानी रखनी है, तो उसमें देखिए जब भी कभी ऐसी घटना घटती है तो मृत परिजन अपने जो मृतक की है उनकी आंखें पूरी तरह बंद करें। जनरली क्या होता है कि हम कई बार नेत्रदान लेने जाते हैं तो ऐसे समय में आंखें खुली हुई रहती हैं तो उसे कॉर्निया के सूखने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो सबसे पहले तो आंखें पूरी तरह बंद कर दें, आंखों पर गीला रुमाल रख दें और यदि पंखा चल रहा हो तो पंखा बंद कर दें। और जो इसमें उम्र का क्राइटेरिया है वो 2 वर्ष की उम्र से 80 वर्ष तक की उम्र का नेत्रदान संभव है। और ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी मृत्यु पानी में डूबने से या जहर खाने से या किसी तरीके जलने से या इलेक्ट्रिक शॉक से है ना, तो ऐसे केसेस के अंदर हम लोग आई डोनेशन नहीं करते हैं। बाकी ऐसी कोई भी नॉर्मल बीमारी, हार्ट अटैक से किसी की डेथ हुई हो, डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, थायराइड हो, ये सब के तरीके की जो मेडिसिन चल रही हो वो लोग भी नेत्रदान कर सकते हैं। जिसने आंखों में चश्मा लगा रखा वो व्यक्ति भी नेत्रदान कर सकता है। तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो चुका है वो लोग भी कर सकते हैं। तो इस तरीके में जो कॉमन जो नॉर्मल जो डेथ होती है उन सबके अंदर नेत्रदान संभव है। नेत्रदान में सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट का समय लगता है, एक नेत्रदान में 5 से 10 मिनट, दूसरे में भी यही करीब करीब। तो हम लोग 10 से 15 मिनट के अंदर कॉर्निया कलेक्शन कर लेते हैं। सिर्फ पूरी प्रक्रिया के दौरान ना तो किसी तरीके का कोई ब्लड इसमें आता है और ना किसी तरीके का कोई चेहरे पर गड्ढा होता है। ज्यादा लोगों को भ्रांति रहती है कोई चेहरा बिगड़ जाएगा, ब्लड आएगा और या फिर उनको अस्पताल लेके जाना पड़ेगा। तो मैं आपको बताऊं कि नेत्रदान की प्रक्रिया में किसी भी तरह का ब्लड नहीं आता, ना चेहरे पे गड्ढा पड़ता और ना कहीं अस्पताल के ले जाने की जरूरत है। आप कहीं भी हमें 10 मिनट का समय दीजिए और ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
1: ये घर पे भी हो सकती है और अगर इन केस अगर आप शमशान ले जा चुके हैं शरीर को और तब आपको ध्यान आया तो तब भी आप एक कॉल के माध्यम से
2: बिल्कुल
1: बिल्कुल
2: घर में अगर अस्पताल में या ना मुक्ति धाम में कहीं पर भी प्रक्रिया 5 से 10 मिनट में पूरी हो जाती है।
1: डॉक्टर गौड़ कुछ लीगल लीगल परेशानियां भी होती हैं क्या? डेथ सर्टिफिकेट या फिर कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी होना जरूरी होता है?
2: जी, इसमें लीगल प्रोसीजर इसमें कोई बहुत ज्यादा बड़ा और पेचीदा नहीं है। इसमें सिंपल एक प्रोसेस तो ये है कि डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए। डेथ सर्टिफिकेट मतलब ये कि कोई डॉक्टर वहां पर आके वेरीफाई कर जाए और वो ये बोल जाए कि हाँ भाई इसमें जीवन नहीं बचा और ये डेथ हो चुकी है, इतना तो काफी। हमें ऐसा नहीं कि हमें पेपर चाहिए वहां पे, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। उसके अलावा और लीगल प्रोसेस की बात करें तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या किसी का कहीं मर्डर हो गया, कोई फांसी किसी ने ले लिया, किसी ने सुसाइड किया हैंगिंग से, ऐसे केसेस के अंदर हमारे को पीएम की रिपोर्ट का भी वेट नहीं करना होता। ऐसा नहीं कि भाई पीएम की रिपोर्ट होगी तभी आई डोनेशन होगा। अगर परिजन तैयार है तो पोस्टमार्टम को होता रहेगा लेकिन हमें आई डोनेशन के लिए पहले से बॉडी मिल जाती है और हम आई डोनेशन ले सकते हैं।
1: जी,
2: उसमें हम लोगों को जो संबंधित थाना होता है उसके पुलिस वाले जो होते हैं अधिकारी उनको हम लोग इन्फॉर्म कर देते हैं कि भाई आपके केस के आपके कार्य क्षेत्र के अंदर एक ऐसी डेथ हुई थी जिसने सुसाइड किया था और उनके परिजन चाहते हैं कि नेत्रदान हो जाए और हम ये काम कर रहे हैं। उसके वर्बली कंसेंट हो जाती है हमारी, हम ये काम कर रहे हैं।
1: जी, तो थाने के SHO के साथ वर्बली अगर कंसेंट हो जाए तो आप ले सकते हैं, उसमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती, तो वेट नहीं करना पड़ता।
2: जी,
1: आपने जो बताया घर से ही कॉर्निया कलेक्शन हो जाता है तो कितने समय के अंदर अंदर ये चीज हम कर सकते हैं?
2: देखिए, घर पर भी जब भी कोई डेथ होती है तो मैं उसके लिए बताना चाहूंगा, अगर घर पे डेथ होती है और अगर उसका डेथ वेरिफिकेशन कोई डॉक्टर ने आके नहीं किया है तो हम आई डोनेशन नहीं देते हैं। हम उनको पहले बोलते हैं आप पहले एक बार डॉक्टर को बुलाइए और वो आके पहले से इसको चेक करेंगे, वो ये बोलेंगे, उसके बाद ही हम लेंगे। बाकी हॉस्पिटल की डेथ और बाकी जो डेथ होती है उनमें तो आपको मैंने बता ही दिया कि हमें किस जरूरत होती है लीगल पेपर की, कब नहीं होती। बात अति समय की, तो समय का देखिए क्या है, गर्मियों में जो समय है उसमें 6 से 8 घंटे के अंदर अंदर हम नेत्रदान हो जाना चाहिए। ठीक है, गर्मियों में जब एक मृत्यु होती है तो 6 से 8 घंटे के अंदर अंदर होना चाहिए। सर्दियां या जिस तरह के टेम्परेचर अभी पूरे में देखा जा रहा है, पूरे जो सर्दियां जो हो रही है पूरे भारत में देखा जा रहा है टेम्परेचर डाउन हो चुका है, ऐसे दौरान हम लोग 10 से 12 घंटे के अंदर भी नेत्रदान ले सकते हैं। और यदि कई बार हम रिलेटिव बाहर होते हैं तो शव को डीप फ्रिज में रखा जाता है, तो डीप फ्रिज में रखने के बाद हम 24 घंटे के अंदर अंदर भी नेत्र दान कर सकते हैं। तो काफी समय हमारे पास रहता है, 6-8 घंटा नॉर्मल डेज में, सर्दियों में 10-12 और अधिक बॉडी को डीप फ्रिज में रखा तो 24 घंटे के अंदर भी नेत्र दान संभव है। और उसमें कॉर्निया पूर्ण अच्छे से सुरक्षित रहता है
1: और सिर्फ 10-15 मिनट का समय लगता है। जी, तो अब बात आती है एलोकेशन की, तो हम एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेंगे और वापस आकर एलोकेशन के बारे में बात करेंगे। जो ये कॉर्नियाज डोनेट होती है, जो नेत्रदान होता है, वो जाता कहाँ है? तो यहाँ पर हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं, देन ब्रेक के बाद अपनी इस चर्चा को जारी रखेंगे।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: साथियों छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आ गए हैं। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर कुलवंत गौड़ जी से जो कि कोटा के रहने वाले हैं और शाइन इंडिया फाउंडेशन एक संस्था रन करते हैं जो कि अंगदान और देहदान और नेत्रदान पर जागरूकता फैलाने का काम करती है। डॉक्टर गौड़ हम बात कर रहे थे कॉर्निया के बारे में कि जब कॉर्निया डोनेट हो जाती है तो हम कितने समय तक उनको संजो कर रख सकते हैं, कितने समय तक हम उनको प्रिजर्व करके रख सकते हैं और ये कॉर्निया जाती किनको है और किस तरह से जाती है।
2: देखिए नेत्रदान को लेने के बाद जो कॉर्निया होता है वो एक तरीके के लिक्विड उसमें रखा जाता है, इसका नाम एमके मीडियम होता है और एक कॉर्निक सोल कर देता है। दो मीडियम हम लोग काम देते हैं। एमके मीडियम जो आता है उसके अंदर कॉर्निया को रखने के बाद उसकी जो लाइफ है 3 से 4 दिन की रहती है, मैक्सिमम 3 डेज 4 डेज मान लीजिए। और जो कॉर्निक सोल होता है उसमें जो लाइफ होती है करीब 14-15 दिन की रहती है, मतलब 2 वीक्स। इस तरीके दो तरह के डायरेक्शन आते हैं जिनमें हमें बहुत अच्छे से संजो कर सकते हैं। हमें लगता है कि यदि कॉर्निया उत्तम गुणवत्ता वाला है तो हम उसको 15 दिन की डायरेक्शन में यूज करते हैं और 3 दिन की प्रोसेस यूज करते हैं। और जो आपने पूछा कि कॉर्निया कैसे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसके पीछे मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जनरली हम जो कॉर्निया लेते हैं वो राजस्थान की राज्य सरकार को हम लोग भेज देते हैं, आई ब्लिंक सोसाइटी ऑफ राजस्थान, वहां से इनका डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्निया ब्रांड के जो पेशेंट्स हैं, जो बच्चे हैं जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, उन लोगों को इसका प्रत्यारोपण निःशुल्क किया जाता है सरकार की तरफ से पूरी तरह निःशुल्क।
1: जी मैं एक और चीज यहाँ पर पूछना चाहूंगा कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जब उनमें कोई कॉर्निया ट्रांसप्लांट करवाता है तो उनको वो कॉर्निया कहाँ से मिलते हैं?
2: देखिए CDS करके एक हमारा सिस्टम होता है, कॉर्निया डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो कि ऑल ओवर इंडिया रहता है। पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर जितने भी आई बैंक हैं वो जब जब अपने पास जिस उम्र का कॉर्निया पाते हैं वो उस पर डाल देते हैं, पूरा पैनल एक तरीके से पूरा उस पर डाल दिया जाता है और जिस डॉक्टर को भी जरूरत होती है वो वहां से उसको पिक कर लेते हैं और फिर वो कॉर्निया डॉक्टर तक पहुंचा दिया जाता है। इसमें जो भी कॉर्निया प्रत्यारोपण के लिए जो डॉक्टर जो सर्जरी होती है वो निःशुल्क रहती है, इसी तरीके का कोई चार्जेस डॉक्टर के द्वारा नहीं लिया जाता है कॉर्निया के लिए। बाकी जो डॉक्टर की उसकी फीस होती है वो अपने अलग अलग अस्पताल अलग अलग कॉर्निया सभी को निःशुल्क मिल रहा है।
1: जी जो दान किया हुआ अंग है उसका कोई भी पैसा नहीं लिया जाता, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो,

0: वो निःशुल्क ही मरीजों को उपलब्ध कराया जाता है। जी अच्छा, मैं एक और चीज पूछना चाहूंगा। आपने अभी कुछ देर पहले बोला कि अगर कॉर्निया की गुणवत्ता अच्छी हो तो 14 से 15 दिन के लिए भी हम स्टोर कर सकते हैं, तो ये जो गुणवत्ता है वो कैसे डिसाइड होती है, किन किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर आप ये गुणवत्ता डिसाइड करते हैं?
1: देखिए, कॉर्निया की गुणवत्ता बहुत सारी चीजों पर निर्भर करती है ना। जहाँ से हम इसको कलेक्ट कर रहे हैं वहां से लेके जब तक ये ट्रांसप्लांट होता है तब तक बहुत सारी चीजों के प्रक्रिया के दौरान कॉर्निया को गुजरना पड़ता है।
0: ठीक
1: है, जो टेक्निकल जो स्टाफ है हमारा जो कॉर्निया निकाल रहा है, ठीक है, उसके निकालने में अगर जरा सा खिंच गया, ठीक है, कॉर्निया, तो कॉर्निया के अंदर की जो सेल्स होती है वो डैमेज हो जाती है। ठीक है, इसको हम एंडोथेलियम लेयर कहते हैं। अगर वो एंडोथेलियम लेयर में कहीं भी कट लग गया तो कॉर्निया चाहे कितनी कम उम्र का हो बिगाड़ गया। ठीक है, तो मेरा कहना यह है कि गुणवत्ता बराबर बनी रहे उसके लिए एक कॉर्निया कम से कम 3 से 4 हाथों में से गुजरता है। पहला तो वहां जहां से कॉर्निया कलेक्शन हुआ, दूसरा फिर उसको आप जब आप उसमें वाइल में डाल रहे हैं उसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहा जो कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहना चाहिए। ठीक है, अगर वो मेंटेन नहीं रहा तो उसकी गुणवत्ता पे फिर वहां भी इफेक्ट आ गया। उसके बाद ट्रांसपोर्ट में जब वहां पहुंचा, ठीक है, जब भाई बैंक पहुंचा, निकालने करने में कहीं कुछ उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहीं कुछ उसमें आ गया, ठीक है, प्रॉपरली अगर उसको नहीं किया गया वहां पे भी उसकी गुणवत्ता बेकार हो सकती है। बाकी यूं अगर देखा जाए आम बोलचाल की भाषा में तो जो कम उम्र होती है, जैसे अगर हम माने 15-16 साल से नीचे का व्यक्ति का यदि कोई बच्चे का भी कॉर्निया यदि हमारे पास आता है तो उसकी गुणवत्ता बाकी जो अधिक उम्र के जो लोग होते हैं उनसे काफी बेहतर रहता है और उसके ट्रांसप्लांट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब ज्यादा लोगों में ट्रांसप्लांट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं।
0: जी
1: वैसे तो जनरली एक व्यक्ति से जो 2 कॉर्निया प्राप्त होता है वो 2 अलग अलग लोगों को लगाया जाता है, लेकिन यदि उम्र कम है तो एक व्यक्ति से प्राप्त कॉर्निया जो 2 कॉर्निया प्राप्त होते हैं हम अलग अलग लोगों को लगा सकते हैं। कम से कम एक कॉर्निया 3 लोगों को लग सकते हैं, दूसरा कॉर्निया फिर 3 लोगों को लगा सकते हैं,
0: मतलब 6 लोगों को नेत्र की रोशनी दे सकते हैं।
1: जी हाँ, वैसे तो खैर एक कॉर्निया में 5 लेयर होती है और दूसरे में भी 5, तो हम 10 लोगों को रोशनी दे सकते हैं, लेकिन जो अभी हमारे जयपुर में कर पा रहे हैं हम लोग तो एक कॉर्निया अधिकतम 3 लोगों को दे पा रहे हैं, दूसरा फिर 3 को, तो करीब करीब 6 लोगों को तो ट्रांसप्लांट हो ही रहा है। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि उम्र का क्राइटेरिया बहुत छोटा है, तो उम्र कम रहती है तो ये कॉर्निया की लेयर ज्यादा अच्छे से हम लोग दूसरे लोगों में ट्रांसप्लांट करते हैं।
0: ठीक है, ठीक है डॉक्टर गौर, अगर कोई व्यक्ति शाइन इंडिया फाउंडेशन से आपसे जुड़ना चाहता हो तो वो आपसे कहाँ संपर्क कर सकता है?
1: जी, हमारा फेसबुक इंडिया फाउंडेशन ट्रस्ट के नाम से, वहाँ पर हमें अपनी रिक्वेस्ट भेज सकता है, हमारा पेज लाइक कर सकता है, यदि आपको भी क्वेरी उनको है तो हमसे पूछ सकते हैं, किसी भी तरीके से कहीं कोई उनको लगता है कि कोई मिथ है, कोई डाउट है कहीं, तो हमारे को मैसेज छोड़ सकते हैं। बाकी उसके अलावा हमारी वेबसाइट भी है, वो भी shineindiafoundation.co.in के नाम से है, और कुछ जानकारी चाहिए तो वहाँ पर भी काफी कुछ आपको मिल सकता है।
0: जी डॉक्टर कुलवंत, अगर आप हमारे श्रोताओं को कोई संदेश देना चाहते हो आपकी तरफ से तो आप बिल्कुल यहाँ दे सकते हैं।
1: ये फॉलो बेसिकली मैं अपना संदेश तो अभी थोड़ी देर पहले से जो चीज आपको ज्यादा पसंद आई थी वापस उसी को रिपीट करना चाहूंगा कि हमारा शरीर एक कचरा नहीं है, या आप जिन माता पिता के साथ आप रहे, भाई बहनों के साथ आप रहे, उनका शरीर कोई कचरा नहीं है, या वो उनका जीवन ऐसे बर्बाद करने के लिए नहीं है। जलाना तो हम सभी को जाके एक दूसरे को ना जलाना है, या रात में मिलाना है, या खाक में मिलाना है, ठीक है, ये तो निश्चित है, लेकिन अगर नेत्रदान का पुनीत कार्य किया जाए हम हमारे मृत परिजनों को इससे बेहतर श्रद्धांजलि नहीं दे सकते, पहली बात। दूसरी बात, एक यही जरिया है जिसके थ्रू हम लोग अपने माता पिता या अपने मृत परिजनों को मोक्ष प्राप्ति दे सकते हैं, बाकी और कोई जरिया नहीं है। तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वास्तव में यदि आप परिजनों से प्रेम करते हैं तो नेत्रदान एक उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि है।
0: जी धन्यवाद डॉक्टर गौर, आपने हमारे लिए समय निकाला और हमारे शो के लिए यहाँ पर आए और इतनी अच्छी अच्छी जानकारियां हमारे श्रोताओं को दी, मुझे भी दी, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा पूरे ऑर्गन इंडिया के परिवार की ओर से। धन्यवाद श्रोताओं, ये थे डॉक्टर गौर और हमने आज बहुत सारी चीजें जानी कॉर्निया ट्रांसप्लांट, कॉर्निया डोनेशन, नेत्रदान के बारे में। तो मैं आशा करता हूं कि डॉक्टर गौर की बातों से प्रेरणा लेकर आप सभी लोग अपने नेत्रदान और अंगदान का फॉर्म जरूर भरेंगे। आप फॉर्म www.organindia.org पर जाकर भर सकते हैं, आपको ऑनलाइन डोनर कार्ड आपके ईमेल पर आ जाएगा 3 से 4 हफ्ते में। धन्यवाद।
2: आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं, एकता का परचम चहुं ओर फहराएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं। दिया है हौसलों की उड़ान का, दिया है उत्सर्ग के सम्मान का, दिया है राम का रहमान का, दिया है समग्र हिंदुस्तान का, जीवन संगीत बजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं।
3: आज का ये विशेष कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं और आपसे इसी संदेश के साथ विदा लेते हैं कि अगर हम अंग दान या नेत्र दान करें या अपने जाने के बाद किसी के जीवन में खुशियां भर सकते हैं तो हमें ये जरूर करना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800120 3648 पर फोन कर सकते हैं या info@organindia.org पर ईमेल भी कर सकते हैं। यदि आप अंग दान का संकल्प लेना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। हमारी तरफ से आपको एक ऑर्गन डोनर कार्ड और एक सर्टिफिकेट ईमेल किया जाएगा। इसके बारे में आप अपने परिवार को जरूर बताएं और अपने आसपास सभी को प्रेरणा दें। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: रेडियो कार्यक्रम संबंधी अस्वीकरण द ऑर्गन ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क पराशर फाउंडेशन तथा रेडियो स्टेशन उसके मालिक कर्मचारी प्रबंधन प्रायोजक एवं सहयोगी जिन्हें यहां सामूहिक रूप से हम कहा गया है वार्ता कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ताओं या उनके अतिथियों द्वारा दी गई किसी राय अथवा वक्तव्य की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। वार्ता कार्यक्रम के दौरान उसमें उपस्थित अतिथियों समेत दिए गए कोई भी बयान या मत या विषय का हम किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करते हैं। हम इसे सत्य कहकर इसका समर्थन नहीं कर रहे। इसका निर्णय आप स्वयं करें। यद्यपि हमारी कोशिश ईमानदारी से सच कहने की ही रहेगी तथा यदि कोई अपेक्षित सत्य हो तो उस पर सवाल करने का अधिकार हमारे पास रहेगा। हमारा इरादा किसी को बदनाम करना, किसी से भेदभाव करना, नफरत फैलाना या किसी को दुख पहुंचाने का नहीं है। इसके अलावा ये कोई चिकित्सा सलाह नहीं है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी चिकित्सा उपचार से संबंधित नहीं है। हमारा विश्वास है कि ये हमारे बुनियादी अधिकारों का हिस्सा है और साथ ही हमारा कर्तव्य है कि हम इस जानकारी या राय का प्रसार करें। हालांकि हम अन्य लोगों की लिखित, बोली गई या सांकेतिक राय की जिम्मेदारी नहीं ले सकते।

आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा और यही कोशिश रही कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूट गए लोगों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जन धन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गरीब कल्याण के 12 वर्ष की अवधि देश में करोड़ों वंचित परिवारों के जीवन में गरिमा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता लाने का नया अध्याय साबित हुई है। उन्होंने कहा कि इन 12 वर्षों ने निर्धनों और वंचितों के जीवन में आशा, अवसर और स्वावलंबन के नए अध्याय लिखे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक देश

0: में 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। इनमें नल से पानी, रसोई गैस और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य सेवा विस्तार में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने जा रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होना है। राज्य में तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ये योजना लागू नहीं की गई थी। प्रवर्तन निदेशालय ने मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से जुड़े धन शोधन मामले में मिजोरम म्यांमार सीमा, त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा और पश्चिम बंगाल में 4 स्थानों पर छापे मारे हैं। ये मामला मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की अगरतला इकाई द्वारा भारी मात्रा में जब्त नशीले पदार्थ से जुड़ा है। झारखंड में विशेष सत्र न्यायालय ने रांची में 8 एकड़ से अधिक जमीन से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में पर्याप्त आधार और दस्तावेज मौजूद हैं और इस स्तर पर आरोपी को बरी नहीं किया जा सकता। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई दी है।
1: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल आपने पूरा किया है। 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
0: सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL से कथित रूप से जारी उस अधिसूचना का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने ग्राहकों की KYC निलंबित कर दी है और सिम कार्ड 24 घंटे में ब्लॉक कर दिया जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय ने इस दावे को फर्जी बताया और कहा कि BSNL ने सिम KYC से संबंधित कोई सूचना जारी नहीं की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से ईरान के मिसाइल हमले पर जवाबी कार्रवाई न करने का आग्रह किया है। श्री ट्रंप ने कहा कि इससे शांति समझौते तक पहुंचने के प्रयासों में बाधा आ सकती है। उन्होंने ईरान से फिर वार्ता शुरू करने का आग्रह किया है। भारतीय शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक निफ्टी और सेंसेक्स में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.6% की गिरावट आई। सेंसेक्स 434 अंक गिरकर 73,809 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक होस्टल वातावरण। GGI जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं APEX+ पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में 2-2 फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: जिन्हें अपना समझकर हर कठिन समय में उनके साथ खड़े रहे। कई बार वही लोग तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारी बुराई करते हैं, और यही संसार का स्वभाव है पार्थ। जिसे तुम अपना मानते हो वो सदा तुम्हारा हित नहीं चाहता। पर स्मरण रखो, उपकार का अर्थ ये नहीं कि सामने वाला तुम्हारी भावना समझे। कुछ लोग प्रेम को अधिकार समझ लेते हैं और तुम्हारे मौन को कमजोरी। इसलिए अच्छा बनो, पर अपनी शांति की कीमत पर नहीं। और जब अपने ही तुम्हारी बुराई करें तो स्वयं को बदलना मत। अपनी अपेक्षाएं सीमित रखो, क्योंकि सभी अपने दिखने वाले वास्तव में अपने नहीं होते।
1: हेलो।
2: हेलो सर, shopping.com से आपने कल जूते ऑर्डर किए थे, फिलहाल वो स्टॉक में नहीं है।
1: पेमेंट तो कट हो गया।
3: ज़ूम इन, ज़ूम इन।
2: डोंट वरी सर, रिफंड के लिए QR कोड भेज रही हूँ, आपको सिर्फ स्कैन करना है।
1: QR कोड से रिफंड?
2: यस सर।
3: गॉट इट।
2: यही है सबसे फास्टेस्ट प्रोसेस रिफंड के लिए। प्लीज जल्दी कीजिए, आपका पैसा लौटाना हमारा फर्ज है।
4: क्यों मैडम फर्जी, बहुत जल्दी है आपको?
2: नहीं तो
4: चलो सबको खड़ा करो। तो आप क्या समझे, QR कोड सिर्फ पेमेंट करने के लिए स्कैन किया जाता है, पैसे रिसीव करने के लिए नहीं। सतर्क रहें, आइए मिलकर चीट्स को बीट करें।
5: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
6: हर घर सूर्य घर।
7: सरकार की तरफ से जितने स्वास्थ्य कर्मी हैं, हेल्थ वर्कर्स, वो घर घर जाकर के आपको अवगत कराएंगे TB के बारे में। हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है कि उनका सहयोग कीजिए। ये जो आपको खांसी हो, बुखार हो, वजन कम हो रहा हो, ये बताइएगा उन्हें। देखिए, TB इतनी बड़ी बीमारी नहीं है कि पकड़ में ना आ सके। हाँ, इंडिया वर्सेस TB, TB हारेगा, देश जीतेगा।
8: मार्केट जा रहा हूँ, आता हूँ अभी।
9: अच्छा सुनो, आते हो मेरे लिए थोड़े से पनीर के पकोड़े ले आना।
8: तुम पागल वागल होगी हो क्या?
10: Oh, no.
8: पता भी है पनीर के पकोड़े कितने अनहेल्दी होते हैं, कैसे कैसे तेल में तलते हैं वो लोग। कुछ हेल्दी खाओ यार।
9: अच्छा अच्छा सुनो, 1 किलो काजू बादाम ले आना फिर।
8: तुम बुरा मांगी ना?
9: नहीं तो।
8: तुम बुरा मांगी है, तुम्हें नहीं पता। ठीक है यार, मैं ले आऊंगा पकोड़े, कभी कभी तो खाती हूँ, इसमें क्या हो गया, कभी कभी एनएलडी भी खाना चाहिए।

होस्ट एंड दोस्त रुचिका हाजिर हो गई हूँ आप सभी के लिए कार्यक्रम लेकर पंजाबी गीतों का ये प्यारा सा सफर। बिल्कुल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से सफर में। तो आइए बढ़ते हैं इस सफर में आगे और आप सभी को लेकर चलते हैं एक खूबसूरत से पंजाबी म्यूजिकल ट्रैक के सफर में।

दोस्तों आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं पंजाबी गीतों का। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और कार्यक्रम में सुनाते हैं आप सभी को ये प्यारा सा पंजाबी गीत।

दोस्तों, इस खूबसूरत से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम पंजाबी गीतों में। तो आइए फिर से लेकर चलते हैं आपको एक और प्यारे से गीत की तरफ। एंजॉय कीजिए ये खूबसूरत सा पंजाबी गीत।

दोस्तों आप सभी अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ जुड़े हुए हैं 91.2 MHz पर। और आज का ये कार्यक्रम यानी कि पंजाबी गीतों का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों पंजाबी गीतों का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से। बिल्कुल आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा पंजाबी म्यूजिकल ट्रैक।

दोस्तों बहुत ही खूबसूरत सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया बिल्कुल, और आप सभी एंजॉय कर रहे हैं पंजाबी गीतों का कार्यक्रम अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से लेकर चलते हैं आपको एक और पंजाबी गीत की तरफ। इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

91 दशमलव 2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना रेडियो रंजन धर्मशाला और आप सभी इस समय जुड़े हुए हैं पंजाबी गीतों के कार्यक्रम में। बिल्कुल कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं अगला ये प्यारा सा खूबसूरत सा पंजाबी गीत।

दोस्तों उम्मीद करते हैं इस प्यारे से पंजाबी गीतों के सफर को आप सभी एंजॉय जरूर कर रहे होंगे। बिल्कुल, आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से सुनते हैं एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

0: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं Apex+ पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: जिन्हें अपना समझकर हर कठिन समय में उनके साथ खड़े रहे। कई बार वही लोग तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारी बुराई करते हैं, और यही संसार का स्वभाव है पार्थ। जिसे तुम अपना मानते हो वो सदा तुम्हारा हित नहीं चाहता। पर स्मरण रखो, उपकार का अर्थ ये नहीं कि सामने वाला तुम्हारी भावना समझे। कुछ लोग प्रेम को अधिकार समझ लेते हैं और तुम्हारे मौन को कमजोरी। इसलिए अच्छा बनो, पर अपनी शांति की कीमत पर नहीं। और जब अपने ही तुम्हारी बुराई करें तो स्वयं को बदलना मत। अपनी अपेक्षाएं सीमित रखो, क्योंकि सभी अपने दिखने वाले वास्तव में अपने नहीं होते।
1: हेलो
2: हेलो सर, shopping.com से आपने कल जूते ऑर्डर किए थे, फिलहाल वो स्टॉक में नहीं है।
1: पेमेंट तो कट हो गया।
3: Zoom in.
2: Don't worry, sir. रिफंड के लिए QR कोड भेज रही हूँ, आपको सिर्फ स्कैन करना है।
1: QR कोड से रिफंड?
2: Yes, sir.
3: Got it.
2: यही है सबसे फास्टेस्ट प्रोसेस रिफंड के लिए। प्लीज जल्दी कीजिए, आपका पैसा लौटाना हमारा फर्ज है।
4: क्यों मैडम फर्जी, बहुत जल्दी है आपको?
2: नहीं तो
4: चलो सबको खड़ा करो। तो आप क्या समझे, QR कोड सिर्फ पेमेंट करने के लिए स्कैन किया जाता है, पैसे रिसीव करने के लिए नहीं। सतर्क रहें, आइए मिलकर चीट्स को बीट करें।
5: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
6: हर घर सूर्य घर।
7: सरकार की तरफ से जितने स्वास्थ्य कर्मी हैं हेल्थ वर्कर्स, वो घर घर जाकर के आपको अवगत कराएंगे टीबी के बारे में। हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है कि उनका सहयोग कीजिए। ये जो आपको खांसी हो, बुखार हो, वजन कम हो रहा हो, ये बताइएगा उन्हें। देखिए टीबी इतनी बड़ी बीमारी नहीं है कि पकड़ में ना आ सके। हाँ, इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
8: मार्केट जा रहा हूँ, आता हूँ अभी।
9: अच्छा सुनो, आते हो मेरे लिए थोड़े से पनीर के पकोड़े ले आना।
8: तुम पागल वागल होगी हो क्या?
10: Oh, no.
8: पता भी है पनीर के पकोड़े कितने अनहेल्दी होते हैं, कैसे कैसे तेल में तलते हैं वो लोग। कुछ हेल्दी खाओ यार।
9: अच्छा अच्छा सुनो, 1 किलो काजू बादाम ले आना फिर।
8: तुम बुरा मानगी ना?
9: नहीं तो
8: तुम बुरा मानगी है, तुम्हें नहीं पता। ठीक है यार, मैं ले आऊंगा पकोड़े, कभी कभी तो खाती हूँ, इसमें क्या हो गया, कभी कभी एनएलडी भी खाना चाहिए।

92.2 MHz पर सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने मैं शशि हाजिर हुई हो कार्यक्रम लेके माटी दी महक श्रोताओं कर दिन कार्यक्रम दा आगाज इस प्यारे दे गीते कने सारे इन्हें बनी रहा रेडियो गुंजन धर्मशाला कने गूंज अपने बंदी

रेडियो गुंजन धर्मशाला तेने तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना दे न माटी दी महक आशोताओं बढ़ते न कार्यक्रम जग गए तेने सुन दे निक और प्यारा दिया गीत।

हाँ बोला थे ना रेडियो गुंजन धर्मशाला थे कने तो हाँ सारे ट्यून किते है अपना समुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला कने इस वक्त कार्यक्रम चल रहा है माटी दी महक श्रोताओं सुन देने एक और प्यारा दिया गीत।

कानवी दशमलव 2 मेगाहर्ट्ज़ पर तो हाँ सारे ट्यून कितने हैं अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला मैंने तो हाँ सारी कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक ता श्रोताओं बढ़ते न कार्यक्रम च अगे कने सुन देने एक और प्यारा दिया गीत।

इस वक्त तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना देन माटी दी महक अपनी रेडियो दो शशि कन्ने ता श्रोताओं बढ़ते न कार्यक्रम च अग्गे कन्ने सुन देने एक और प्यारा दिया गीत।

सारे दा रेडियो गुंजन धर्मशाला तने तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना देन माटी दी महक आशो तो बढ़ते न कार्यक्रम चल गए तने सुन दे निक और प्यारा दिया।

आ बोला दिन रेडियो गुंजन धर्मशाला ते कने तोहां सारियां ट्यून कीते है अपना समुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला कने इस वक्त कार्यक्रम चलिया है माटी दी महक। श्रोताओं सुनते ने एक और प्यारा दिया गीत।

91.2 MHz पर। तो हाँ सारे ट्यून कित है अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला कने। तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक। तो श्रोताओं बढ़ते न कार्यक्रम च अगे कने सुनते निक और प्यारा दिया गीत।

92.2 मेगाहर्ट्ज पर ए तोहां सारे दा रेडियो गुंजन धर्मशाला कने तोहां सारे कार्यक्रम सुनांदे थे माटी दी महक। तां श्रोताओ अज कने कार्यक्रम च बस इतना ही। तो तोहां सारे ने बनी रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला कने गूंज अपने।

दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक होस्टल वातावरण। GGI जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं FX+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला।

0: इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: जिन्हें अपना समझकर हर कठिन समय में उनके साथ खड़े रहे। कई बार वही लोग तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारी बुराई करते हैं, और यही संसार का स्वभाव है पार्थ। जिसे तुम अपना मानते हो वो सदा तुम्हारा हित नहीं चाहता। पर स्मरण रखो, उपकार का अर्थ ये नहीं कि सामने वाला तुम्हारी भावना समझे। कुछ लोग प्रेम को अधिकार समझ लेते हैं और तुम्हारे मौन को कमजोरी। इसलिए अच्छा बनो, पर अपनी शांति की कीमत पर नहीं। और जब अपने ही तुम्हारी बुराई करें तो स्वयं को बदलना मत। अपनी अपेक्षाएं सीमित रखो, क्योंकि सभी अपने दिखने वाले वास्तव में अपने नहीं होते।
1: हेलो
2: हेलो सर, shopping.com से आपने जो जूते ऑर्डर किए थे फिलहाल वो स्टॉक में नहीं है।
1: पेमेंट तो कट हो गया।
3: Zoom in.
2: Don't worry, sir. रिफंड के लिए QR कोड भेज रही हूँ, आपको सिर्फ स्कैन करना है।
1: QR कोड से रिफंड?
2: Yes, sir.
3: Got it.
2: यही है सबसे फास्टेस्ट प्रोसेस रिफंड के लिए। प्लीज जल्दी कीजिए, आपका पैसा लौटाना हमारा फर्ज है।
4: क्यों मैडम फर्जी, बहुत जल्दी है आपको?
2: नहीं तो
4: चलो सबको खड़ा करो। तो आप क्या समझे, QR कोड सिर्फ पेमेंट करने के लिए स्कैन किया जाता है, पैसे रिसीव करने के लिए नहीं। सतर्क रहें, आइए मिलकर चीट्स को बीट करें।
5: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
6: हर घर सूर्य घर।
7: सरकार की तरफ से जितने स्वास्थ्य कर्मी हैं हेल्थ वर्कर्स, वो घर घर जाकर के आपको अवगत कराएंगे टीबी के बारे में। हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है कि उनका सहयोग कीजिए। ये जो आपको खांसी हो, बुखार हो, वजन कम हो रहा हो, ये बताइएगा उन्हें। देखिए, टीबी इतनी बड़ी बीमारी नहीं है कि पकड़ में ना आ सके। हाँ, इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
1: मार्केट जा रहा हूँ, आता हूँ अभी।
8: अच्छा सुनो, आते हो मेरे लिए थोड़े से पनीर के पकोड़े ले आना।
1: तुम पागल वागल होगी हो क्या?
9: Oh, no.
1: पता भी है पनीर के पकोड़े कितने अनहेल्दी होते हैं, कैसे कैसे तेल में तलते हैं वो लोग। कुछ हेल्दी खाओ यार।
8: अच्छा अच्छा सुनो, 1 किलो काजू बादाम ले आना फिर।
1: तुम बुरा मानगी ना?
8: नहीं तो
1: तुम बुरा मानगी, तुम्हें नहीं पता। ठीक है यार, मैं ले आऊंगा पकोड़े, कभी कभी तो खाती हूँ, इसमें क्या हो गया, कभी कभी एनएलडी भी खाना चाहिए।

मेरे प्यारे दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से शुरू हो गया है कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने। मैं आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो लीजिए कार्यक्रम का पहला गीत प्रस्तुत करते हैं आपकी नजर।

गीत सुहाने नई पुरानी, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुराने। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने की महफिल सजी है रेडियो गुंजन धर्मशाला से फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया और ये रहा कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

0: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं FX+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।
3: हर

0: जिन्हें अपना समझकर हर कठिन समय में उनके साथ खड़े रहे। कई बार वही लोग तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारी बुराई करते हैं, और यही संसार का स्वभाव है पार्थ। जिसे तुम अपना मानते हो वो सदा तुम्हारा हित नहीं चाहता। पर स्मरण रखो, उपकार का अर्थ ये नहीं कि सामने वाला तुम्हारी भावना समझे। कुछ लोग प्रेम को अधिकार समझ लेते हैं और तुम्हारे मौन को कमजोरी। इसलिए अच्छा बनो, पर अपनी शांति की कीमत पर नहीं। और जब अपने ही तुम्हारी बुराई करें तो स्वयं को बदलना मत। अपनी अपेक्षाएं सीमित रखो, क्योंकि सभी अपने दिखने वाले वास्तव में अपने नहीं होते।
1: हेलो
2: हेलो सर, shopping.com से आपने जो जूते ऑर्डर किए थे फिलहाल वो स्टॉक में नहीं है।
1: पेमेंट तो कट हो गया।
3: Zoom in.
2: Don't worry, sir. रिफंड के लिए QR कोड भेज रही हूँ, आपको सिर्फ स्कैन करना है।
1: QR कोड से रिफंड?
2: Yes, sir.
3: Got it.
2: यही है सबसे फास्टेस्ट प्रोसेस रिफंड के लिए। प्लीज जल्दी कीजिए, आपका पैसा लौटाना हमारा फर्ज है।
4: क्यों मैडम फर्जी, बहुत जल्दी है आपको?
2: नहीं तो
4: चलो सबको खड़ा करो। तो आप क्या समझे, QR कोड सिर्फ पेमेंट करने के लिए स्कैन किया जाता है, पैसे रिसीव करने के लिए नहीं। सतर्क रहें, आइए मिलकर चीट्स को बीट करें।
5: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
6: हर घर सूर्य घर।
7: सरकार की तरफ से जितने स्वास्थ्य कर्मी हैं हेल्थ वर्कर्स, वो घर घर जाकर के आपको अवगत कराएंगे टीबी के बारे में। हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है कि उनका सहयोग कीजिए। ये जो आपको खांसी हो, बुखार हो, वजन कम हो रहा हो, ये बताइएगा उन्हें। देखिए टीबी इतनी बड़ी बीमारी नहीं है कि पकड़ में ना आ सके। हाँ, इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
1: मार्केट जा रहा हूँ, आता हूँ अभी।
8: अच्छा सुनो, आते हो मेरे लिए थोड़े से पनीर के पकोड़े ले आना।
1: तुम पागल वागल होगी हो क्या?
9: Oh, no.
1: पता भी है पनीर के पकोड़े कितने अनहेल्दी होते हैं, कैसे कैसे तेल में तलते हैं वो लोग।
8: Aye.
1: कुछ हेल्दी खाओ यार।
8: अच्छा अच्छा सुनो, 1 किलो काजू बादाम ले आना फिर।
1: तुम बुरा मानगी ना?
8: नहीं तो
1: तुम बुरा मानगी, तुम्हें नहीं पता। ठीक है यार, मैं ले आऊंगा पकोड़े, कभी कभी तो खाती हूँ, इसमें क्या हो गया, कभी कभी एनएलडी भी खाना चाहिए।

0: नमस्कार श्रोतो, FM बैंड 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून को रॉर कार्यक्रम लेकर आऊँ सचिन कपूर हाजिर भुचुआ तुंदे सभी रेडियो सेट में हर रोज नवा कार्यक्रम मुंदा और हर कार्यक्रम की आसो खास मुंदा श्रोतो ऐतुसु हर बार 10 दिन बार बार 10 दिन ताऊँ सचिन कपूर और मौसम इस समय धर्मशाला में गया सो काफ़ी ज़्यादा गर्मी है श्रोतो बिल्कुल गर्मी काफ़ी ज़्यादा इस समय तुसु मनाना ने काफ़ी अत्यधिक किया सो गर्मी हाँ और कार्यक्रम सचिन कपूर सो के बिल्कुल लाइव होना तो सु 5 बजे तक और कार्यक्रम मंच बहुत सारे इन श्रोतागण के रहें सो भी कनेक्ट बुनते हैं और पल्दे इंसान के सो अक्सर कुछ ना कुछ भूल के सो ज़रूर करता है और ये भूल गलती के बुन दिन सो इंसान जो सुधरने का मौका दें दी हिन शो तो है ना और इंसान गलती रा पुतला हा शो तो अगर तिया ही गलती ले कर है लाइफ में बेखिरे ले जिंदगी में बेखिरे लेता है हगू ना बढ़ी सकते हैं है ना और लाइफ में हम हमेशा बोलता कि जिंदगी में ना बड़ी चीज़ा इग्नोर करी करी जीना पैंता बड़ी चीज़ा सहन करी करी किया सो जीना पैंता बड़ी चीज़ा जो किया सो मुस्कुराई करी किया सो हेरना पैंता जीना पैंता बड़ी बड़े मनुरे सामने किया सो अपना दर्द किया सो छुपाई करी रखना पैंता है शोतों और बाहर तो मुस्कुराई करी किया सो रहना पैंता ये असली जिंदगी है और इति हुई जिंदगी बोलते हैं पर आ रहा हूँ सचिन कपूर कार्यक्रम में हिंदी अपनी गप्पा लेकर आऊँ हाजिर भूआ हा शोतों तुंदे सभी रहे रेडियो सेट में चलिए कार्यक्रम जो आगू बढ़ते हैं और कार्यक्रम मंज तू सभी दसना चाहते हैं श्रोताओ कि आज मौसम रहा क्या हाल हाल ता बेहाल या क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है इस समय 23 डिग्री सेल्सियस था ऊपर किया श्रोताओ सो तापमान बन रहा और अगर यह नमी की गल करिए श्रोतो तो नमी इस समय किया 47% बन रहा धर्मशाला में एयर क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इस समय और विजिबिलिटी भी 8.6 किलोमीटर तक हा तैया मौसम रे जानकारी श्रोतो इस समय वीडियो गुंजन धर्मशाला मंच था तो सब श्रोता बिल्कुल जुड़ी सकते नंबर आओ साझा करना तो सो गए 7081 8 7 09 पर नंबर आक मौके फिर श्रोता इस कार्यक्रम मंच तो सब जुड़ी सकते हैं 7081 8 7 09 पर इस नंबर पर तो है कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत किया सो होनी सकते हैं अपने क्षेत्र रे जानकारी किया सो साझा कर सकते हैं गला रा खास ख्याल रहे की जानकारी किया सो साझा करने लाइक जरूर हुआ रेडियो में दसने लाइक किया सो जरूर हुआ बहरहाल कार्यक्रम जो आगो बढ़ते हैं और इन द श्रोतागण हसो गए कनेक्टेड हैं हसो आगाज भी करना कार्यक्रम रहा जरूर लेकिन पहले इन द श्रोता जो कर दें कनेक्ट नमस्ते जी
1: नमस्ते जी क्या चाल है जी
0: बहुत बढ़िया जी तो है बल्ला क्या हाल चाल ठीक ठाक
1: ठीक ठाक जी
0: और करे लगुरन
1: हाँ जी
0: करे लगुरन जी
1: ऐसा चिंतपूर्णी बोल रहे
0: हाँ जी
1: चिंतपूर्णी
0: चिंतपूर्णी थी अच्छा हाँ जी ने गीत कौन देना होना तुसु
1: चल्ली चल्ली थक्के यहाँ
0: चल्ली चल्ली
1: हाँ जी हाँ जी
0: थक्के यहाँ
1: हाँ जी हाँ जी
0: चलो ठीक है जी जरूर हूँ चिंतपूर्णी क्या टेम्परेचर है इस समय
1: सर टेम्परेचर ठीक है गर्मी बड़ी भारी है
0: अच्छा
1: हाँ जी हाँ जी
0: ठीक ठीक ठीक है जनाब जरूर हूँ तू गीत है
1: हाँ जी सर इलेक्शन आ गया हो रही है
0: हेलो
1: हाँ जी हेलो
0: हाँ जी
1: सर गाना ला दें ना
0: जी जरूर जरूर
1: ठीक है थैंक यू
0: चलिए श्रोतों कार्यक्रम जो हगो बढ़ते हैं और कार्यक्रम मंच हिंदी अपनी गप्पा चल रही तो आगाज कर लेंदेन कार्यक्रम रेस गीता होगी और फिर तत्व श्रोता हूँ तुम्हें सभी रही जानकारी तुसु तक रहे जरूर पहुँच रहे धर्मशाला थो जुड़ रही जानकारी तुम्हें अपनी जानकारी सोई रही जानकारी भी तुसु तक जरूर पहुँच रहे

0: श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला और आऊँ सचिन कपूर कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा चल रही हैं। सब मेरी फरमाइशा के अनुसार जरूर पूरी करने रहा है, कोशिश कर रहे धीरे धीरे बहरहाल तो सब भी बने सकते हैं जी। 7018 8809 पर तो सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत किया सो हुणे सकते हैं, अपने क्षेत्र जानकारी किया सो हुणाए सकते हैं। तो बहरहाल बलदन श्रोतों की अपने सपने जो हकीकत में बदलने वास्ते कि सो सब भी थों पहले मुख्य शुरुआत किया सो खुद थों करने, अटूट विश्वास खुद पर ही करना है और खुदरा ध्यान भी रखना है। श्रोतों समय किया सो जीवन में सब तो बड़ा शिक्षक मतलब जो टीचर आ मुझे लगता सो समय, क्योंकि समय किया सो बहुत कुछ सिखाई गंदा सो श्रोतों और तेरा हर एक अनुभव किया असो कुछ ना कुछ नई शिक्षा किया सो दी करे गंदा है। सिर्फ तुसो अनुभव करना है, एनालाइज करना है। बहरहाल इन अगले श्रोता सो की कनेक्टेड है। नमस्ते जी।
1: नमस्कार जी। नमस्कार।
0: नमस्कार जी। नमस्कार। कौन बोलूं देन और कड़ी थों बोलूं देन जनाब?
1: हम सिद्ध बाड़ी से बोल रहा हूं, अशोक कुमार।
0: सिद्ध बाड़ी थों अशोक कुमार जी।
1: जी
0: अशोक कुमार जी,
1: आज गाना सुनना था।
0: कौन दिन गीत सुनना जी?
1: ए पम्मी ठाकुर दा जी, वो किस पर गीत ये सवेरा हो गया।
0: पम्मी ठाकुर रा क्या गीत तरना दसो तो है?
1: वो तो प्रदेश ये सवेरा हो गया।
0: उठ कबूतरी सवेरा होंदा।
1: हाँ जी।
0: चलो ठीक है जी। और नोएता जी?
1: बात बढ़िया भाजी, बढ़िया बड़ी बड़ी बात ये करना।
0: चलिए ठीक है जी, जरूर होने लगे तो सोए गीत ना जी। आयुषोतों कार्यक्रम में तो सब बन रहे इस समय वेड़ी गुंजन धर्मशाला सो गया और इंदी अपनी गप्पा बिल्कुल लाइव होने कर देना। तो जी आख मौके फिर कि आसू सब भी पता कि पश्चिम एशिया में कि आसो संकट जारी है और ठेरे चल दे आम आदमी पर कि आसो रसोईरा मतलब जो आम इंसान है सो वाकई में रसोई संभाला कि बारह खर्चे संभाला कि क्या क्या करा। आम आदमी वाकई में देवे करता है श्रोताओं। रसोई अग मौके फिर महंगी भोया जनाब, घरेलू एलपीजी सिलेंडर किया सो 29 रुपये महंगा हुआ है जी। बिल्कुल अग मौके फिर यूँ दसना चाहता, घरेलू एलपीजी सिलेंडर किया सो 29 रुपये और महंगा बुझेगा श्रोताओं। पश्चिम एशिया में जारी संकट और हरमूद स्टेट तो गैस सप्लाई बंद बुने वे चलते मुसीबत रा सामना किया सो करूगर दिन तेल कंपनी और घरेलू रसोई गैस एलपीजी सिलेंडर आके ऐसा 29 रुपये और महंगा करी दिता है श्रोतों। इस बढ़ोतरी थों बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाला घरेलू एलपीजी सिलेंडर 942 रुपये व बचेगो हा। हालांकि कमर्शियल इस्तेमाल वाले 19 किलोग्राम वे सिलेंडर के न त्यारी कीमत में कोई भी बदलाव किया सो हाले तक ना हुआ है। पश्चिम एशिया संकट शुरू होने तो बाद घरेलू रसोई गैस रे दाम गया ने सो दूजी बार गया इंजा में बढ़ोतरी हुई सो तो इतों पहले 7 मार्च जो इतिमा बढ़ोतरी हुई थी 60 रुपये रे। इस दौरान सो तो अब एलपीजी सिलेंडर रे दाम भारी बरकम वृद्धि बुझ चुक रहे हैं दामा मंच और पश्चिमी एशिया संकट शुरू होने रे बाद तो दिल्ली किया दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर वे दाम 1,373 रुपये बढ़ी चुक रहे हैं और एक काफ़ी मतलब 942 रुपये रहा हुआ है। अब 14.2 ग्राम रहा 2 ग्राम वाला घरेलू एलपीजी सिलेंडर शो तो है ना 4 महीने बाद 90 रुपये ऑलमोस्ट बढ़ गए। सरकार क्या कर सकती है अब क्योंकि पश्चिम एशिया में जो लड़ाई व संकट आया है रुकर दिन सो काफ़ी ज़्यादा चल रहा है श्रोतों तो हेर दिन। पर खुशखबरी भी आ महाराष्ट्र समेत 12 राज्य में किया सो मानसून पूजिगो है। अन्य जानकारी तो सोगी शेयर कर ले इन दे श्रोता सोगी कॉल करू कर देती है फिर करी सकते हैं जी जनाब 7081888709 पर कार्यक्रम जो आगे बढ़ते हैं अगले श्रोता जो कनेक्ट कर दें। नमस्ते जी।
2: नमस्ते।
0: नमस्ते जी। नमस्ते। कौन बोल रहे हैं और कड़ी थों बोल रहे हैं? हाँ जी
2: टिल्लू थों बोल कर दिया अनिक्षा बोल कर दिया।
0: अच्छा टिल्लू थों अनिक्षा।
2: हाँ जी।
0: क्या बात है अनिक्षा जी कौन देने की थों ना तुसु
2: देवी मंगलारा।
0: हाँ जी कौन देना
2: देवी मंगलारा।
0: देवी
2: मंगलारा।
0: देवी मंगलारा चले ठीक है अनिक्षा जी जरूर होने ले तो सुई गीता है ना जी। धन्यवाद जी धन्यवाद धन्यवाद। चलिए शुरू तो चल दिन और फरमाइश वाला दौरा है करिंदे ने बस शुरू बने रहे तो सब आर जी सचिन कपूर सो की गूंज अपने बन रहे।

0: শত এফ এম ব্যান্ড কিয়ানুইতে সামলা ভাই দুই মেগা হার্টস পর বেড়ি গুঞ্জন ধরমশালা তো সবই টিউন কর রে কার্যক্রম হিন্দি আপনি গপ্পা কে না সো চল রই হিন শত বিলকুল লাইভ তন্দে ভিডিও সেট মা বেড়ি গুঞ্জন ধরমশালা মঞ্চ আর কার্যক্রম বিলকুল লাইভ চলনা হা শত লাইভ চল রো ভি আই ইভেন কি হক গীত হম সার্চ কর গর্দা হালাকি থোড়া করে असू एडी मोड़ो ना करता लेकिन है बिल्कुल तो पी लो हाँ बिल्कुल इस गीत के बारे में जरूर तुसु हो गया है साझा कर ले शेयर कर ले गलबात लेकिन फिलहाल इन अगले श्रोता असू के कनेक्टेड इन नमस्ते जी
1: नमस्ते सजी जी नमस्ते
0: नमस्ते जी नमस्ते
1: और कैसे हैं जी
0: बिल्कुल ठीक जी तो है बल्ला क्या हाल चाल
1: बिलासपुर के बोले गाना सुन रहा जी का
0: क्या बात है बिलासपुर से
1: हाँ जी जी
0: मैं बस कुछ दिन पहले ही हूँ बिलासपुर रात हो जी आई थिंक महीना ने हुआ है बड़ी गर्मी है बिलासपुर था है ना जी
1: बड़ा बुरा हाल है जी गर्मी का मेरा
0: कुंडने गीत सुनना पसंद कर ले
1: ये तो सुनना सजन जी आज काला कोट टंगाया के लिया
0: काला कोट टंगाया
1: किलिया
0: किलिया आप पूछ
1: अपने नमूना मुंडो दिलिया
0: कोट क्या बात है
1: बड़ा पुराना गाना जी है वर्षा कटोज ने गाया ना
0: हाँ क्या बात है
1: बहुत पुराना है गाना ये कम से कम 88-99 के बीच का गाना है
0: हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल
1: बहुत पुराना गाना जी है
0: जी जरूर होने ले जी इस गीत जो तू सूत अगर पहुंच ले है
1: ठीक है ना बड़ी बड़ी मेहरबानी तुम्हारी
0: जी जी जी नमस्ते बिलासपुर वाले प्यार दिया इंदा जी
1: हां जी ठीक है जी
0: धन्यवाद
1: ओके धन्यवाद
0: इन अगले श्रोता इस समय कनेक्टेड हैं तो इस बंडो ने इस समय आरजे सचिन कपूर सो गया एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर और एक कार्यक्रम इस समय हजार तो ज़्यादा लख श्रोता के इस कार्यक्रम जो होने कर देन और बहुत श्रोता के श्रोतों सो बढ़ने की कोशिश कर दें इस कार्यक्रम में जुड़ने की कोशिश कर दे हिन लेकिन कॉल बिजी होने के कारण के सो बहुत सारे श्रोता के सो रहे गए था इन बिल्कुल कोशिश रहती कि जहाँ भी स्क्रीन में गया सो कोई नंबर चली गया सोता है जल्दी तो जल्दी के ना तो असी जो कनेक्ट करने की कोशिश कर दें बहरहाल अगले श्रोता कनेक्टेड है नमस्ते जी इतों अगले कनेक्टेड कनेक्टेड जो पिछले दिए सो डिसकनेक्ट हो गया नमस्ते जी नमस्ते
2: ठीक ठाक सचिन जी
0: बहुत बढ़िया जी तो बल्ला तो ठीक ठाक ना
2: ठीक ठाक जी
0: और कर कर लुगरन कैलूर कमाना
2: बस खाने पीने काम हूँ
0: अच्छा और नोएडा जी कुछ
2: नोएडा जी तो क्या बोलेगा तो सचिन जी कोई नहीं है फिलहाल
0: बिल्कुल कर्मठ ईमानदार जुजारू जितने भी थे हुजू कर देना वे तुसु उतने प्रधान उप प्रधान के ना
2: ना ना रोज का रहंदे ना फिनिश कर दे ना
0: अच्छा रोज का रेच हुंदा ले भी
2: हां हां
0: तेरे मतलब तू है सीधा तीर मारो कर दे कि पहले रोज इंदे थे और अब ना हुजू कर दे
2: ना ना
0: दस्तूर भी है ना इतनी पर्दा पाने की जरूरत नहीं है जी यह साफ तरीके की बोलते हैं दस्तूर भी है ना ये दस्तूर था
2: बड़ी गल है सचिन जी की काम करते रहना खुद ना खुद लगा ले
0: काम तो है जी मुझे लगता छह महीने तक कोई काम ना मतलब ये तो ना बोले सकता हूँ कि ना बुने लेकिन तो है यह गल बेशक आज तरीका 8 बजेगी है ना 6 महीने चल रहा तो है लेकिन 6 महीने तक कम से कम 5 महीने तक किया सो कोई विकास ना बुना तुंदे अपने सिलेर गोदाम या योल कैंट पर
2: जी
0: बिल्कुल गल ये भी है ना कि थोड़ा करे मैथड समझने भी किया सो टाइम लगता है बड़ी चीज़ें बनते हैं ना कि करे क्या बोना क्या है सिस्टम
2: सो गया छे परिवार लिस्ट बनने का उसके बाद जो है सो अब ये कार्रवाई चलने है यार कुछ गल यार पता ना पता चला हाथ में ना इन रूला होगी चलना ना घूम
0: बिल्कुल बिल्कुल लेकिन ऐसा है कि कम कराने वाला इंसान बोना चाहिए फिर चल पे सरकार
2: जी जी
0: जी
2: ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਟੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਗ੍ਰਾਮ ਗ੍ਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਇਤਨਾ ਸਾਲਾਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੰਮ ਹੋਏ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੀ ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਚਲੀ ਜਾਣ ਬਸ ਹੋਰ ਕਿਆ
0: जी बिल्कुल बिल्कुल चलिए ठीक है जी। कुंडे ने गीत होना पसंद कर ले तो है
2: सचिन जी अपने गीत होना देते हैं टूटी मेरे छेकों से काची तो वाला गीत।
0: चलिए ठीक है जी इस गीत जो है जरूर होना ले तो सुना।
2: ठीक है सचिन जी ठीक है सचिन धन्यवाद
0: धन्यवाद
2: गेड़ी को मेरे को दिन में कभी
0: जी जी जी धन्यवाद
2: ठीक है जी कुंडे का पास ही हो बड़े बड़े क्या बन जाए सोचना मुंडी रहेंगे क्या लोग लोग ना खाने लगी लेंगे बात की बात।
0: अच्छा चलिए जी इनका दायित्व इनका कर्तव्य इनका फर्ज जो है नहीं बनते हैं और इन्हें मनु तक जानकारी पूछेगी दिन दे अपने डायलेक्ट में सब भी मटे गलत है ना। हाँ
2: जी जी
0: ठीक है जी नमस्ते
2: नमस्ते जी नमस्ते।
0: शोधन कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा चल रही और आर जे सचिन कपूर सो के तो ऐसा बन रहे हैं। इस समय हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम रहे तहत विकास खंड धर्मशाला है वे नव निर्वाचित पंचायत समिति शपथ ग्रहण समारोह के श्रोताओं से बुझेगो एस डी एम कार्यालय परिसर में बचूरत हो धर्मशाला रे एस डी एम मोहित रत्न के सो नव निर्वाचित सदस्य जो पद एवं गोपनीयता शपथ की असुधरा लोकतंत्र इस उत्सव में खास गले या श्रोताओं की इस बार पंचायत समिति में युवा री बड़ी भागीदारी किया सोहेर ने जो मोड़े है और सोगी सोगी श्रोताओं में भी दसना चाहता है कि ग्रामीण विकास वास्ते की एक बेहद सकारात्मक और ऊर्जावान संकेत किया है मनु गर्दन की युवा के सो बढ़ चढ़ कर भाग ले गर्दन शपथ ग्रहण समारोह दौरान कुल 18 सदस्य में से 17 सदस्य के सो अपने पद रे शपथ ले सो तो जबकि 8 सदस्य स्वास्थ्य कारणाथों के मतलब सेवा स्वास्थ्य ठीक ना तो टेरे कारणाथों के सो उपस्थित ना बच पाओ। कार्यक्रम मंच अन्य जानकारी तो सो गया है ज़रूर शेयर कर ले साझा कर ले तो सब बन रहे हैं समय एफ एम बैंड 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला सोगी और लेकिन चल दें शोधों तो सो अब फरमाइश दौर के सो ज़रूर पूरा करना है लेकिन इस बीच ही तुसो पता शोधों कि हमेशा रेडियो गुंजन और खासकर सचिन कपूर और एक कार्यक्रम जितने भी न्यू सिंगर हैं इंदे और जितने भी नए गाने के ने सो इंदे इन सो है ज़रूर ब्रॉडकास्ट करते हैं रेडियो मंच ताकि इस गीता जो तो है प्यार दिन इस सिंगर जो कि है सो तो है अपने आशीर्वाद दिन प्यार दिन और कजो कि एक सिंगर वास्ते कि सो थोड़ा करे स्ट्रगल ज़रूर बुंदा है स्टेज लेना बड़ा टफ कम रहा है स्ट्रगलफुल रहा अभ्यास करना रोजाना अभ्यास करना रोज़ स्टेज लेना अपने लिंक्स सभी वो मोटे गल के अपने लिंक के सो बढ़ाना सो दस सो करना है ना लिंक जो हागो बढ़ाना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें के ना सो हिंदी हिन लाइफ में शो तो फिर कि चिकर एक सिंगर के सो मतलब ये सोचिंदा कि हाँ अब स्टेबल है। इस बीच आऊँ दसना चाहता कि इंदे एक राखी शर्मा जी वो जो कि बहुत प्यारे सिंगर हैं अच्छे सिंगर हैं आवाज़ बड़ी प्यारी है और बहुत यारे अक गीत तो बड़ा हिट गीत तो सो भी तो सुहा है ज़रूर होने लग कस के दिन लेकिन अभी यारे नवा गीत किया सुहा और मुरली रचा टाइटल आ सॉन्ग रा और राखी शर्मा यहाँ रहना तो ज़रूर यूट्यूब में किसी करें मुरली रचा राखी शर्मा के सो ज़रूर लिखना चाहता हूँ और ज़रूर तो है इस गीता जो लाइक करन चैनल जो सब्सक्राइब करन शेयर करन और कमेंटरे माध्यम तो अपना आशीर्वाद किया सो ज़रूर दिन तइए जी हूँ देना है सब राखी शर्मा री आवाज़ में गीत तुंदे अपने वीडियो सेट में वीडियो गुंजन धर्मशाला मंच

एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर वेवेरी गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा गेंस और लाइव चल रही है ना राखी रगी तो है जरूर हुनो इतों पहले यहाँ रगी तो शोतों यात्रा जाना जरूर हो पाँच साल पहले इन गीत किए सो गड्डू थू लेकिन पाँच साल बाद किया ये दुआ गीत इन आई थिंक मतलब इस हिट गीता तो बाद ये गीत किए सो गड्डू लेकिन ये पाँच साल रहा गैप के बहुत लंबा गैप है किसी भी सिंगर वास्ते की बहुत लंबा गैप है और इतो बाद तुसु अगर तो चंद दिन की तुंदे वापसी भोआ हिमाचल इंडस्ट्री में तो थोड़ा घड़ी समय की सो जरूर लगना है और चीज़ा तुसु इनहेंस किए सो जरूर करना पैनी हिन ताई रखी चीज तो है हगूँ बढ़ी सकते हैं और नो डाउट की आवाज़ तुंदे बेहतरीन है तो इस आवाज़ च और ज़्यादा बुलंद करने वास्ते की मेहनत तुसु जरूर करना पैनी है क्योंकि पंजा साल गैप इट्स टू लॉन्ग सो लॉन्ग तो चलिए फिलहाल कार्यक्रम जो है भी आगू बढ़ेंदे हिन तो सब बन रो ने समय आर जे सचिन कपूर सोगे और हिंदी अपनी गप्पा जो तो है हूँ करते हिन पम्मी ठाकुर रा गीत तो अक सुगीत होना चाहते थे इन अक्षोता सुगीत भी यहाँ तक रहे जरूर पहुँचते हैं लेकिन फिलहाल अगली जानकारी की ऐसा तू हो गया है साझा करते हैं इन तो जी बिल्कुल पूर्व मंत्री एवं धर्मशाला तो भाजपा विधायक सुधीर शर्मा प्रदेशवी सरकार कांग्रेस चौकी है सो मुख्य कांग्रेस है जो इंदे मुख्यमंत्री हिन सभी ने मुख्यमंत्री हिन सुखविंदर सिंह सुखू पर पंचायती राज संस्था रे सचारू संचालन थो बाधाएं उत्पन्न करने रा गंभीर आरोप के सोला हुआ धर्मशाला में एक पत्रकार हो के सो बातचीत कर दे तीन बल्लो कि सरकार इस लोकतांत्रिक संस्था वे चुनाव में आखिया सो अनावश्यक व जान मूझ कर किया देरी की ऐसो करो कर दिया धर्मशाला पंचायती समिति रा उदाहरण देंदे हुए तिन्या बल्लो के नव निर्वाचित सदस्य जो शपथ दिलाने वास्ते भी बावजूद दिलाने जाने वास्ते भी बावजूद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद रह चुनाव जो किया सो लेकर स्थिति हाली तक भी साफ किया सो ना बोई हा तो चलिए कार्यक्रम जो हगो बढ़ंदे हिन और तो सब बन रहे ने इस समय आर जे सचिन कपूर सो के कार्यक्रम हिंदी गप्पा हुणु कर दिन हिंदी अपनी गप्पा हुणु कर दिन कार्यक्रम में चलते रहना हर शोतों तो सब

नया सवेरा, इस ऑपरेशन रना नया सवेरा रहे तहत अभी कांगड़ा पुलिस से किया सो एक बड़ी सफलता की अशतों सो हासिल करे हा। और अंतर्राज्य ड्रग तस्करी नेटवर्क व त्राई महत्वपूर्ण जो किस्से थी है कड़ी थी पंजाब और चंडीगढ़ थो ये गिरफ्तार के ने ये करी लै इन शो। पुलिस की जांच में सामने आया कि ये आरोपी न केवल नशे वे सप्लाई सप्लाई चेन थो जुड़े थी है बल्कि अवैध कमाई थो भी किया यारा लेन देन भी किया सो काफ़ी अहम भूमिका निभंदा हा। मिली जानकारी के अनुसार पहले गिरफ्तार हुए ने आरोपी फिर पूछताछ हुए तकनीकी शस्यथों और बैंक खाते भी जांच व आधार पर गया सुतराए ए यारे पहचान किया शोधों सो करे हा। इतों बाद कांगड़ा पुलिस है कि ऐसो सी ओ आई रतराई विशेष टीमा भी टीमा रखे ऐसो गठन कर पंजाब और चंडीगढ़ में अक्सा अक्सोगी किया सो छापेमारी कराया शोधों और बाकी में खतरनाक ले नशा तस्करी रे वित्तीय नेटवर्क तक पहुँची पुजे या पुलिस बैंक खाते भी जांच थो मुड़े मदद छो तो है ना। धर्मशाला बाईपास री रिपेयर गड्डी वे वास्ते की सो जल्द खुलना। हाँ जी बिल्कुल ये सब जानकारी तुसु तो कह जरूर पहुँच ले लेकिन आइया लेके चलते तू सब भी जो इस बजनारी कनारी तो सब बन रहे समय आर जे सचिन कपूर सो के कार्यक्रम हिंदी अपने गप्पा बिल्कुल लाइव होने कर देने अपने अपने वीडियो सेट में वेड़ी गुंजन धर्मशाला मंच गूंज अपने बन रहे और गूंज प्यारे प्यारे श्रोता रही।

शत एफ एम बैंड इक्यानवे दशमलव दो मेगा हर्ट्स पर वीडी गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम इस समय हिंदी अपनी गप्पा कहने से चल रही है और उठ परदेसिया सवेरा हो गया। अब वाकई में अस उठना चाहिए अपने गंदे कर्मा थो अस उठना चाहिए अस हुए यह गलर याद होना चाहिए श्रोतों किया है जो बल दिन जो कर दिन सो अस ऊपर वापिस जरूर इंदा फिर भी चौसा फिर भी सोइंद करम बुन जाए जो मर्जी बो अशो तो है ना तो मुश्किल रही चीज़ा इनहेंस करना और अपने कर्मा जो बेहतरीन बनाने वास्ते असू कसकी वे खरा करना पैना है कसकी वे अच्छा करना पैना है ना कसकी वे कसकी खुश करना पैना है। बहरहाल यह लेके चलते तू सब भी जानकारी रे अगले पड़ाव री किनारी स्मार्ट सिटी धर्मशाला रे बाईपास रोड चील घाड़ी मार्ग अत्यंत लगभग एक वर्ष रे बाद की सो रिपेयर भुआ हाशतों कुछ समय वाहना रे जो वाहन थी यारे आवाजाही वास्ते के सो खोली देता तो ध्यान रहे श्रोताओं की मार्ग रा अखिस्सागत वर्ष बरसात रहे मौसम माँ के सो टूटी की छूरत हो बही की छूरत हो जति और रिपेयर करने माँ के सो लगभग अक वर्ष का समय किया सो लगी गो हा सोचे ले तो है क्या है कितने तेज न कि अक साल रा अक्कीस अक पूरा अक साल के सो लगी गो अक साल तो ज़्यादा ही हो सकता अक वर्ष का समय के सो लगभग लगी गो हा हाले तो मार्ग पूरी तरीके हो गई बने करे तैयार भी ना हुआ लेकिन मार्ग रे लेकिन मार्ग रे श्रोतों टूट रहे हिस्से पर किया सो कंक्रीट रा पुल बने करके ऐसा तैयार बुचिगो तथा पुल रे थले नाले रे पानी भी निकासी हेतु उचित प्रावधान के रहे सो बुझ गया हैं ताकि आगामी बरसात रे मौसम में पानी थो पानी वे बैग थो सड़क वे इस भाग जो के असो नुकसान ना पुज जा है ना। धर्मशाला रे डिपू बाजार में पार्किंग थो लगभग जाम के सो लघु शो थो और मनु के ने सो परेशान हुए शहर में अव्यवस्थित पार्किंग बनी खड़ी समस्या श्रोतों और बड़ी समस्या कचहरी चौंक तो स्कूल जाने वाले वास्ते जाम में फंसे मनु श्रोतों जी बिल्कुल सो रोड तो है रुए भी बुना अगर तो इस कार्यक्रम जो हूँ कर दें ता गर्ल्स स्कूल वाला रोड की है सो तो है रुए बुना और तस रोड ऊपर तक करके सो वाकई में पूरी गड्डी गड्डी के न सो लग रही बंदी नागू बचो ज़रूर है जानकारी तो सुर ग्रह पहुँचन दे इन श्रोतों जिला मुख्यालय धर्मशाला शहर रे प्रमुख क्षेत्र स्थित डिपू बाजार में बैत पार्किंग व्यवस्था रे कारण के आसो आम जन जो कि आश्रोतों सो भारी परेशानी रा सामना के आसो करना पैंता है आश्रोतों और न करूब कर दे बेचारे आम जन के सो करूब कर दे मार्ग कचहरी चौंक थो स्कूल एकेडमी छात्रावास पोस्ट ऑफिस तथा अन्य जो पढ़ाई लिखाई वे संस्था तड़ी तक गाने रा प्रमुख रास्ता है अशोतों जत पर दिन भर वाहन रा के आसो दबाव के अशोतों सो बने रहता स्थानीय मनु रे अनुसार के असो सर्किट हाउस री और थो गाने वाला मार्ग के असो क्षतिग्रस्त होने रे कारण अब अधिकतम जो यातायात असो टी गार्डन और कुणाल पथरी मंदिर री और थो गाने वी और थो किया शोतों सो जाने गाने वास्ते किया इसी जो वगंदा से सो इसी वास्ते थो कि अब ऐसो गुजरू करता है ऐसे माँ के ऐसो सड़क पर वाहन की संख्या लगातार बढ़ो कर दिया जतों स्थिति और भी ज़्यादा गंभीर बुझू कर दिया शोतों डिपू बाजार क्षेत्र में सड़क किनारे मनमानी तरीके तो सब अपनी अपनी गड्डी के ने सो खड़ेरी दिन देने और यातायात जो बाधित किया सो करी दिन देने और डिपू बाजार ना नॉर्बलिंगा रे भी कुछ इस प्रकार रे कहानियाँ जी बिल्कुल नॉर्बलिंगा की है शोतों नॉर्बलिंगा तर बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस आता टूरिस्ट इन दे नो डाउट जाए सो पंजाब रे भून हरियाणा रे भून दिल्ली रे भून उत्तराखंड रे भून जाए सो अन्य इन दे लगते स्टेट जो भी लगते जम्मू कश्मीर रे भून है ना तो नॉर्बलिंगा अंदर भी यही कहानी है नॉर्बलिंगा मंच भी किया श्रोताओं सो ना ततड़ी कोई टैक्सी स्टैंड है टैक्सी अपनी मर्जी होगी तड़ी के सो लग दिन और इतों अलावा श्रोतों जो बाहर री टैक्सी बाहर क्षेत्र री टैक्सी हिंदी या अन्य स्टैंड री जो टैक्सी हिंदी जाए सो धर्मशाला स्टैंड री बोन जाए सो अन्य किसी भी स्टैंड री टैक्सी बोन सो तड़ी इच्छी करी कछो कि सो रूल एंड रेगुलेशन मुझे लगता सो है अपने
जिन तक सू डंडा ना बजे तीन तक है सो रूल एंड रेगुलेशन मनते ने अपनी कॉमन सेंस लेंदे ने रहे बिच के ने सो तीन कस्टमर जो उतार नहीं रह गया। सो अगर चोर गड्डी बार थो आई बारे टैक्सी स्टैंड थो आई तो सो चूर ही चूर गड्डी के ने सो नॉर्बिलिंगा बस उड़ी मेन जो नॉर्बिलिंगा मेन मेन स्टॉप जो नॉर्बिलिंगा है तड़ी गया सो सब चूर चूर गड्डी के ने सो अपनी सवारी उतारने लगी पी ठेरी वजह थो भी किया सो आम जन जो काफ़ी ज़्यादा परेशानी बुंदे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहा सामना करना करना पैंता है क्योंकि समय रह गया सो सब अपने अपने टाइम मैनेजमेंट का हिसाब हो गया अपनी अपनी नौकरी करते हैं अपनी अपनी ड्यूटी करते हैं अपने अपने घरों संभालते हैं है ना। टाइम मैनेजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है ना जी कि इस टाइम तक मुँह करना तो इस टाइम तक ही करना ये टाइम मेरा फैमिली रहा ये टाइम मेरा इस चीज़ों ये टाइम मेरा इस चीज़ों तो बहुत बहुत बार ऐसा हुआ बहुत बार प्रशासन जो भी हूँ इस चीज़ के बारे में कि इसको थोड़ा करे अवगत करवाना चाहता अगर प्रशासन तो जुड़ रो कोई भी मेरी गल हुनु करते ने इस समय तो सो जरूर है गल रहा विशेष ध्यान दें कि नॉर्बिलिंगा मंच भी किया सो हाल बेहाल आजीवन की आई थिंक कोई VIP मूवमेंट थी नॉर्बिलिंगा में ततड़ी तथी क्लियर कराने वास्ते एक पायलट गड्डी की सो पुलिस प्रशासन रे आई थी हैं तासो पुछूंगा गड्डी चली चलो या कजो कि सो VIP इन तीन वास्ते इन द इंडिया अंदर सिस्टम आ कि VIP सिस्टम या VIP मनो इच्छू करते हैं तो तीन वास्ते रोड खाली करना होंदा लेकिन ये बिल्कुल तो कॉमन सेंस की गल है ना कि अगर तुसो तुमसे कस्टमर हैं तो सो तो है तीन तो है पार्किंग में लाई करके सो साइड में आराम सो गि गया सो उतार ही सकते हैं मुझे ना पता नॉर्बिलिंगा मन जो पार्किंग लग रही है सो पार्किंग वाले कड़ी सुतरे बुंदे ने कजो कि सो भी तीन टैक्सी जो गाने बुंदे बहरहाल लोकल ने तो गाना ही देने हैं लेकिन ये कुंदना मतलब इतनी कुंदना रूल एंड रेगुलेशन है बल्ले सकते हैं कि बिच रोड अंदर तो है ने सो अपनी सवारी उतारा और 5 मिनट ला जाए 10 मिनट ला सो तुस उपर और तुंदी सवारी पर गया सो निर्भर है करखा न करखा पुलिस प्रशासन जो और एडमिनिस्ट्रेशन जो गया सो इस और रुख करना पैना ये डिपू बाजार रे गल नहीं ये नॉर्बिलिंगा रे गल नहीं ये अन्य धर्मशाला रे और भी बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं बहुत सारे स्टॉप्स ऐसे हैं जड़ी इस प्रकार रे की सो घटनाएँ बुंदी बंदी लेकिन इन प्रशासन जो यह गलत हो अवगत ही नहीं इन प्रशासन सिर्फ और सिर्फ VIP मूवमेंट किया सो करवाने में जुट रहा है और ध्यान देना चाहिए कि कड़ी कड़ी क्या किया और खासकर मुझे तो यह लगता है क्योंकि नॉर्बिलिंगा मेरे इना गाना किया सो बुंदा रहता था नॉर्बिलिंगा मंच किया डिपू बाजार में किया एक काफ़ी ज़्यादा दिक्कत पार्किंग रही है आशो तो पार्किंग रही भी आ और कॉमन सेंस रही भी आ कि पता कि पिछू गड्डी लग रही था फिर भी अपनी सवारी की सो नॉर्बिलिंगा जो मेन आ तड़ी ही उतारनी है ना इंस्टीट्यूट की नॉर्बिलिंगा तेरे बिल्कुल ऑपोजिट रोड आ तट्टी है कि ना सो बिल्कुल उतारनी ही तो इस चीज़ जरा ध्यान की सो रखना पैना और यूनियन जो टैक्सी यूनियन रहा प्रधान ने तीनों भी इस गल रहा किया सो अपने सभी बंदे जो है मैसेज किया सो देना चाहता है कि जहने भी तो है नॉर्बिलिंगा या अन्य किसी भी टूरिस्ट प्लेस मंगन दे तो आकर डेकोरम सो के किया सो अपनी गड्डी पार्क करा ताकि तुंदी वजह थो किया सो अगला कोई भी बंदा क्या ना सो परेशान ना बोन तैयारी मिनट्स क्या ना सो बर्बाद ना बोन। चलिए कार्यक्रम जो आगे बढ़ दे और अगली फरमाइश कर दें पूरी शो तो बने रहे तो सब RJ सचिन कपूर सो के

चले शतों कार्यक्रम है हिंदी अपनी गप है तो हूँ कर दिन आरजे सचिन कपूर सो किस्सा मेरा थोड़ा करे अब आप अजी गंदा गंदा के फरमाइश और टूटी मेरे छिकनो रिता हूँ। फिलहाल तुस सभी तो इजाजत किया सो ले लेंदा हा और बस ये बोलना चाहूँ माता पिता की सेवा कर दे रहे जितना हो सकता अपनी मम्मी जो जरूर खुश रखा माता जो कि सो जरूर खुश रखा क्योंकि मोहरा का रिश्ता ऐसा जो असो 9 महीने पहले गया सो प्यार करना लग दिया दुलार करना लग दिया तो मोह खुश किया सो जरूर रखा सो तो जरूर अकी दुए री सहायता करा प्रकृति जो सेफ रखा पर्यावरण जो सेफ रखा और अपने आप जो खुश रखा सभी मोटी गल तंदुरुस्त रखा खुश रखा चेहरा किया सो मुस्कुरंदा हुआ हमेशा हर पल हर दम सो इंसान है किया सो बिंदास जी सकता है। और अगर चेहरे अंदर शिकंज चलिंदी कर कागज की एरी कर या तुस हो कुछ बुरा बंदा ता भी तसी हो भी हंसते हंसते किया सो टाली दिया 4 दिन रही जिंदगी है सो तो हंसते रहे मुस्कुरंदे रहे नमस्ते धर्मशाला।

नमस्कार। रेडियो गुंजन धर्मशाला से आज का ये खास समाचार बुलेटिन अब आप सभी सुनेंगे रुचिका के साथ। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पर। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 29 रुपए बढ़े। शिमला में अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्मोत्सव की शुरुआत आज से। चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के लिए बड़ी पहल, एस्पायर देगा नीट जे की मुफ्त कोचिंग। एचआरटीसी पेंशनरों को हर माह समय पर मिलेगी पेंशन। पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाएगी सरकार। अब समाचार विस्तार से।

पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच 3 महीने में एक बार फिर एलपीजी सिलेंडर की कीमत में रविवार को 29 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। वैश्विक ऊर्जा बाजार की कीमत वृद्धि के कारण सरकारी ईंधन खुदरा विक्रेताओं को लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आज से अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्मोत्सव की शुरुआत हो रही है। 5 दिन तक चलने वाले इस महोत्सव में बॉलीवुड, पंजाबी और हिमाचली कलाकारों की प्रस्तुतियों के साथ साथ खेल, संस्कृति, खानपान और मनोरंजन का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। पहले दिन बॉलीवुड गायक शबाब सावरी अपनी प्रस्तुति देंगे। 9 जून को बॉलीवुड गायिका ज्योतिका दर्शकों का मनोरंजन करेंगी। 10 जून को कुलदीप शर्मा और उनकी टीम नाटी का मंचन करेगी। 11 जून को पंजाबी गायक गुरनाम मुल्लर अपनी प्रस्तुति देंगे। 12 जून को प्रसिद्ध पंजाबी गायक जस्सी गिल और बब्बल राय के कार्यक्रम के साथ महोत्सव का समापन होगा। हिमाचल प्रदेश में चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के लिए शिक्षा के क्षेत्र में एक नई पहल की शुरुआत हुई है। एस्पायर संस्थान ने राज्य के 15 निराश्रित बच्चों को नीट और जेई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं को निशुल्क कोचिंग देने का निर्णय लिया है। इन बच्चों को कोचिंग से लेकर अध्ययन सामग्री तक का पूरा खर्च संस्थान स्वयं वहन करेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को छोड़कर हिमाचल प्रदेश के सभी मंत्रियों, विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों को अगले माह से पूरा वेतन मिलेगा। मुख्यमंत्री सुक्खू ने रविवार को वित्त विभाग को निर्देश दिया कि वेतन स्थगन संबंधी अधिसूचना अब केवल उन पर लागू रहेगी और अन्य के लिए इसे वापस लिया जाए। वित्त विभाग के साथ बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थगित वेतन का बकाया अगले महीने पूर्ण वेतन के साथ जारी कर दिया जाएगा। हिमाचल पथ परिवहन निगम के पेंशनर्स को अब हर माह की 7 से 10 तारीख के बीच पेंशन का भुगतान कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ राज्य सचिवालय में हुई एचआरटीसी पेंशनर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी की बैठक में ये आश्वासन दिया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पेंशन का भुगतान हर माह निर्धारित तिथि पर समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि गांवों की ताकत हमारी पंचायतें हैं। प्रदेश सरकार पंचायतों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार का प्रयास है कि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को नारकंडा में निर्वाचित प्रतिनिधियों से संवाद किया। हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को एक नई दिशा देते हुए राज्य सरकार महिलाओं के लिए पहला सरकारी नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र शुरू करने जा रही है। नवजीवन नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र नाम से स्थापित ये केंद्र शिमला के मशोबरा में शुरू होगा। हिमाचल प्रदेश के हजारों भेड़ पालकों को सुक्खू सरकार एक बड़ी राहत प्रदान करने जा रही है। इसके लिए सरकार ने ग्रेजिंग पॉलिसी 2026 को अपनी मंजूरी कैबिनेट की बैठक में प्रदान कर दी है। इसका सबसे बड़ा लाभ ये रहेगा कि आगामी समय में भेड़ पालकों को ऑनलाइन माध्यम से परमिट मिल सकेगा और इससे उन्हें वन विभाग के कार्यालयों के चक्कर काटने से भी मुक्ति मिलेगी। अमेरिका और ईरान के बीच भले ही युद्ध विराम लागू हो, लेकिन बीच बीच में हमलों के मामले सामने आते रहते हैं। अमेरिका ने होर्मुज स्ट्रेट के ऊपर उड़ रहे ईरान के 2 ड्रोन पर हमला करके उन्हें गिरा दिया। इससे मिडल ईस्ट में एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। अमेरिकी मिलिट्री ने कहा है कि उसने होर्मुज के ऊपर ईरान के 2 और ड्रोन मार गिराए हैं, जिनसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यातायात को खतरा था। धर्मशाला के एचपीसीए स्टेडियम में 13 जून को होने वाले भारत और अफगानिस्तान के पहले एक दिवसीय मुकाबले को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। हाल ही में हुए आईपीएल मुकाबलों के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का रोमांच एक बार फिर धर्मशाला पहुंचने वाला है। मैच से ठीक 6 दिन पहले ही टिकटों की ऑनलाइन बिक्री को जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है और कई श्रेणियों की टिकटें तेजी से समाप्त होने लगी हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने वर्ष 2026 के राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए सरकारी डिग्री कॉलेजों, संस्कृत कॉलेजों, SCERT सोलन तथा GCTE धर्मशाला के शिक्षकों और प्राचार्यों से नामांकन आमंत्रित किए हैं। निदेशक उच्च शिक्षा डॉक्टर हरीश कुमार की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार पात्र सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर और प्राचार्य निर्धारित प्रपत्रों में आवेदन कर सकते हैं।
संसद की एक समिति ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से ये स्पष्ट करने को कहा है कि उसकी परिभाषा में पेपर लीक किसे माना जाएगा। समिति ने ये भी पूछा है कि वर्ष 2018 से अब तक आयोजित परीक्षाओं में क्या किसी प्रश्न पत्र के लीक होने की घटना हुई। सूत्रों के अनुसार समिति की प्रश्नावली पिछले सप्ताह उसके समक्ष NTA के अधिकारियों की पेशी के बाद आई है। अधिकारियों ने समिति को बताया था कि उनकी प्रणाली से कोई पेपर लीक नहीं हुआ था। कंप्यूटर बेस्ड प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राज्य का पहला सरकारी स्तर पर परीक्षा केंद्र हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग में तैयार हो गया है। 200 से ज्यादा कंप्यूटर से लैस इस परीक्षा केंद्र पर एक दिन में शिफ्ट आधार पर 600 से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा दे सकेंगे, क्योंकि यहां प्रदेश भर से परीक्षार्थी पहुंचेंगे। ऐसे में उन्हें रात को ठहरने के लिए भी लोक निर्माण विभाग की ओर से सरकारी स्तर पर बेहद कम रेट पर डोरमेट्री की सुविधा उपलब्ध होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने NEET UG की दोबारा परीक्षा के लिए शहरों की सूची जारी कर दी। 21 जून को देश के 551 और विदेश के 14 शहरों में परीक्षा होगी। अभ्यर्थी NTA की आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन संख्या और पासवर्ड की मदद से शहर की जानकारी देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में रोजगार के नए अवसर पैदा करने और युवाओं को स्वरोजगार की ओर आकर्षित करने के लिए उद्योग विभाग ने प्रदेश भर में लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा दे रही है। विभाग की ओर से विभिन्न जिलों में विशेष जागरूकता व प्रोत्साहन शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिनके माध्यम से युवाओं को उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों के लिए अब कॉलेज और विषय का चयन ही पर्याप्त नहीं होगा। प्रवेश के बाद विषय बदलने, कॉलेज बदलने और डिग्री ट्रैक चुनने के नियम पूरी तरह बदल गए हैं। नई व्यवस्था में विद्यार्थी को मेजर विषय बदलने का अवसर मिलेगा। ये सुविधा पूरे स्नातक पाठ्यक्रम के दौरान उपलब्ध नहीं रहेगी। UGC की NEP ढांचे के अनुसार विषय परिवर्तन का निर्णय पहले वर्ष के भीतर लेना होगा। केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश ने भारतीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2026 में सरकारी विश्वविद्यालयों की श्रेणी में देश भर में 9वां स्थान हासिल किया। इसके साथ ही CUHP हिमाचल के सर्वोच्च रैंक प्राप्त करने वाला विश्वविद्यालय बन गया है। IIRF रैंकिंग शैक्षणिक प्रतिष्ठा, शोध परिणाम, रोजगार क्षमता, छात्र प्रोफाइल, संस्थागत विकास और जनधारणा सहित 9 मानदंडों के आधार पर तैयार की जाती है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में BTech की पढ़ाई अब महंगी होगी। विश्वविद्यालय की संशोधित शुल्क संरचना के अनुसार 4 वर्षीय BTech कार्यक्रम की कुल अनुमानित लागत लगभग 5.5 लाख रुपए से अधिक पहुंच गई है। फीस वृद्धि के बाद तकनीकी शिक्षा हासिल करने वाले विद्यार्थियों को पहले की अपेक्षा अधिक राशि खर्च करनी होगी। उद्योग विभाग द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस कार्यक्रम के तहत 6 जून को पालमपुर स्थित SCM कार्यालय में एक दिवसीय जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य MSME इकाइयों एवं स्वयं सहायता समूहों को डिजिटल साक्षरता, ब्रांड निर्माण तथा सरकारी E-Marketplace के माध्यम से सरकारी खरीद प्रक्रिया से जोड़ना था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक ओम प्रकाश जरियाल ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि रैंप कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित ऐसी क्षेत्रीय कार्यशालाएं ग्रामीण उद्यमियों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने का सशक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं। इसी के साथ आज का ये खास समाचार बुलेटिन यही समाप्त होता है। धन्यवाद।

सभी का अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

92.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओ, आप सभी इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

इस समय आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी श्रोताओं, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

सभी का अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

92.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओ, आप सभी इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

समय आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी श्रोताओं, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

सभी का अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

नमस्कार श्रोताओं, FM बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला, और मैं हूं आपके साथ आपका अपना RJ वेड़ी जो कि सचिन कपूर। बहुत बहुत स्वागत है सभी सुनने वालों को, सभी श्रोतागण का। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और अपने घर में खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे। वही ज़रूरी है श्रोताओं, अगर आप अपने अपने घर में खुश हैं, तंदुरुस्त हैं, तो वो बहुत अहम किस्सा है ज़िंदगी का। बड़ा अहम हिस्सा है ये ज़िंदगी का कि खुश होना बहुत ज़रूरी है, तंदुरुस्त रहना जो है वो बड़ा ज़रूरी है श्रोताओं। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और धर्मशाला के मौसम के साथ आपको रूबरू करवाते हैं श्रोताओं। अधिकतम तापमान की बात करूं तो लगभग 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा है आज श्रोताओं, और न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो 19 डिग्री सेल्सियस के पास रहा है आसपास जो है वो रहने का अनुमान है श्रोताओं, है ना जी। तो आज है ये धर्मशाला का मौसम। इस समय की बात करें तो इस समय जो है वो 24 डिग्री सेल्सियस तापमान है श्रोताओं। नमी की बात की जाए तो 32% जो है वो नमी है इस समय धर्मशाला की। ये बना है जनाब धर्मशाला का मौसम इस वक्त का। तो आइए कार्यक्रम का आगाज करेंगे हम श्रोताओं इस प्यारे से गीत के साथ, और उसके बाद आप सभी तक अन्य जानकारियां जो हैं वो ज़रूर पहुंच जाएंगी। आप सभी यूं ही बने रहेगा वेड़ी गुंजन धर्मशाला के साथ, गूंज अपने बन की।

शोध एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला, और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना आरजे सचिन कपूर। तो पुनः पर सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है जी कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में। तो लेके चलते हैं अब आपको आज के विचार की ओर। कहते हैं, बीते हुए कल से सीखें, आने वाले कल के लिए उम्मीद रखें और आज के दिन को जो है वो खुल कर जिए। हर दिन शायद अच्छा ना हो श्रोताओं, लेकिन हर दिन में कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर छिपा होता है श्रोताओं। गलतियाँ इस बात का सबूत होती हैं कि आप लगातार सीखना चाहते हैं और सीखने की ललक आप में है और आगे बढ़ने का प्रयास जो है वो आप कर रहे हैं। आप गलतियाँ करें, रोज़ करें, हर बार करें, तभी तो पता लगेगा ना कि आप जो है वो कुछ सीख रहे हैं, सीखने का अभ्यास कर रहे हैं। और गलतियां भी वही इंसान श्रोतों करता है जो सीखता है, जो सच्चे मन से सीखता है और आगे बढ़ने का प्रयास करता है। तो ये था आज का विचार श्रोतों। आप सभी बने हुए हैं वेडी गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला सुन रहे हैं। तो आइए कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। आपका ये कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला 8 बजे तक बिल्कुल चलेगा श्रोताओं, लाइव कार्यक्रम जो है वो बिल्कुल चलेगा। घरेलू LPG सिलेंडर जो है वो कितने रुपये महंगा हुआ है, कहीं ना कहीं आम जनता पर जो है वो बोझ अब दिख रहा है। जो पश्चिम एशिया में लड़ाई चल रही है उसका ये पूरी जानकारी आप तक हम ज़रूर पहुंचाएंगे श्रोताओं। लेकिन आइए, कहते हैं ना कि प्यार का अंजाम किसने देखा, हम तो मोहब्बत करे जा रहे हैं। कुमार शानू का याग्निक की आवाज़ में प्यारा सा गीत।

इसलिए तो मैंने फिर से आपको ये सुनाया कि प्यार का अंजाम किसने सोचा, किसने देखा। हम तो मोहब्बत किए जा रहे हैं, और शो तो मोहब्बत कीजिए अपने आप से, मोहब्बत कीजिए अपनी पढ़ाई लिखाई से, मोहब्बत कीजिए अपने प्रोफेशन से, मोहब्बत कीजिए अपने घर वालों से। जी बिल्कुल, ये सच्ची मोहब्बत कीजिए। आप सभी बने हुए समय FM बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला के साथ, और कार्यक्रम में सचिन कपूर के साथ सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। आइए लेके चलते हैं आप सभी को श्रोताओं कार्यक्रम में अगली जानकारी की ओर। पश्चिम एशिया में जारी संकट और हॉर्मुज स्ट्रेट के गैस सप्लाई बंद होने के चलते मुसीबत का सामना कर रही तेल कंपनियों ने घरेलू रसोई गैस LPG सिलेंडर को जो है वो फिर से महंगा किया है। अब श्रोताओं 29 रुपये और जो है वो महंगा हुआ है। इस बढ़ोतरी के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाला घरेलू LPG सिलेंडर 942 रुपये का हो गया है श्रोतों। हालांकि कमर्शियल इस्तेमाल वाले 19 किलोग्राम के सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है फिलहाल आज दिन तक, अभी तक। पश्चिम एशिया संकट शुरू होने के बाद से जो है वो घरेलू रसोई गैस के दाम दूसरी बार जो है वो बढ़ाए गए हैं श्रोतों। इससे पहले 7 मार्च को इसमें 60 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी, और इस दौरान LPG सिलेंडर के दाम में भारी भरकम वृद्धि जो है वो हो चुकी है श्रोतों। पश्चिम एशिया संकट शुरू होने के बाद से दिल्ली जो है वो LPG सिलेंडर के दाम 1373 रुपये बढ़ा चुकी है श्रोतों। इस साल फरवरी में इसकी कीमत जो है वो श्रोतों काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है, है ना। तो कहीं ना कहीं 942 रुपये का हुआ 14.2 किलोग्राम वाला घरेलू LPG सिलेंडर, और 4 महीने में लगभग 90 रुपये बढ़ चुके हैं दाम इसके। और सरकार बोल रही है हम सस्ता बेच रहे हैं। जी बिल्कुल, इसी प्रकार से जानकारियों का सिलसिला यूं ही खुलता रहेगा श्रोताओं। जानकारियों का पिटारा आप सभी यूं ही सुनते चलेंगे, साथ ही साथ श्रोताओं गीत संगीत का पिटारा जो है वो भी यूं ही चलता रहेगा। आइए लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर, बने रहेगा RJ सचिन कपूर के साथ। गूंज अपने बन के और गूंज अजित भी प्यारे प्यारे श्रोता हमारे साथ बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं।

श्रोता एफ एम 91.9 दो मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला, और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे वेड़ी, जो कि सचिन कपूर। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी सुनने वालों का, हार्दिक अभिनंदन है। तो श्रोताओं, कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और बहुत सारी जानकारियां आपके साथ साझा करने को श्रोताओं, तो सारी जानकारियाँ आप तक हम ज़रूर पहुंचाएंगे। आइए लेके चलते हैं। वैसे आप सभी को बताएं श्रोताओं कि महाराष्ट्र समेत 12 राज्यों में जो है वो पहुंचा है मानसून। जी बिल्कुल, केरल तमिलनाडु में भारी बारिश हो रही है श्रोताओं, और राजस्थान में जो है वो चल रही है आंधी। इस बार 3 दिन की देरी से केवल पहुँचा मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है श्रोताओं, और महाराष्ट्र सहित देश के 12 राज्यों में दस्तक दे चुका है श्रोताओं। जी बिल्कुल, तो मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और असम के कुछ हिस्सों में भी जो है वो मानसून पहुंच चुका है श्रोताओं। अगले 2 दिन में ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के बाकी हिस्सों में जो है वो जा पहुंचेगा। बाकी राज्यों में भी जो है वो जल्द से जल्द मानसून अब जा पहुंचेगा श्रोताओं। मानसून की अगर मैं बात करूँ तो मानसून के कारण केरल, कर्नाटक, गोवा और तमिलनाडु में कई ज़िलों में जो है वो भारी बारिश हो रही है। हालांकि तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में लगातार 5वें दिन पारा 40 डिग्री सेल्सियस का आंकड़ा जो है वो पार कर गया था। देश में गुजरात को छोड़कर जो है वो अन्य सभी राज्यों में प्री मानसून बारिश जो है वो हो रही है श्रोताओं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, हरियाणा समेत नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में तेज बारिश जो है वो हो रही है श्रोताओं। राजस्थान और मध्य प्रदेश में 50 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी चलने का भी समाचार जो है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि 50 किलोमीटर की रफ्तार से जो है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश में आंधी चल रही है इस समय। तो महाराष्ट्र समेत 12 राज्य में पहुँचा मानसून श्रोताओं, और बिल्कुल मानसून की तैयारी कर ले। अब हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो मानसून इतना भयंकर जो है वो बिल्कुल भी ना आए, है ना, इतना खतरनाक वाला मानसून जो है वो बिल्कुल भी ना आए, हम ये दिल से चाहते हैं श्रोताओं। बहरहाल वक्त हो गया 6:30 और वक्त हुआ है वेड़ी गुंजन धर्मशाला में एक छोटे से अंतराल का। अंतराल के बाद श्रोताओं लेके चलेंगे आपको गीत संगीत की ओर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है, जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़

सूखते थे, वहाँ पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें।

संस्थान की तलाश में है तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को। के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर, 540 प्लस टॉप कंपनियां और 1250 प्लस से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण, GGI जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं Apex Plus Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: श्रोता एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला, और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना आरजे वीडियो जो कि सचिन कपूर। और भी बहुत सारी जानकारियाँ हैं। श्रोता अंतराल के बाद बहरहाल आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जितने भी श्रोता जो है वो हमारे साथ जुड़े हैं, अपनी वेड़ी गुंजन की गूंज के साथ जुड़े हैं, तो प्रदेश के 3 ज़िलों में जो है वो गर्म हवाओं का येलो अलर्ट जो है श्रोताओं वो जारी है। ऊना, बिलासपुर, सोलन में आग उगल रहे हैं इस समय सूर्यदेव जी, और पसीने छूट रहे हैं। बिल्कुल हिमाचल प्रदेश में अब जून के महीने की तपिश जो है श्रोताओं वो अलग रुख अपना रही है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने राज्य के 3 ज़िलों में जो है, 3 ज़िलों के नाम मैं बताना चाहता हूँ, ऊना, बिलासपुर और सोलन के लिए जो है वो 9 और 10 जून को लू चलने का येलो अलर्ट जो है श्रोताओं वो जारी किया है। राज्य में अब गर्मी जो है वो गंभीर रूप ले रही है ऐसा लग रहा है। श्रोताओं राज्य में जो है वो अब गर्मी का ये दौर जो है वो ज़्यादा लंबा जारी रहने का भी अपूर्ण अनुमान जताया जा रहा है। श्रोताओं राज्य में 11 और 12 जून को जो है वो हो सकता है प्रभाव ज़्यादा हो। राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम करवट ले सकता है और बारिश, आंधी व बिजली गिरने की गतिविधियां फिर से जो है वो शुरू हो सकती हैं। रविवार को ये राजधानी शिमला सहित अधिकांश क्षेत्रों में तेज़ धूप खिल रही है श्रोताओं, और सामान्य दिनों की तुलना में अधिक गर्मी महसूस की गई है श्रोताओं। राज्य में 9 और 10 जून को जो है वो ऊना यानी कि कल और परसों श्रोताओं ऊना, बिलासपुर और सोलन जिलों में वो लू चलने की संभावना जताई गई है श्रोताओं। इसी के मद्देनज़र इन ज़िलों के लिए येलो अलर्ट भी जो है वो जारी किया गया है श्रोताओं, और 10 ज़िलों में तूफान की चेतावनी भी है। मौसम विभाग के अनुसार अगर मैं बात करूँ तो 11 और 12 जून को जो है वो प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम खराब रह सकता है। लाहौल स्पीति और किन्नौर को छोड़कर शिमला, मंडी, कुल्लू, चंबा, कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, सोलन और सिरमौर समेत शेष 10 जिलों के लिए जो है वो आंधी बारिश और बिजली कड़कने का येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है श्रोताओं। इन 2 दिनों के दौरान कई स्थानों पर जो है वो 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे

शोधोएफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये वेली गुंजन धर्मशाला है और तेरी याद साथ है। मैं जहाँ रहूँ मैं कहीं भी हूँ तेरी याद साथ है, ये वाकई मैं ही सोता हूँ। देखिए यादें जो हैं वो कमाल होती हैं, बाकमाल होती हैं और ये हमेशा साथ रहनी चाहिए। सोतों आइए आप सभी बने हैं वेली गुंजन के साथ और लेके चलते हैं आप सभी को कार्यक्रम में थोड़ी सी आगे। मैं हूं आपका अपना नाचीज सचिन कपूर। अगली जानकारी के साथ आप सभी को रूबरू करवाते हैं श्रोताओं। 8 से 12 जून 2026 तक आयोजित किए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव के तहत नगर निगम ग्राउंड संजोली में प्रथम एंटी चिट्टा अंतर जिला वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ जो है श्रोताओं वो मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा किया गया है। वॉलीबॉल प्रतियोगिता के प्रथम दिन पहला मैच शिमला बनाम ऊना जिला के मध्य खेला गया श्रोताओं, जिसमें शिमला ब्लू ने 3-0 से विजेता पाई और विजेता रही शिमला की टीम। दूसरा मैच जो है श्रोताओं वो हमीरपुर बनाम बिलासपुर जिला के मध्य खेला गया श्रोताओं, जिसमें हमीरपुर भी 3-0 से विजयी रही। अंतिम मैच शिमला येलो बनाम किन्नौर जिला के मध्य खेला गया, जिसमें शिमला येलो 3-0 से विजयी रही श्रोताओं। रानी झांसी पार्क में लोगों ने जो है श्रोताओं वो चखा शिमला पहाड़ी स्वाद। जी बिल्कुल, रानी झांसी पार्क में लोगों ने जो है वो चखा, एक बार फिर बताना चाहता हूँ, शिमला पहाड़ी स्वाद। रानी झांसी पार्क में शिमला पहाड़ी स्वाद महोत्सव के तहत चयनित 13 प्रतिभागियों द्वारा जो है वो स्टॉल जिसको कहते हैं वो स्थापित किए गए हैं, जिनमें 5 स्वयं सहायता समूह, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एक समूह, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन तथा 7 ओपन कैटेगरी के हैं श्रोताओं। इन स्टॉल पर लोगों और पर्यटकों को जो है वो पारंपरिक व्यंजन जो है वो चखने का अवसर मिल रहा है श्रोताओं। इस दौरान अतिरिक्त उपायुक्त सचिन शर्मा ने स्टॉल का निरीक्षण किया और महिलाओं द्वारा तैयार व्यंजन को चखा श्रोताओं। रोटरी टाउन हॉल के समीप फ्लावर शो का आयोजन श्रोताओं, रोटरी टाउन हॉल के समीप फ्लावर शो का आयोजन किया गया है, जिसमें सैजिस द्वारा जो है श्रोताओं 100 प्रकार के फूल आर्मी हेरिटेज म्यूजियम द्वारा 50 विभाग द्वारा जो है वो 36 और CPWD द्वारा जो है वो विभिन्न प्रकार के फूल प्रदर्शित किए गए हैं श्रोताओं। इसी प्रकार से जो है वो अन्य जानकारियां आप तक ज़रूर पहुंचेंगी श्रोताओं। आप सभी बने हुए इस समय आरजे सचिन कपूर के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला, आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला। तो गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम को इसी तरह से थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं श्रोताओं, और कार्यक्रम में अब आपको लेके चलेंगे हम इस प्यारे से गीत की ओर। गीत के बोल है, आंख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो, बहुत ही प्यारा सा ये गीत है श्रोताओं। आइए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को आप सभी के अपने रेडियो सेट पर वेडी गुंजन धर्मशाला में।

श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला, और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे वेड़ी, जो कि सचिन कपूर। बहुत बहुत स्वागत है पुनः आप सभी का कार्यक्रम में, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में हार्दिक अभिनंदन है। चलिए जी, कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे हम बढ़ाते हैं और अगली जानकारियों के साथ जो है वो आपको रूबरू करवाते हैं। श्रोतों, सुक्खू सरकार के फैसले से गग्गल के 70 परिवारों को बड़ी राहत मिली है। प्रदेश सरकार द्वारा कैबिनेट बैठक में जो है वो पॉलिसी फॉर रेगुलराइजेशन ऑफ सेंटर ऑन गवर्नमेंट लैंड 2026 को जो है वो मंजूरी दिए जाने के बाद जो है वो गग्गल क्षेत्र के उन लगभग 70 परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई है श्रोताओं, जो पिछले करीब 7 दशकों से जो है वो श्यामलात भूमि पर अपने घर बनाकर रह रहे थे। सरकार के इस निर्णय से ये इन परिवारों को अपने भविष्य को लेकर बड़ी राहत जो है वो मिली है और उन्हें अब भूमि पर मालकीना हक मिलने की उम्मीद जो है वो जगी है श्रोतों। गौरतलब है कि गग्गल एयरपोर्ट के प्रस्तावित विस्तारीकरण की जिद में आने वाले ये परिवार लंबे समय से भूमि न्यायमितीकरण की मांग कर रहे थे। इन परिवारों का कहना है कि वे कई पीढ़ियों से गग्गल में निवास कर रहे हैं, यहाँ उनकी ये उनकी जो है वो तीसरी और चौथी पीढ़ी भी बड़ी हुई है। वर्षों से वह पंचायत, विधानसभा और लोकसभा चुनावों में अपने मताधिकार का प्रयोग करते आ रहे हैं तथा स्थानीय समाज का जो है वो अभिन्न हिस्सा है श्रोताओं। प्रदेश सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए गग्गल ग्राम पंचायत की नवनिर्वाचित प्रधान दामिनी कश्यप, उप प्रधान रविंदर बाबा तथा अन्य पंचायत प्रतिनिधियों ने कहा कि ये निर्णय उन परिवारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जिनका भविष्य जो है वो बिल्कुल अब इस फैसले के बाद जो है वो ब्राइट हो गया है, लेकिन इससे पहले जो था वो भविष्य ब्राइट नहीं था श्रोतों। चलिए अब से आप कुछ ही देर में जो है ठीक पूरे 7 बजे जो है श्रोतों अब आप सुनेंगे समाचार। बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ यूं ही।

0: बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना है तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा।
1: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है। गरीबी को कल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज देशभर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि ये पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा। भारत ने पश्चिम एशिया में हुए नए हमलों पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। भारत ने सभी पक्षों से तत्काल तनाव को कम करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। मंत्रालय ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए चल रही राजनयिक वार्ता को पूरा करने की भी अपील की है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अपर सचिव प्रवीण खनूजा ने बताया कि देश भर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि देश में उर्वरकों का भंडार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उधर भाजपा ने कहा है कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब शामिल हो गया है। ये योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर आज केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी किया। न्यायालय की खंडपीठ ने याचिका पर केंद्र और CBSE से जवाब मांगा है। बॉम्बे शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 719 अंक गिरकर 73,524 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 244 अंक की गिरावट के साथ 23,123 पर आ गया। भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुथार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: टेस्टिंग और हाउसिंग सेंसर्स यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं APEX+ POINT ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: श्रोतो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला, और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना आरजे वेड़ी जो कि सचिन कपूर। कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला आप सभी सुन रहे हैं। आइए श्रोतो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगली जानकारी के साथ आपको रूबरू करवाते हैं। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने राज्य के 40 स्कूल प्रवक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए 4-9-14 एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम के तहत वेतन निर्धारण के आदेश जारी कर दिए गए हैं। श्रोतों, शिक्षा निर्देशक की ओर से जारी कार्यालय आदेशों में पात्र प्रवक्ताओं का वेतन जो है वो इस ASP योजना के तहत करने के निर्देश दिए गए हैं। श्रोतों, जारी आदेशों के अनुसार संबंधित प्रवक्ताओं को 4-9-14 ACP का लाभ 9 अगस्त 2012 तक काल्पनिक आधार पर तथा 9 अगस्त 2012 से वास्तविक आधार पर जो है वो प्रदान किया जाएगा। इसके तहत पात्र शिक्षकों को वेतन का पूर्ण निर्धारण किया जाएगा श्रोताओं, और उन्हें नियम अनुसार वित्तीय लाभ भी मिलेगा। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी प्रवक्ता को पहले नियमितीकरण की किसी अलग या पूर्व तिथि के आधार पर ASP का लाभ नहीं गया था तो उसे वापस लिया जाएगा और नए आदेशों के अनुसार ही लाभ निर्धारित जो है वो किया जाएगा। विभाग ने ये भी कहा है श्रोताओं कि सभी मामलों का जो है वो ऑडिट के दौरान सत्यापन किया जाएगा। यदि भविष्य में किसी प्रकार की अधिक भुगतान राशि सामने आती है तो संबंधित कर्मचारी को पूरी राशि जो है वो वापस करनी होगी। इसके लिए लाभार्थी शिक्षकों से लिखित सहमति पत्र भी लिया जाएगा श्रोताओं, जैसे उनकी सेवा ली जा रही है। श्रोतों, इन आदेशों के मतलब आप ये सोचिए कि हिमाचल प्रदेश संबंधित जिला उपनिदेशक तथा स्कूल प्रधानाचार्य को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी गई है। श्रोतों, गौरतलब है कि 4-9-14 ACP योजना के तहत कर्मचारियों को निर्धारित सेवा अवधि पूरी करने पर वित्तीय का लाभ जो है वो दिया जाएगा। श्रोतों, शिक्षा विभाग के इस निर्णय से 40 प्रवक्ताओं को वेतन और सेवा लाभों के रूप में राहत जो है वो मिलेगी और लंबे समय से जो है वो मामले का भी निपटारा होगा। श्रोतों, तो स्कूल प्रवक्ताओं की पगार जो है वो अब बढ़ेगी। कार्यक्रम आप सभी आरजे सचिन कपूर के साथ सुन रहे हैं। आइए लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर।

शोधो एफ एम बैंड 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है वेडी गुंजन धर्मशाला, और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना आरजे वेडी जो कि सचिन कपूर। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से पुनः। आइए श्रोतों, कांगड़ा पुलिस को जो है वो बड़ी कामयाबी मिली है। 3 और तस्कर जो है वो गिरफ्तार हुए हैं। श्रोतों, पूरी जानकारी क्या है आप तक पहुँचाते हैं। हिमाचल प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे ऑपरेशन नया सवेरा के तहत कांगड़ा पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए अंतर्राज्य ड्रग तस्करी नेटवर्क के 3 महत्वपूर्ण कड़ियों को पंजाब और चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया है। श्रोताओं, पुलिस की जांच में सामने आया है कि ये आरोपी न केवल नशे की सप्लाई चेन से जुड़े थे बल्कि अवैध कमाई के वित्तीय लेन देन में भी अहम भूमिका जो है वो निभा रहे थे। मिली जानकारी के अनुसार पहले गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ, तकनीकी संशय और बैंक खातों की जांच के आधार पर तीन लोगों की पहचान की गई है। इसके बाद कांगड़ा पुलिस की CIA की 3 विशेष टीमों का गठन कर पंजाब और चंडीगढ़ में एक साथ छापामारी की गई। श्रोताओं, 5 जून को हुई इस कार्रवाई में कपूरथला निवासी गौरव और SPS नगर निवासी हनी तथा अमृतसर निवासी हनी कुमार को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। श्रोताओं, वहीं जांच में खुलासा हुआ है कि हनी कुमार गिरोह के मुख्य सरगना अभिषेक सहोटा को हीरोइन चिट्टे की सप्लाई करता था और पूरे नेटवर्क में नशे की उपलब्धता बनाए रखने में उसकी अहम भूमिका थी। वहीं गौरव और हनी के माध्यम से नशे के कारोबार से होने वाली अवैध कमाई को विभिन्न माध्यमों से संचालित किया जाता था। पुलिस अब इनके बैंक खातों और वित्तीय लेन देन की गहन जांच कर रही है ताकि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोग और लाभार्थियों तक भी पहुंचा जा सके।

कि कांगड़ा पुलिस की माने तो ये गिरफ्तारियां अंतर्राज्य ड्रग को ध्वस्त करने की दिशा में बड़ी उपलब्धि है। गौरतलब है हाल ही में कांगड़ा पुलिस ने इस अंतर्राज्यीय नशा तस्कर गिरोह के मुख्य तस्कर सरगना सहित 16 लोगों को हिरासत में लिया है। साथ ही उनसे चिट्टे की खेप व 1.5 करोड़ के अवैध लेन देन को भी ट्रेस किया था श्रोताओं। साथ ही अब तीन और आरोपियों के हाथ में आने से तस्करों की संख्या 19 हो गई है, 16 से बढ़कर 19 हो गई है श्रोताओं। आइए कार्यक्रम को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। आप सभी बने हुए इस समय आरजे सचिन कपूर के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला।

शत एफ एम एंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं आरजे सचिन कपूर के साथ बिल्कुल लाइव अपने अपने वीडियो सेट पर। कार्यक्रम में जानकारियों का पिटारा यूं ही खुलता रहेगा, श्रोताओं गीत संगीत का पिटारा भी यूं ही खुलता रहेगा। आइए अगली जानकारी के साथ आपको रूबरू करवाते हैं। धर्मशाला के डिपू बाजार में जो है वो श्रोताओं पार्किंग से लग रहा है जाम, लोग हो रहे हैं परेशान और शहर में अव्यवस्थित पार्किंग जो है वो बनी इस समय बड़ी समस्या। कचहरी चौक से स्कूल जाने वाला रास्ता जो है वो बिल्कुल जाम में जो है वो लोग वहाँ पर फंस रहे हैं। श्रोतों जिला मुख्यालय धर्मशाला शहर के प्रमुख क्षेत्र स्थित डिपू बाजार में जो है वो पार्किंग व्यवस्था के कारण आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। श्रोतों ये मार्ग कचहरी चौक से स्कूल एकेडमी छात्रावास पोस्ट ऑफिस तथा अन्य शैक्षणिक संस्थानों तक जाने का प्रमुख रास्ता है जिस पर दिन भर वाहनों का दबाव जो है वो बना रहता है। श्रोतों स्थानीय लोगों के अनुसार सर्किट हाउस की ओर से जाने वाला मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण अब अधिकतर यातायात टी गार्डन और कुणाल पथरी मंदिर की ओर जाने के लिए इसी रास्ते का जो है वो उपयोग होता है और इसी रास्ते से जो है वो गुजरा जाता है। ऐसे में श्रोता हूँ इस सड़क पर वाहनों की संख्या लगातार बढ़ गई है जिससे स्थिति और भी गंभीर जो है वो नज़र होती नज़र आ रही है। श्रोता हूँ डिपू बाज़ार क्षेत्र में सड़क किनारे मनमाने तरीके से खड़े वाहन यातायात को बाधित कर रहे हैं। श्रोता हूँ कई बार दोपहिया वाहन भी जाम में फंस जाते हैं। श्रोता हूँ वहीं छात्रों का कहना है कि उन्हें स्कूल एकेडमी और हॉस्टल तक पहुंचने के लिए यहाँ की पार्किंग से जो है वो गुजरना होता है, जो लोगों ने जो अपनी मर्जी से पार्किंग की होती है। श्रोताओं गर्ल्स स्कूल वाला जो ये रोड है, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो साधारण भाषा में अगर मैं कहूँ तो गर्ल्स स्कूल वाला जो रोड है। श्रोताओं स्थानीय नागरिकों ने सवाल उठाया है कि जब धर्मशाला को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है तो फिर शहर के बीचों बीच ऐसी अव्यवस्थित पार्किंग व्यवस्था पर कब तक जो है वो लगाम लग पाएगी। लोगों का कहना है कि यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए ठोस कदम उठाना समय की मांग है। बता दें कि हाल ही में नगर निगम धर्मशाला के राजनीतिक बदलाव के बाद अब लोगों की नज़र नए नेतृत्व पर भी टिकी है। श्रोतों नागरिक उम्मीद जता रहे हैं कि शहर की इस गंभीर समस्या का स्थायी समाधान निकाला जाएगा और डिपू बाजार जैसे व्यवस्था क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था की जो है वो सुविधा अच्छे से की जाएगी। और इसी तरह नॉर्बलिंगा का भी यही हाल है। श्रोताओं अन्य और जानकारी आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन अब वक्त हो गया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला में एक छोटे से अंतराल का। मिलते हैं आप सभी से अंतराल के बाद। बने रहिए, जुड़े रहिए, महसूस कीजिए आपके अपने वेड़ी गुंजन को।

0: क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं APEX+ POINT ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: जिन्हें अपना समझकर हर कठिन समय में उनके साथ खड़े रहे। कई बार वही लोग तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारी बुराई करते हैं, और यही संसार का स्वभाव है पार्थ। जिसे तुम अपना मानते हो वो सदा तुम्हारा हित नहीं चाहता। पर स्मरण रखो, उपकार का अर्थ ये नहीं कि सामने वाला तुम्हारी भावना समझे। कुछ लोग प्रेम को अधिकार समझ लेते हैं और तुम्हारे मौन को कमजोरी। इसलिए अच्छा बनो, पर अपनी शांति की कीमत पर नहीं। और जब अपने ही तुम्हारी बुराई करें तो स्वयं को बदलना मत। अपनी अपेक्षाएं सीमित रखो, क्योंकि सभी अपने दिखने वाले वास्तव में अपने नहीं होते।
1: हेलो
2: हेलो सर, shopping.com से आपने जो जूते ऑर्डर किए थे फिलहाल वो स्टॉक में नहीं है।
1: पेमेंट तो कट हो गया।
3: Zoom in.
2: Don't worry, sir. रिफंड के लिए QR कोड भेज रही हूँ, आपको सिर्फ स्कैन करना है।
1: QR कोड से रिफंड?
2: Yes, sir.
3: Got it.
2: यही है सबसे फास्टेस्ट प्रोसेस रिफंड के लिए। प्लीज जल्दी कीजिए, आपका पैसा लौटाना हमारा फर्ज है।
3: क्यों मैडम फर्जी, बहुत जल्दी है आपको?
2: नहीं तो
3: चलो सबको खड़ा करो। तो आप क्या समझे, QR कोड सिर्फ पेमेंट करने के लिए स्कैन किया जाता है, पैसे रिसीव करने के लिए नहीं। सतर्क रहें, आइए मिलकर चीट्स को बीट करें।
4: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
5: हर घर सूर्य घर।
6: सरकार की तरफ से जितने स्वास्थ्य कर्मी हैं हेल्थ वर्कर्स, वो घर घर जाकर के आपको अवगत कराएंगे टीबी के बारे में। हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है कि उनका सहयोग कीजिए। ये जो आपको खांसी हो, बुखार हो, वजन कम हो रहा हो, ये बताइएगा उन्हें। देखिए टीबी इतनी बड़ी बीमारी नहीं है कि पकड़ में ना आ सके। हाँ, इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
7: मार्केट जा रहा हूँ, आता हूँ अभी।
8: अच्छा सुनो, आते हो मेरे लिए थोड़े से पनीर के पकोड़े ले आना।
7: तुम पागल वागल होगी हो क्या?
9: Oh, no.
7: पता भी है पनीर के पकोड़े कितने अनहेल्दी होते हैं, कैसे कैसे तेल में तलते हैं वो लोग। कुछ हेल्दी खाओ यार।
8: अच्छा
7: हाँ।
8: अच्छा सुनो, 1 किलो काजू बादाम ले आना फिर।
7: तुम बुरा मान गई ना?
8: नहीं तो
7: तुम बुरा मान गई, तुम्हें नहीं पता। ठीक है यार, मैं ले आऊंगा पकोड़े, कभी कभी तो खाती हूँ, इसमें क्या हो गया, कभी कभी एनएलडी भी खाना चाहिए।

श्रोता एफ एम बैंड 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है वेडी गुंजन धर्मशाला और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना आरजे सचिन कपूर। चलिए लेके चलते हैं आप सभी को इस अंतराल के बाद इस प्यारे से गीत की ओर।

0: श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्स पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं इस समय। गुड इवनिंग धर्मशाला। अब श्रोतो वक्त हो गया है रेडियो गुंजन धर्मशाला में प्रादेशिक समाचारों का।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है। और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न

0: सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
1: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प ले।
0: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा, मौजूदा समय में युवाओं को अपनी संस्कृति, परंपराओं और नैतिक मूल्यों से जोड़ना आवश्यक। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला के मशोबरा में किया प्रदेश के पहले महिला नशा मुक्ति केंद्र का शुभारंभ। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, पहाड़ों, नदियों और नालों पर अल्पकालिक लाभ के लिए अतिक्रमण बन रहा है प्राकृतिक आपदाओं का कारण। प्रदेश भाजपा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर नीरज भारती द्वारा लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग। और कोकसर की ओर से रोहतांग पास जाने के लिए अब ऑनलाइन परमिट लेना जरूरी। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा है कि मौजूदा समय में युवाओं को अपनी संस्कृति, परंपराओं और नैतिक मूल्यों से जोड़ना अत्यंत आवश्यक है ताकि वे जिम्मेदार, संवेदनशील और राष्ट्रहित के प्रति समर्पित नागरिक बन सकें। राज्यपाल आज शिमला में गायत्री परिवार द्वारा आयोजित भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति हमारी पहचान और राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। राज्यपाल ने कहा कि भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा केवल एक परीक्षा नहीं बल्कि नई पीढ़ी को देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, नैतिक मूल्यों और राष्ट्रीय चेतना से जोड़ने का एक सशक्त माध्यम है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला के मशोबरा में महिलाओं के लिए प्रदेश के पहले नशा मुक्ति केंद्र का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि प्रदेश में नशा, विशेषकर चिट्टे की चुनौती, केवल कानूनी व्यवस्था का विषय नहीं है बल्कि ये एक सामाजिक, पारिवारिक और मानवीय संकट है। उन्होंने कहा कि सरकार ने शुरुआत से चिट्टे की चुनौती को गंभीरता से लिया है और इसे रोकने के लिए आम जनता को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नशा तस्करों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने संजौली में नवनिर्मित बहुउद्देशीय खेल स्टेडियम का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ भी किया।
3: समर फेस्टिवल शिमला का आगाज हर वर्ष होता था, इस बार इस कार्यक्रम में एक और कार्यक्रम को जोड़ा गया है जो चिट्टा मुक्त वॉलीबॉल प्रतियोगिता का ये आयोजन किया जा रहा है और इसमें 12 हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो टीमें हैं वो सम्मिलित हो रही है और इसमें चिट्टा मुक्त वॉलीबॉल जो हमारा ये आयोजन है इसके लिए आज शिमला समर फेस्टिवल से आज इसकी शुरुआत। चोपरा में पहला डी एडिक्शन सेंटर जो हमारी लेडीज है उसके लिए खोला जा रहा है।
2: पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पर्वतों, नदियों और नालों पर अल्पकालिक लाभ के लिए अतिक्रमण के कारण प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। रामनाथ कोविंद आज कुल्लू के घुड़दौड़ स्थित ऋषि भूमि योग आश्रम परिसर में नवस्थापित ऋषि भूमि प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र के शुभारंभ के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रकृति और मानव का संबंध अत्यंत गहरा है और हमें प्रकृति का सम्मान करते हुए इसके साथ सामंजस्य स्थापित कर आगे बढ़ना चाहिए। 3 दिवसीय राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र जोन 2 का सम्मेलन आज चंडीगढ़ में आरंभ हुआ। इस सम्मेलन में हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया कर रहे हैं। पठानिया बीती रात ही इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए चंडीगढ़ पहुंचे थे। उनके साथ विधायक संजय रतन, केवल सिंह पठानिया, नीरज नैयर, राकेश जम्वाल, रीना कश्यप और कमलेश ठाकुर भी इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष कल 9 जून को सम्मेलन में विकसित भारत 2047 राष्ट्रीय लक्ष्य को पाने में जागरूक नागरिक, समाज और युवा विधायकों की भूमिका विषय पर अपना संबोधन देंगे। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिसे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसे आकाशवाणी नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्र कार्यरत हैं, जिनसे 23 भाषाओं में और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। इनकी पहुंच देश की 98% आबादी तक है। भरमौर से भाजपा विधायक डॉक्टर जनकराज ने टांडा मेडिकल कॉलेज के हृदय रोग विभाग के एकमात्र विशेषज्ञ डॉक्टर का सरकार द्वारा स्थानांतरण किए जाने का विरोध किया है। डॉक्टर जनकराज ने आज कहा कि एकमात्र विशेषज्ञ डॉक्टर के तबादले का हजारों मरीजों की स्वास्थ्य सेवाओं पर सीधा असर पड़ेगा। उन्होंने सरकार से इस तबादले को तुरंत रद्द करने की मांग की। डॉक्टर जनकराज ने हृदय रोग विभाग में और अधिक विशेषज्ञ डॉक्टर तैनात करने का भी सरकार से आग्रह किया। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्यसभा सांसद प्रोफेसर सिकंदर कुमार ने कहा है कि माता पिता का त्याग व समर्पण ही बच्चों की सफलता की असली नींव है। प्रोफेसर सिकंदर कुमार आज सरस्वती विद्या मंदिर शिमला द्वारा मेधावी और प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए आयोजित पारितोषिक वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य किताबी ज्ञान या डिग्रियां हासिल करना नहीं, बल्कि एक आदर्श चरित्र का निर्माण करना है। प्रोफेसर सिकंदर ने कहा कि विद्यार्थी जीवन में चाहे सफलता के किसी भी सर्वोच्च मुकाम पर पहुंच जाए, लेकिन अपने गुरुजनों का स्थान हमेशा सर्वोपरि रखें और उनका सम्मान करें। उन्होंने मेधावी छात्रों को सम्मानित भी किया। प्रदेश कांग्रेस ने नीरज भारती विवाद पर पार्टी की अनुशासन समिति की बैठक बुलाई है। पार्टी महासचिव विनोद जिंटा ने आज शिमला में कहा कि अनुशासन समिति की बैठक में नीरज भारती घटनाक्रम पर विस्तार से चर्चा होगी। विनोद जिंटा ने यह भी कहा कि भविष्य में यदि कोई नेता या कार्यकर्ता इस तरह की अनुशासनहीनता करता है तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस पार्टी ने नीरज भारती को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 5-6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया है। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता संदीप भारद्वाज ने नीरज भारती द्वारा मुख्यमंत्री पर लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग की है, ताकि सच्चाई प्रदेश की जनता के सामने आ सके। उन्होंने कहा कि नीरज भारती द्वारा लगाए गए आरोप गंभीर हैं और इन आरोपों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। संदीप भारद्वाज ने कहा कि प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है और अब उसके नेता आपसी गुटबाजी में उलझकर जनता का ध्यान वास्तविक मुद्दों से भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता समय आने पर इसका उचित जवाब देगी।
4: कांगड़ा से संबंध रखने वाले नीरज भारती जो पूर्व में विधायक रहे, मंत्री रहे, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री पे जिस तरह से आरोप लगाए हैं, किस तरह से सूटकेस में हिमाचल प्रदेश से पैसे इकट्ठे करके दिल्ली जा रहे हैं या मुख्यमंत्री के कार्यालय में बंट रहे हैं, ये चिंता का विषय है। हिमाचल की जनता ने कांग्रेस को सत्ता में इसलिए नहीं लाया कि वो इस तरह के कार्य, इस तरह की कुरीति करें, और वो आरोप भी इनके अपने लोग जो कांग्रेस के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं उन पे लगा रहे हैं। जो भी आरोप है वो गंभीर है और हिमाचल की जनता आने वाले 2027 में इसका जवाब देगी।
2: लाहौल स्पीति के कोकसर की ओर से प्रसिद्ध पर्यटक स्थल रोहतांग पास जाने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों को अब ऑनलाइन परमिट लेना जरूरी होगा। लाहौल स्पीति जिला प्रशासन ने जारी आदेशों में कहा है कि बिना वैध परमिट के किसी भी वाहन को पुलिस बैरियर कोकसर से आगे जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। SDM कुनिका एकर्ज ने कहा कि ये निर्णय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों के अनुसार लिया गया है। इन निर्देशों के तहत रोहतांग पास जाने वाले वाहनों की संख्या निर्धारित की गई है।
5: यही अनुरोध रहेगा समस्त टूरिस्ट जो विजिट कर रहे हैं रोहतांग पास के लिए फ्रॉम कोकसर साइड, कि आप लोग ऑनलाइन पासेस के लिए अप्लाई कर लें rohtangpermits.hp.gov.in पे, अन्यथा पुलिस बैरियर पे आपको आगे जाने नहीं दिया जाएगा।
2: अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव आज से शुरू हो रहा है। ऐतिहासिक रिज मैदान पर 12 जून तक चलने वाले इस उत्सव का शुभारंभ राज्यपाल कविंद्र गुप्ता अब से थोड़ी देर बाद करेंगे। इस दौरान बॉलीवुड, पंजाबी और अन्य प्रदेशों के अलावा हिमाचली कलाकार लोगों का मनोरंजन करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का 12 वर्ष का कार्यकाल जनसेवा, पारदर्शी प्रशासन और समावेशी विकास की एक सशक्त मिसाल है। अनुराग ठाकुर ने आज हमीरपुर में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि इस अवधि में देश ने आर्थिक, सामाजिक और वैश्विक स्तर पर अभूतपूर्व प्रगति की है और आम नागरिकों का शासन व्यवस्था पर विश्वास लगातार मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन और जवाबदेही शासन की नई संस्कृति स्थापित की है। अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर जिला भाजपा द्वारा आयोजित मोदी सरकार के 12 साल विकास के नाम कार्यक्रम को भी संबोधित किया। प्रदेशवासियों को आने वाले दिनों में फिर से मौसम के बिगड़े तेवरों का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग ने 11 और 12 जून को राज्य के 4 जिलों कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर में ओलावृष्टि, वर्षा और आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने इस अवधि में किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़कर अन्य सभी जिलों के लिए ओलावृष्टि, वर्षा और आंधी तूफान का येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच प्रदेश के मैदानी इलाकों में फिलहाल भीषण गर्मी का दौर जारी है। ऊना में आज अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। राजधानी शिमला में भी दिन के समय लोगों को कड़क धूप का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि यहां सुबह शाम मौसम सुहावना बना हुआ है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने

0: आपदाओं का कारण। प्रदेश भाजपा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर नीरज भारती द्वारा लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग। और कोकसर की ओर से रोहतांग पास जाने के लिए अब ऑनलाइन परमिट लेना जरूरी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
1: श्रोता FM बैंड 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है वेडी गुंजन धर्मशाला और मैं हूँ आपके साथ सचिन कपूर। तो श्रोताओं, मैं सचिन कपूर लेता हूँ अब आपसे अलविदा। और जाते जाते बस यही कहूँगा, आप सभी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रेडियो गुंजन को यूँ ही सुनते रहिए और सुनाते रहिए। नमस्ते धर्मशाला।

0: क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर, 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं FX+ पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: जिन्हें अपना समझकर हर कठिन समय में उनके साथ खड़े रहे। कई बार वही लोग तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारी बुराई करते हैं, और यही संसार का स्वभाव है पार्थ। जिसे तुम अपना मानते हो वो सदा तुम्हारा हित नहीं चाहता। पर स्मरण रखो, उपकार का अर्थ ये नहीं कि सामने वाला तुम्हारी भावना समझे। कुछ लोग प्रेम को अधिकार समझ लेते हैं और तुम्हारे मौन को कमजोरी। इसलिए अच्छा बनो, पर अपनी शांति की कीमत पर नहीं। और जब अपने ही तुम्हारी बुराई करें तो स्वयं को बदलना मत। अपनी अपेक्षाएं सीमित रखो, क्योंकि सभी अपने दिखने वाले वास्तव में अपने नहीं होते।
1: हेलो
2: हेलो सर, shopping.com से आपने कल जूते ऑर्डर किए थे, फिलहाल वो स्टॉक में नहीं है।
1: पेमेंट तो कट हो गया।
3: ज़ूम इन, ज़ूम इन।
2: डोंट वरी सर, रिफंड के लिए क्यूआर कोड भेज रही हूँ, आपको सिर्फ स्कैन करना है।
1: क्यूआर कोड से रिफंड?
2: यस सर।
3: गॉट इट।
2: यही है सबसे फास्टेस्ट प्रोसेस रिफंड के लिए। प्लीज जल्दी कीजिए, आपका पैसा लौटाना हमारा फर्ज है।
4: क्यों मैडम फर्जी, बहुत जल्दी है आपको?
2: नहीं तो
4: चलो सबको खड़ा करो। तो आप क्या समझे, क्यूआर कोड सिर्फ पेमेंट करने के लिए स्कैन किया जाता है, पैसे रिसीव करने के लिए नहीं। सतर्क रहें, आइए मिलकर चीट्स को बीट करें।
5: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
6: हर घर सूर्य घर।
7: सरकार की तरफ से जितने स्वास्थ्य कर्मी हैं, हेल्थ वर्कर्स, वो घर घर जाकर के आपको अवगत कराएंगे टीबी के बारे में। हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है कि उनका सहयोग कीजिए। ये जो आपको खांसी हो, बुखार हो, वजन कम हो रहा हो, ये बताइएगा उन्हें। देखिए, टीबी इतनी बड़ी बीमारी नहीं है कि पकड़ में ना आ सके। हाँ, इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
8: अच्छा सुनो, आते हो मेरे लिए थोड़े से पनीर के पकोड़े ले आना।
9: तुम पागल वागल होगी हो क्या?
10: Oh, no.
9: पता भी है पनीर के पकोड़े कितने अनहेल्दी होते हैं, कैसे कैसे तेल में तलते हैं वो लोग। कुछ हेल्दी खाओ यार।
8: अच्छा अच्छा सुनो, 1 किलो काजू बादाम ले आना फिर।
9: तुम बुरा मानगी ना?
8: नहीं तो
9: तुम बुरा मानगी हो, तुम्हें नहीं पता। ठीक है यार, मैं ले आऊंगा पकोड़े, कभी कभी तो खाती हूँ, इसमें क्या हो गया, कभी कभी एनएलडी भी खाना चाहिए।

0: क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं FX+ पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

जिन्हें अपना समझकर हर कठिन समय में उनके साथ खड़े रहे। कई बार वही लोग तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारी बुराई करते हैं, और यही संसार का स्वभाव है पार्थ। जिसे तुम अपना मानते हो वो सदा तुम्हारा हित नहीं चाहता। पर स्मरण रखो, उपकार का अर्थ ये नहीं कि सामने वाला तुम्हारी भावना समझे। कुछ लोग प्रेम को अधिकार समझ लेते हैं और तुम्हारे मौन को कमजोरी। इसलिए अच्छा बनो, पर अपनी शांति की कीमत पर नहीं। और जब अपने ही तुम्हारी बुराई करें तो स्वयं को बदलना मत। अपनी अपेक्षाएं सीमित रखो, क्योंकि सभी अपने दिखने वाले वास्तव में अपने नहीं होते।

0: हेलो सर, shopping.com से आपने कल जूते ऑर्डर किए थे, फिलहाल वो स्टॉक में नहीं है।
1: पेमेंट तो कट हो गया।
2: ज़ूम इन, ज़ूम इन।
0: डोंट वरी सर, रिफंड के लिए क्यूआर कोड भेज रही हूँ, आपको सिर्फ स्कैन करना है।
1: क्यूआर कोड से रिफंड?
0: यस सर।
2: गॉट इट।
0: यही है सबसे फास्टेस्ट प्रोसेस रिफंड के लिए। प्लीज जल्दी कीजिए, आपका पैसा लौटाना हमारा फर्ज है।
3: क्यों मैडम फर्जी, बहुत जल्दी है आपको?
0: नहीं तो
4: चलो सबको खड़ा करो।
3: तो आप क्या समझे? QR कोड सिर्फ

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: सरकार की तरफ से जितने स्वास्थ्य कर्मी हैं हेल्थ वर्कर्स, वो घर घर जाकर के आपको अवगत कराएंगे टीबी के बारे में। हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है कि उनका सहयोग कीजिए। ये जो आपको खांसी हो, बुखार हो, वजन कम हो रहा हो, ये बताइएगा उन्हें। देखिए, टीबी इतनी बड़ी बीमारी नहीं है कि पकड़ में ना आ सके। हाँ, इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
3: अच्छा सुनो, आते हो मेरे लिए थोड़े से पनीर के पकोड़े ले आना।
4: पागल वागल होगी हो क्या?
5: Oh, no.
4: पता भी है पनीर के पकोड़े कितने अनहेल्दी होते हैं, कैसे कैसे तेल में तलते हैं वो लोग। कुछ हेल्दी खाओ यार।
3: अच्छा अच्छा सुनो, 1 किलो काजू बादाम ले आना फिर।
4: तुम बुरा मानगी ना?
3: नहीं तो?
4: तुम बुरा मानगी है, तुम्हें नहीं पता। ठीक है यार, मैं ले आऊंगा पकोड़े, कभी कभी तो खाती हूँ, इसमें क्या हो गया, कभी कभी एनर्जी भी खाना चाहिए।

मेरे प्यारे दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से शुरू हो गया है कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने। मैं आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो लीजिए कार्यक्रम का पहला गीत प्रस्तुत करते हैं आपकी नजर।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

0: श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नई पुरानी। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।
1: बदन पे सितारे लपेटे हुए

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

0: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं FX+ पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: जिन्हें अपना समझकर हर कठिन समय में उनके साथ खड़े रहे। कई बार वही लोग तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारी बुराई करते हैं, और यही संसार का स्वभाव है पार्थ। जिसे तुम अपना मानते हो वो सदा तुम्हारा हित नहीं चाहता। पर स्मरण रखो, उपकार का अर्थ ये नहीं कि सामने वाला तुम्हारी भावना समझे। कुछ लोग प्रेम को अधिकार समझ लेते हैं और तुम्हारे मौन को कमजोरी। इसलिए अच्छा बनो, पर अपनी शांति की कीमत पर नहीं। और जब अपने ही तुम्हारी बुराई करें तो स्वयं को बदलना मत। अपनी अपेक्षाएं सीमित रखो, क्योंकि सभी अपने दिखने वाले वास्तव में अपने नहीं होते।
1: हेलो
2: हेलो सर, shopping.com से आपने कल जूते ऑर्डर किए थे, फिलहाल वो स्टॉक में नहीं है।
1: पेमेंट तो कट हो गया।
3: Zoom in.
2: Don't worry, sir. रिफंड के लिए QR कोड भेज रही हूँ, आपको सिर्फ स्कैन करना है।
1: QR कोड से रिफंड?
2: यस सर।
3: गॉट इट।
2: यही है सबसे फास्टेस्ट प्रोसेस रिफंड के लिए। प्लीज जल्दी कीजिए, आपका पैसा लौटाना हमारा फर्ज है।
4: क्यों मैडम फर्जी, बहुत जल्दी है आपको?
2: नहीं तो
4: चलो सबको खड़ा करो। तो आप क्या समझे, QR कोड सिर्फ पेमेंट करने के लिए स्कैन किया जाता है, पैसे रिसीव करने के लिए नहीं। सतर्क रहें, आइए मिलकर चीट्स को बीट करें।
5: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
6: हर घर सूर्य घर।
7: सरकार की तरफ से जितने स्वास्थ्य कर्मी हैं हेल्थ वर्कर्स, वो घर घर जाकर के आपको अवगत कराएंगे टीबी के बारे में। हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है कि उनका सहयोग कीजिए। ये जो आपको खांसी हो, बुखार हो, वजन कम हो रहा हो, ये बताइएगा उन्हें। देखिए टीबी इतनी बड़ी बीमारी नहीं है कि पकड़ में ना आ सके। हाँ, इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
8: अच्छा सुनो, आते हो मेरे लिए थोड़े से पनीर के पकोड़े ले आना।
9: तुम पागल वागल होगी हो क्या?
10: Oh, no.
9: पता भी है पनीर के पकोड़े कितने अनहेल्दी होते हैं, कैसे कैसे तेल में तलते हैं वो लोग। कुछ हेल्दी खाओ यार।
8: अच्छा अच्छा सुनो, 1 किलो काजू बादाम ले आना फिर।
9: तुम बुरा मानगी ना?
8: नहीं तो।
9: तुम बुरा मानगी है, तुम्हें नहीं पता। ठीक है यार, मैं ले आऊंगा पकोड़े, कभी कभी तो खाती हूँ, इसमें क्या हो गया, कभी कभी एनएलडी भी खाना चाहिए।

मूवी के बजट के बारे में कुछ गोलमाल है। इसी बीच हमें एक और पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देख पाते हैं कि अनामिका अपनी लाइफ अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अपनी मां की मर्जी से जी रही है, और उसे ये पता चलता है कि उसके पति और उसकी मां ने बैंक अकाउंट के सारे पैसे निकाल लिए हैं। ये बात जानकर वो अपने प्रेमी के पास चली जाती है और उससे कहती है कि आई एम विद यू, यानी कि

मूवी के बजट के बारे में कुछ गोलमाल है। इसी बीच हमें एक और पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देख पाते हैं कि अनामिका अपनी लाइफ अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अपनी मां की मर्जी से जी रही है, और उसे ये पता चलता है कि उसके पति और उसकी मां ने बैंक अकाउंट के सारे पैसे निकाल लिए हैं। ये बात जानकर वो अपने प्रेमी के पास चली जाती है और उससे कहती है कि आई एम विद यू, यानी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं सुंदरकांड। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।